वज्रासन हमने पहले भी आपको पूरी की पूरी एक सीरीज बताई है। वज्रासन में बैठने के लिए दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर पंजों के साथ में ऊपर उठाएं और एक पलथी नुमा में हम बायां पैर दाएं पैर के ऊपर रखकर बैठें। अब मुट्ठी बांधकर अपनी नाभि के पास लेकर आएं। तीन मुट्ठी को नाभि और जांघ के पास खड़ी करके रखें, जिसमें उंगलियां आपके पेट की ओर हों। गहरी सांस लें, फिर छोड़ते हुए आगे झुकें। कोशिश करें कि छाती आपकी जांघों पर टिक जाए। मंडूक आसन वैसे तो बहुत ही प्रभावी आसन है। यह आपकी पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। इसे आप रोजाना 10 से 15 मिनट जरूर कर सकते हैं, तो आपका इससे पेट बहुत ही अच्छे तरीके से पतला होने की स्थिति में आ जाएगा। लोग क्या कहते हैं, मतलब जैसे आजकल महिलाएं पुरुष हैं वो कहते हैं कि मेरा पेट निकल आया है, बहुत बार ये सुनने को मिलता है। तो उसी तरीके से यदि हम इस मंडूक आसन को करेंगे तो हमारा पेट भी बाहर नहीं निकलेगा। आजकल लोगों के पेट पर सबसे बड़ी और सबसे बड़ी समस्या ये है कि फैट चढ़ता है। इससे बड़ी वजह है कि आप सिटिंग जॉब करते हैं। ज्यादातर लोग घंटों बैठकर काम करते हैं, जिसकी वजह से तौंद निकल आती है। वजन घटने के दौरान पूरे शरीर में फैट चला जाता है, लेकिन सबसे आखिर में फैट पेट पर ही कम होता है। पेट की चर्बी को कम करने के लिए आप योग का सहारा जिस तरीके से ले रहे हैं, इसी तरीके से आपको हमेशा से योग में ही करते रहना है। आज हम आपको एक ऐसा साथ ही साथ योग कराएंगे जो कि पेट के लिए बहुत ही ज्यादा है, जिसका नाम हमने आपको बताई दिया है मंडूक आसन। इसे करने के लिए पेट की चर्बी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मंडूक आसन को मेंढक आसन भी यानी फॉग पोज भी कहते हैं। मंडूक आसन करने से न सिर्फ पेट की मसल्स मजबूत होती है, बल्कि इसे करने के से बेली फैट भी बहुत ही अच्छे से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं जो कि अभी पहली अवस्था में हमने आपको बताया। जो लोग पेट की समस्या से पीड़ित रहते हैं, उनके लिए यह योगासन किसी वरदान से कम नहीं है। गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या से राहत पाने में मंडूक आसन आपकी मदद करेगा। इसके अलावा डायबिटीज के रोगों के लिए भी यह काफी फायदेमंद होता है। जानते हैं मंडूक करने का तरीका, तो आइए हम पुनः आपको मंडूक आसन करने का आसान तरीका बताते हैं। सबसे पहले किसी समतल जगह पर वज्रासन में बैठ जाएं। अब मुट्ठी बांधकर अपनी नाभि के पास लेकर आएं। मुट्ठी को नाभि और जांघ के पास खड़ी करके रखें, जिसमें उंगलियां आपके पेट की ओर हों। गहरी सांस लें, फिर छोड़ते हुए आगे झुकें। कोशिश करें कि छाती आपकी जांघों पर टिक जाए। ऐसे झुकें कि नाभि पर ज्यादा से ज्यादा दबाव आए। अपना सिर और गर्दन सीधी रखें। कोशिश करें धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। अब आराम से अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। यह एक चक्र आप शुरू करें 3 से 5 बार कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बता दें मंडूक आसन करने के लाभ, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदा हो सकता है। मंडूक आसन करने से पेट की मसल्स पर यानी टोन होने के साथ साथ बेली फैट भी कम करने में मदद करता है। मंडूक आसन करने से पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज, अपच से छुटकारा मिलता है। मंडूक आसन करने से डायबिटीज रोगियों को फायदा मिलता है। यह जरूर से जरूर करना चाहिए। और हम आपको बता दें कि मंडूक आसन कब नहीं करना चाहिए। यदि पेट संबंधी कोई गंभीर रोग हो तो यह आसन ना करें, आप इसे हटा सकते हैं। आसन करते वक्त ध्यान रखें कि दोनों हाथों की मुट्ठियां अच्छी तरह से नाभि के आसपास टिकी हों। तो ये है प्रारब्ध मंडूक आसन जो कि आज हमने किया।

मंडूक आसन कितनी बार करना है, आइए हम आपको बताते हैं। मंडूक आसन आप सवेरे भी कर सकते हैं और शाम को भी, यानी कि आप सुबह उठकर के भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब भी करें मंडूक आसन, वह हमारे लिए उचित समय हो और 4 से 5 घंटे पहले ही हमने भोजन कर रखा हो। उसके बाद में आपको ये लगेगा कि इसका असर हमारे लिए इतना लाभदायक हो रहा है, इसलिए यह मंडूक आसन प्रारब्ध के साथ जोड़ा गया है। प्रारब्ध का अर्थ हमने अभी आपको बताया कि पुनः यानी पिछले जन्म का कोई कर्म, इसीलिए हमने आपको बताया कि प्रारब्ध के साथ जुड़े हुए मंडूक आसन को हम कर सकते हैं। इससे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि दूर होती हैं। मुख्यतः पेट से संबंधित समस्या दूर करने में यह बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होता है। आसन को पूरा करने के बाद हाथों की हथेलियों में घर्षण करें कुछ इस तरह। तत्पश्चात आप आंखों पे और अपने चेहरे पे लगाएं और एक बार ओम की श्वास भरने और श्वास लें। उसके बाद आप आराम से आप पूरा प्राणायाम करके इसको छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए प्रारब्ध मंडूक आसन हम सभी ने मिलकर के किया। आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा कराए गए योग आसन आप सभी मिलकर करते होंगे और हर बार की तरीके से हर एक आसन के साथ एक नए शब्द की उत्पत्ति भी हो रही है और इस शब्द की जो उपयोगिता है वह भी आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए हम सभी मिलकर के अब 10 से 15 मिनट योग ध्यान करते हैं। उसके बाद हम फिर कल मिलेंगे एक नए आसन एक नए शब्द के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की उपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, जो कि एक नामों के साथ में सीरीज चल रही है योग के साथ में एक नाम को जोड़ करके, जैसा कि पहली सीरीज में हमने आपको बताया था नौकासन यानी कि अलौकिक नौकासन, उसी के साथ में एक नया नाम अब हम आज आपके सामने बताने वाले है जो की है प्रकाशमय वृक्षासन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ की प्रकाशमय वृक्षासन क्यूँ है। आपने देखा होगा कई बार जब हम कोई भी सीरीज देखते हैं, कोई भी पुरानी सीरियल्स को देखते हैं, कोई आध्यात्मिक सीरियल्स को देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जब घोर तपस्या करते थे तो वो पेड़ों पे जाकर के या फिर पहाड़ों पे जाकर के एक पैर पे खड़े होकर के इस आसन को करते थे जो कि बहुत प्रचलित है, जिसका नाम वृक्षासन। इसका मतलब ये नहीं होता है कि यह वृक्षों की तरीके से सिर्फ सीधे खड़े रहना ही है। यह वृक्ष की तरह तो लगता है लेकिन श्वास का लेना, निरंतर रूप से श्वास को कम करना, कैसे लेना है, क्या अंतर में कुछ ऐसी उपलब्धियाँ जिसे हम पाना चाहते हैं, कुछ ऐसी गतियाँ जिन्हें हम अपने रूप में उसे जानना चाहते हैं, ये सारी गतिविधि हमारे वृक्षासन के अंतर्गत आती है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वृक्षासन प्रकाशमय वृक्षासन क्यों है। सबसे पहले तो साधारण रूप में वृक्षासन होता है, दूसरा ध्रुव आसन जिसे भागीरथ आसन भी कहा जाता है, उसके बाद में द्वितीय प्रकार यानी कि क्रम पूर्ण एक आसन भागीरथ का दूसरा, ये सारे प्रकाशमय वृक्षासन के अंतर्गत आते हैं। वृक्षासन करने से पहले मैं बता दूं कि यह प्रकाश की तरीके से बहुत ही ज्यादा तेज और हमें रोशनी प्रदान करने वाला होता है। जिस तरीके से हम पेड़ों पे या फिर पहाड़ों पे पहुंचकर एक अलौकिक तेज को प्राप्त करते हैं, चारों तरफ एक रोशनी रोशनी, ठीक वैसे ही यह आसन को करने के बाद भी हमें अपने शरीर में कुछ इसी तरीके से अनुभूति होती है। वृक्ष के समान आकृति होने के कारण इसे वृक्षासन तो कहा ही जाता है। सर्वप्रथम समावस्था में हमें खड़े हो जाना है, फिर शरीर को संतुलित रखते हुए दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और पैर के पंजों को बाएं पैर की जांघ के मूल पे लगाएं। ध्यान रहे दाहिने पैर के पंजे की उंगलियां जमीन पर टिकी रहें। इस प्रकार एक पैर पर संतुलन बनाएं। अब दोनों हथेलियों को मिलाएं और सीधे आकाश की तरफ उठाएं। दोनों हाथों की कोहनियां सीधी रखें।
रखें और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। ये है प्रकाशमय वृक्षासन का पहला, जिसमें हमें सीधे खड़े हो जाना है, वजन एक पैर पर हमें पूर्ण रूप से डाल देना है, दूसरे पैर का तलवा, जांघ और पिंडली घुटने पर नहीं रखना है, हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में ऊपर की ओर उठाना है, नजर सामने और एक बिंदु पर ही टिकी होनी चाहिए, 20 से 30 सेकंड रुकें और सामान्य सांस को लेना है और छोड़ना है, धीरे धीरे बदल कर दूसरे पैर की ओर हम आ सकते हैं। समय इसका होना चाहिए 5 से 10 सेकंड, ताकि हमें फिर दूसरे पैर को ऊपर उठा करके हम अवस्था को चेंज कर सकते हैं। वापस ताड़ासन की स्थिति में आएं, यानी दोनों पैरों को उठाना है, पंजों को उठा करके पंजे नीचे रहेंगे और एड़ियां ऊपर। अब आपको यही प्रक्रिया दाहिने पैर पर खड़े होकर दोहरानी है। इस प्रकार यह क्रिया लगभग क्रमशः 4 से 5 बार दोहरानी है। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्वास को लेंगे। पूर्ण स्थिति में स्वाभाविक श्वास प्रवास करें। हाथों को नीचे करते समय श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। इस तरीके से वृक्षासन के फायदे, आइए अब हम आपको बताते हैं। बैलेंस और एकाग्रता बढ़ती है, पैरों और टखनों की ताकत बढ़ाती है, पोस्चर सुधरता है, मन शांत होता है और एकाग्रता आती है, जो कि स्टूडेंट्स को ये जरूर से अपनाना चाहिए। हर एक फायदे से कहते हैं ना, हर एक योग के अलग अलग फायदे होते हैं, तो खास करके विद्यार्थियों को यह आसन जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ में पैर पिंडली पर आराम से रखें, ताकि दीवार कुर्सी का हल्का सहारा भी आप स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं। पहले के दिनों में 10 से 15 सेकंड ही आप इसको कर सकते हैं और फिर आप इसे धीरे धीरे इसका समय बढ़ा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी सावधानियाँ। अगर आपको यह आसन करते समय चक्कर आते हों या घुटनों में दर्द हो, तो दीवार के पास सहारा ले सकते हैं। पैरों को सीधे घुटनों पर न टिकाएं। संतुलन बिगड़े तो तुरंत पोज को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक आसन और, जो कि इसी का दूसरा प्रारूप है, वो है भागीरथ आसन। वृक्षासन को करने के साथ साथ भागीरथ आसन जरूर करना चाहिए। भागीरथ आसन का नाम ध्रुव आसन भी है। भक्त ध्रुव एवं भागीरथ ऋषि ने इस आसन से साधना की थी, जो कि वृक्षासन का दूसरा प्रारूप है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने किया प्रकाशमय वृक्षासन, जिसको करने से हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश का आगमन होता है। इस तरीके से हम फिर से मिलेंगे आपसे एक नई सीरीज में, एक अलग नाम और एक अलग योग के साथ में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप पहले से अच्छे और बहुत अच्छे होंगे और नित सवेरे आकर के योगशाला में योग प्राणायाम करते होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस रोग में कौन सा प्राणायाम उचित होता है। थोड़ी बहुत जानकारी हम देंगे उस रोग के बारे में और साथ में जानकारी देंगे प्राणायाम के बारे में, यानी कि आसनों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक। दोस्तों, ये आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। ज्यादा टेंशन करना और काम के प्रेशर को लेकर के जब काम पूरा नहीं होना या फिर फैमिली प्रॉब्लम को लेकर के लोगों को चिंताएं घेरे रहती हैं, जिसके कारण से हार्ट अटैक का खतरा जो है वो अमूमन ज्यादा सा बढ़ गया है। योग का अभ्यास करने से ऐसे खतरों में बहुत ही जल्दी से सुविधाएं मिलती हैं हमें उन्हें ठीक करने की। हृदय रोग का कारण बनने वाले उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और उक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है, जिससे हृदय गति कम करने में मदद मिल सकती है। योग करने वाले लोगों को में अन्य लोगों की तुलना में हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, ये सभी को पता है। तो आइए आज हम बताने वाले हैं कि हृदय रोग के जो रोगी होते हैं उन्हें कौन सा आसन प्राणायाम करना चाहिए। स्पेशली हार्ट अटैक जब किसी को आता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, दाहिने हाथ में दर्द होना, सीने में दर्द होना। अभी हाल में ही हमने एक डॉक्टर से सलाह करी थी, यानी कि हमारा एक प्रोग्राम था डॉक्टर्स की सलाह में, तो उन्होंने बताया कि यदि आपके चेस्ट पेन हो रहा है, यानी अगर चलते फिरते चेस्ट पेन हो रहा है, तो यह कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मसल्स की दिक्कत हो सकती है, कुछ हड्डियों की दिक्कत हो सकती है, लेकिन
अगर आप आपके हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, आप कहीं हिल डुल नहीं रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपको चेस्ट पेन है तो ये बिल्कुल आपको हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कौन से प्राणायाम अगर हमें अभी से ही शुरू कर देने हैं तो यह खतरनाक से खतरनाक बीमारी नहीं हो सकती है। जो कि मुख्य आसन है भुजंगासन, गौमुखासन, मलासन, ताड़ासन और ब्रिज पोज। मैं आपको बता दूं कि भुजंग आसन के बारे में भुजाओं से संबंधित होता है, जिसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं। ये इसीलिए करा जाता है क्योंकि जब भुजाओं से संबंधित हम कुछ प्राणायाम करते हैं तो हार्ट जो होता है यानी कि हृदय की मांसपेशियां जो है वो खिंचती हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आराम से उस तक पहुंचता है और हमें हृदय संबंधी जो भी रोग होते हैं उससे मुक्ति मिलती है। और हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए। सावधानी ये बरतनी चाहिए कि यदि हम कोई आसन प्राणायाम कर रहे हैं तो अगर हमें ज्यादा पसीना आ रहा है या घबराहट सी हो रही है तो हमें उस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, रुक रुक के उस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिसको करने से हमें बहुत ही शांति और खुशी प्रदान हो, वही आसन प्राणायाम को हमें आगे नित्य नियम में करने चाहिए। आइए दोस्तों, हम दूसरे एक रोग की तरफ चलते हैं जो कि है गठिया। गठिया दोस्तों हाथ में हो सकती है, पैर में हो सकती है और आप तो गले में, गर्दन में, कमर में, कहीं पे भी ये गठिया का दर्द पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा आसन प्राणायाम करना चाहिए। गठिया के रोगों को जो कि रोगी होते हैं उन लोगों को अनुलोम विलोम कपालभाति जरूर से करना चाहिए। दिन की दिनचर्या शुरू करने से पहले अनुलोम विलोम को हमें नित्य नियम अपनी दिनचर्या में लाना चाहिए, जिससे गठिया जैसी गंभीर बीमारियां जो कि शुरू होने से पहले ही खत्म होने की संभावनाएं 100 नहीं 200% होती हैं। अगर हम अपना वेट जो कि हमारा वेट हो जाता है बहुत ज्यादा, उससे भी हमें ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं गठिया जैसी। घुटनों में दर्द होने लगता है, पैर की एड़ियों में दर्द होने लगता है और हाथों की भुजाओं यानी कि जहां ज्वाइंट पेन्स होते हैं वहां पे दर्द होने लगता है। अगर आपको ये नित्य प्रतिदिन हो रहा है तो तुरंत से तुरंत आप आसन प्राणायाम के साथ साथ अपने अपने जो कि आसपास के डॉक्टर हैं आप उनसे संपर्क करें और इसकी दवाएं शुरू कर दें, क्योंकि गठिया रोग जो है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यह रोग और भी बढ़ता जाता है। लेकिन मात्र एक योग प्राणायाम के माध्यम से हम किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी को खत्म कर सकते हैं, तो हम अभी से ही क्यों न अपना लें ये सारे योग प्राणायाम। अनुलोम विलोम को करने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर के नित्य क्रिया करने के बाद में आपको शामिल करना है। मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार आता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और तनाव चिंता को कम भी करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है यह सर्वोपरि और सर्वप्रथम प्राणायामों में से एक है, क्योंकि कपालभाति और अनुलोम विलोम मुख्य 8 प्राणायामों में से एक है, जिस जो की करने से पूरे संपूर्ण शरीर की जो की गतिविधियां होती हैं उन पर वो सुचारू रूप से काम करता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी की जो की है शुगर यानी की मधुमेह। इसमें हमको कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए, नित्य प्रतिदिन हमें अपने कौन सा जो कि डेली रूटीन अपनाना चाहिए शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, आज हम आपसे बात करेंगे। शुगर लेवल को कम करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम और जो कि हमें इस रोग में करना चाहिए वह है कपालभाति। कपालभाति शुगर लेवल को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप से जाना गया है। कपालभाति इसीलिए क्योंकि वह श्वास निर्मित है, श्वास को श्वास से जोड़ करके किया जाता है। श्वास की गति को बाहर छोड़ना अंदर लेना यह कपालभाति की प्रथम प्रक्रिया है। कपालभाति को करने से हमें मन चित्त को एकाग्र बैठ करके बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं कुछ नहीं और अपने मुख मंडल पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ में इस प्राणायाम को शुरू करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होता है और वह उनके शरीर के तंत्र तंत्रिकाओं को और दिमाग की नसों को मजबूती देता है, इसी के साथ शरीर में ऊर्जा भी देता है। कपालभाति प्राणायाम शरीर में रक्त प्रभाव को बेहतर करने के साथ साथ मन को भी

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या बात है, क्या बात है। जब तुम जाओ फ्रॉम द मूवी प्रेम रतन, फिलहाल आप क्या पायो, वो भी मॉर्निंग में जागने के बाद। एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा, शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग चौक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो चलिए भाई, आज का डे जो है वो है ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार, और इस मंगलवार को और भी ज़्यादा मंगलमय बना देते हैं हम अपने इस शो में एक दूसरे के ज़रिए। सो कहते हैं ना कि कई बार मिल जाना भी दो लोगों का बहुत ज़्यादा अलग होता है ना। यस ऑफ कोर्स, मुझे लगता है कि भाई अब ये आपकी बात पर आ गई है, और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज के दिन को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने वाले हैं आपके संग मिल करके, आज के थॉट ऑफ द डे के साथ में। यानी ये दिन और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। कैसे भाई? आज के थॉट ऑफ द डे के साथ में। सो क्या है आज का थॉट ऑफ द डे, चलिए बताते हैं आपको आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में मॉर्निंग चौक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

आज की थॉट ऑफ द डे से आप कितना इत्तेफाक रख पाएंगे इसका अंदाज़ा तो मुझे नहीं है, पर यह ज़रूर है कि अगर आप इस थॉट को सुनेंगे तो कई ख्याल ज़रूर आपके जहन में आने वाला और उसके बाद शायद आप आराम से बैठ करके इस पर सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त लेगा समझ आने में ये थॉट ऑफ द डे, क्योंकि इसके कई एंगल्स आपके सामने अब आने वाले हैं। राइट, सो क्या है दरअसल आज का थॉट? कहता है कि 21वीं सदी में निरक्षर वो लोग नहीं होंगे जो पढ़ लिख नहीं सकते। गौर फरमाइएगा, 21वीं सदी जो सदी अभी चल रही है, 21वीं सदी में निरक्षर वो नहीं होंगे जो पढ़ लिख नहीं सकते, बल्कि वो होंगे जो सीख नहीं सकते, सीखे हुए को भुला नहीं सकते और फिर से नहीं सीख सकते। वाह, क्या थॉट है भाई साहब, क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, मतलब क्या जबरदस्त सोचा है, क्या जबरदस्त बात कही है, बिल्कुल फैक्चुअल बात है। पर मैंने कहा ना कि ये एक बार में शायद पहली बार में समझ आए भी ना, इसको जब थोड़ा सा रीथिंक करेंगे आप तब ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी। सो फिलहाल आज का थॉट क्या कहता है? आज का थॉट कहता है कि 21वीं सदी में निरक्षर वो नहीं होंगे जो पढ़ लिख नहीं सकते, बल्कि वो होंगे जो सीख नहीं सकते, सीखे हुए को भुला नहीं सकते और फिर से नहीं सीख सकते। सो जरा सोचिए कि ये थॉट अपने लेवल पर क्या कह रहा है। वाओ, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो पढ़ा नहीं है, जो स्कूल नहीं गया है, वो निरक्षर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि वो पढ़ा लिखा नहीं है जो सीख नहीं सकता, यानी उसको कितना भी पढ़ाया जाए वो सीख ही नहीं सकता। अब यहाँ सीख नहीं सकते का मतलब क्या है कि कोई इंसान सच में नहीं सीख सकता? नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि वो सीख ही नहीं रहा है, यानी हम जब चाहते हैं तो होता है, हम जब नहीं चाहते हैं तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर नहीं होता है, और सीखे हुए को भुला नहीं सकता। अब जरा थोड़ा सा डीप चलने की कोशिश करते हैं। तो पहली लाइन तो समझ में आई कि 21वीं सदी में निरक्षर यानी नहीं पढ़े लिखे लोग वो नहीं होंगे जो पढ़ लिख नहीं सकते, जिनको अपना नाम या कोई बोला हुआ सेंटेंस लिखना नहीं आता है या उनको बोर्ड पे लिखा हुआ नाम पढ़ना नहीं आता है, वो 21वीं सदी में निरक्षर नहीं है, वो अनपढ़ नहीं है। अनपढ़ वो हैं जो सीख नहीं सकते, सीखे हुए को भुला भी नहीं सकते और फिर से नहीं सीख सकते। और कितनी बड़ी बात है कि हम कहते हैं कि हमारा ऐसा मानना है, जबकि कितनी बार हमको रियलाइज होता है कि कितने साल तक हम गलत थे। राइट, और उसके बावजूद कई बार हमको सामने वाले को देखकर अंदाजा होता है, कई लोग इतने अड़ियल रवैये के होते हैं कि हम कहते हैं यार कितने साल से बंदा या बंदी इस तरह से करता चला जा रहा है और चीज़ें बर्बाद हो रही है, लेकिन इस शख्स को ज़रा सा भी उसका गुमान नहीं है, वो है अनपढ़ जो कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ सीखने का मतलब सिर्फ पढ़ाई से नहीं है, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से है, उसी काम को करने में है जिससे सिर्फ और सिर्फ लॉस हो रहा है, या तो आप दूसरे का लॉस सोच रहे हो और उसमें आप उससे कहीं ज़्यादा अपना लॉस कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ है, किसी से दुश्मनी निकाल रहे हो, उसको निकालते निकालते अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त और सारी मेहनत दुश्मनी में ही निकाल रहे हो, खुद के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। ऐसे न जाने सारी कितनी चीज़ें हैं, न जाने कितनी सारी परंपराएं हैं जिनको हम बस यूं ही मानते चले आते हैं, कुछ नया नहीं सीख सकते। कहने को तो हम कहते हैं ना कि कई लोगों को सुना था वो तो बड़ा ही पढ़े थे, उन्होंने तो डबल डबल मास्टर्स किया है, PhD होल्डर हैं और न जाने कहां कहां से IIM IIT बहुत बड़े बड़े संस्थान MBBS करे हुए, लेकिन तमीज़ नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको कहीं फील होता है कि डिग्री तो बहुत बड़ी है उस शख्स के पास में, लेकिन हमें लगता नहीं कि वो पढ़ा लिखा है। जो उसके बात करने का लहजा है, जो उसके प्रतिक्रियाओं का है, रिएक्शन जिस तरह वो देता है, कितना अलग सा लगता है ना। और ये बात हम लोग कितनी बार डिस्कस करते हैं आपस में, अपने घर में, अपने फ्रेंड्स से। यही चीज़ आज कहता है ये थॉट,
कि 21वीं सदी में यह बिल्कुल नहीं है कि कोई पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। वो नहीं है अनपढ़, अनपढ़ तो वो हैं जो नई चीज़ सीखना ही नहीं चाहते हैं, वो अपने ही विचार में खोए हुए हैं, उनको उस विचार से आगे आकर के कुछ नया सीखना ही नहीं है, ना सीखा हुआ भूलना है। अब यहाँ सीखा हुआ भूलने से क्या मतलब है? जो पहले से आपकी चीज़ें बनी थी, जिसको आप अभी तक सही मानते आए हो, तो आपको एक वक्त के बाद लगता है कि ये गलत है, एंड वही वो वक्त होता है जहाँ पर आपको फिर पुरानी चीज़ों को मिटाना होता है, यानी अब ये रूल मेरी लाइफ में नहीं लागू होंगे, अब अमेंडमेंट हो रहा है, अब इसमें बदलाव हो रहा है, फिर कुछ नई चीज़ गढ़ते हैं, अब इसकी जगह ये होगा। तो इसीलिए कहता है थॉट कि वो होंगे जो सीख नहीं सकते या सीखे हुए को भुला नहीं सकते और फिर से नहीं सीख सकते और कुछ नया नहीं करते। कितनी प्यारी बात है, कितनी बेहतरीन बात है, कितनी लॉजिकल बात है कि वो शख्स अनपढ़ है, वो निरक्षर है जो सीख ही नहीं रहा है, ना वो भुला पा रहा है सीखा हुआ और ना उसको वापस से कोई नई चीज़ सीख पा रहा उसके बदले। और वो लोग देखिए जो कहते हैं कि हम स्कूल ही कभी नहीं गए, वो आज पता नहीं किस किस मकाम पे क्या क्या कर रहे हैं। हम उनकी तारीफ करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि लगता ही नहीं है कि इस शख्स ने, इस महिला ने, इस पुरुष ने, इस बंदे ने, इस बंदी ने कभी स्कूल का मुँह ही नहीं देखा। तो स्कूल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम एजुकेटेड हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम स्कूल से भाग रहे हों, लेकिन फैक्चुअल बात यह है कि दरअसल सीखने वाला ही लर्नर होता है, सीखने वाला ही साक्षर होता है, यानी पढ़ा लिखा होता है। निरक्षर तो वो होते हैं जो ना सीखते हैं, ना सीखा हुआ पुराना भुला पाते हैं और ना उसके बाद कुछ नया सीखते हैं। ये है आज का थॉट। मुझे लगता है आज का थॉट आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा होगा। आई नो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दे दिया, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको प्रॉपरली ये बताने में अब समय नहीं लगेगा कि एक्चुअल में आज का थॉट ऑफ द डे कैसा लगा आपको। चलिए फटाफट से कमेंट करिए और बताइए, क्योंकि आज है ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल शो और मॉर्निंग जॉक आर्जुन है आपके संग।

0: सुबह जिस थॉट को देकर गए थे आपको, आई होप कि वो थॉट आपके पास में रह करके थोड़ा सा उसने कुछ और बताया होगा आपके अकॉर्डिंग. यस, तो मुझे लगता है कि आज का थॉट काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन था एंड थॉट वाकई बड़ा ही ज़बरदस्त, मतलब काफ़ी अलग अभी तक जो थॉट्स हम बताते रहते हैं. सो कुछ कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा अलग साउंड करते हैं, और उसमें से आज ये भी था जिसने काफ़ी ज़्यादा अलग साउंड किया एंड लिटरली बहुत बेहतरीन. फिलहाल चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ. वैसे हम बता दें आप हमको तीन तरह से सुनते हैं, फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से. एप्लीकेशन से सुनने में ये मज़ा रहता है कि भाई आप जो कुछ लिखते हैं वो सीधे हम तक आता है और दुनिया के किसी भी कोने से आप इसको ट्यून कर लेते हैं थ्रू एप्लीकेशन. सो चलिए फिलहाल हम देखते हैं क्या कुछ लिख भेजा है आपने मॉर्निंग वाले शो में.
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

जी तो भाई शुरू से शुरू करते हैं और बताते हैं मैसेजेस कहाँ से आने शुरू हुए। सबसे पहले आशु जी ने लखनऊ से विशेस भेजी है। आप लिखती हैं सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी, और लिखती हैं सूर्य कभी अपना परिचय नहीं देता, उसका प्रकाश ही उसकी पहचान बन जाती है। इसी तरह इंसान को अपने बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, उसके अच्छे कर्म ही उसका सच्चा परिचय देते हैं। यही तो मेरा भी मानना है कि अगर आप बेहतर हो, आप अपने आप में ठीक हो, अच्छे हो, तो आपको गाने की और कहने की क्या ज़रूरत है, फिर तो जो कर रहा है कोई करने दो, आपके पास इतना वक्त कहाँ। दैट्स ग्रेट, ऐसे बिजी लोग मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच टू यू, बहुत प्यारा थॉट। एंड सविता दुबे जी कहती है सुप्रभात सभी को सर, आज मंगल में आऊँगी दंगल करने। ओ हो, कहाँ हो रहा है वैसे आज ये दंगल का प्रोग्राम, चलिए हम भी बैठ के देखते हैं। एंड हमारी प्रीति जी लिखते हैं बहराइच से प्यारा सा सुप्रभातम सर जी, थैंक यू सो मच, आपको भी प्यारा सा सुप्रभात। साथ ही साथ हमारी गीता श्रीवास्तव जी भी आ गई हैं गोंडा से, और आपने भी जो है वो विशेष भेजी है सन के साथ, गुड मॉर्निंग आर जैसे गुड मॉर्निंग टू यू, और साथ ही साथ सनफ्लावर भी है, थैंक यू सो मच टू यू गीता जी, आपका भी स्वागत है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। एंड आज के थॉट पर रिएक्शन आया है तीन लोगों का फिलहाल, अभी प्रीति जी ने बोला है, और इसके अलावा सविता दुबे जी ने भी रिएक्शन दिया है, फिर आशु जी ने दिया है। प्रीति जी लिखती हैं सत्य बयां करता हुआ जानदार थॉट, कुछ सीखने के लिए एकाग्रता और गंभीर विचारों का होना बहुत आवश्यक है। वाओ क्या बात है, थैंक यू। सविता जी लिखती हैं मुझे चक्कर आ गया सर, सुविचार बहुत प्यारा लगा, बहुत सही बात कही।

यू सो मच टू एवरीवन जिस प्यार से आप इस थॉट को सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद बयां करते हैं, ये अपने आप में बड़ा ही यूनिक होता है। एंड हमारी गीता जी ने भी इस पे थॉट पर रिएक्शन दे दिया है, लिखा है थॉट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट बहुत अच्छा लगा। एंड मज़ेदार ये रहता है कि हम थॉट सुनते हैं, उस पर रिएक्शन भी देते हैं और ज़िंदगी के किसी किसी मोड़ पे अचानक से ऐसे थॉट्स याद आ जाते हैं कि हाँ मैंने सुना था शो में, और ऐसा कुछ आज मेरी लाइफ में चल रहा है या मुझे फील हो रहा है आज, राइट। और इससे बड़ी खूबसूरत बात और क्या हो सकती है, जो आप कहीं सुने और आप अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकली फील भी कर रहा हो। इसीलिए कहते हैं ये थॉट जो है सच में जानदार होते हैं, इनमें जान होती है, ज़िंदगी होती है, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी के भीतर ही कहीं पाए जाते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है एक खूबसूरत सा नगमा आप तक पेश करने का, उसके बाद वापस आने का और आने के बाद पिटारा खोलने का। वैसे भी आज आपको हम सिटी अपडेट से कराने वाले हैं रूबरू, सो कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।

0: अब वक्त हो गया है आपको ले चलने का आपके बहुत ही काम की और आपकी पसंदीदा बात यानी कि सिटी अपडेट्स की तरफ। जाहिर है आप भी जानना चाह रहे हो क्या कुछ चल रहा है भाई गोंडा में और उसकी अपडेट में आज क्या आपको मिलने वाला है। सो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे चलते हैं सिटी अपडेट की तरफ।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite, Ajay Khan.

हाँ जी, तो चलिए अपडेट्स में सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल आ रही है बुखार को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि तेज़ बुखार से पीड़ित एक किशोरी की जान भी जा चुकी है और पीकू वार्ड जो है वो पूरी तरह फुल चल रहा है। जी हाँ, सो मौसम में बदलाव के साथ जो बुखार और जो एलर्जी है उसके पेशेंट्स के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। सो अगर हम पारा सराय की बात करें तो यहाँ गांव के सावक पूर्वा निवासी 14 साल की बच्ची की एक झटके के साथ बुखार और संक्रमण की वजह से मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट के दौरान ही डेथ हो गई। वहीं अगर ज़िले में डेंगू के 3 नए मरीज़ मिले हैं इसकी बात हम बताएं तो मेडिकल कॉलेज का 10 बेड का पीकू वार्ड जो है फ़िलहाल फुल है। चिल्ड्रेन वार्ड में भी 12 बच्चे जो है वो एडमिट हैं। और अगर हम परिजनों की माने तो उनके मुताबिक क्षमा को जो है वो बृहस्पतिवार को अचानक बुखार आया था, इससे पहले जो पास के ही डॉक्टर से उनसे ट्रीटमेंट कराया लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ और शुक्रवार को उसके घर वाले उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुँचे। सो डॉक्टर्स ने जाँच के बाद उसे पीकू वार्ड में भर्ती कराया था। सो फिलहाल ट्रीटमेंट के दौरान उस बच्ची की मौत हो गई और जो परिवार का कहना है कि भाई चिकित्सकों ने तेज़ बुखार की जानकारी दी थी। बाल रोग विभागाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर आफ्ताब आलम का कहना है कि बालिका गंभीर स्थिति में भर्ती कराई गई थी, उसे तेज़ बुखार के साथ झटके आ रहे थे। सो संक्रमण की वजह से उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी, लखनऊ भी रिफ़र किया बट वहाँ ले जाने से पहले ही ये सब हो गया। सो मतलब कहने का ये है कि कितनी ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी बात है कि अपना ख्याल रखा जाए, अपनों का ख्याल रखा जाए। सो आपको हम बता दें, सो 12 बच्चे जो हैं वो चिल्ड्रेन वार्ड में भर्ती हैं और क्षमा को भी तेज़ बुखार के साथ झटके आ रहे थे। फिलहाल कुछ बातों को कहा गया है जिसको आपको और हमको भी ध्यान रखना होगा। बात यह है कि मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर आफ्ताब आलम ने बताया कि बच्चों को साफ पानी पिलाइए, मच्छरों से बचा कर रखिए, घर के आसपास पानी जमा ना होने दीजिए, तेज़ बुखार, लगातार उल्टी और ज़्यादा कमज़ोरी, सांस लेने में परेशानी या बॉडी पर दाने जैसे लक्षण दिखे तो बच्चे को फौरन डॉक्टर को दिखाएं, बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चों को बुखार की दवा ना दें। डायरेक्ट जो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट दे दिया जाता है दवाएँ, सो इससे क्या होता है जो सही में देना चाहिए जिस तरह से डॉक्टर देख कर समझ कर बॉडी के अकॉर्डिंग और ये जो डिज़ीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग देते हैं, बट डायरेक्ट दवा लेने से क्या होता है कि चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती है, अगर कोई चीज़ सीरियस है तो और भी ज़्यादा सीरियस होती चली जाएगी। इसलिए इस बात का ख्याल रखिए जो छोटी छोटी बात बताई गई है मेडिकल टीम के ज़रिए। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट है वो है ऑफकोर्स साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई। सो FD कराने का झांसा देकर के 2,40,000 रुपए भी ठगे गए हैं। SBI की मुख्य शाखा के पास एक जालसाज ने FD कराने का झांसा देकर के एक गांव के ग्रामीण से 2,40,000 रुपए ठग लिए। आरोपी ने जो है अकाउंट में ज़्यादा रकम होने पर जो है टैक्स कटने की बात कही और 5,00,000 रुपए की FD कराने का झांसा देकर ग्रामीण से रकम ले ली। सो पीड़ित की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अगली अपडेट की तरफ अगर हम बढ़े तो अगली जो अपडेट आ रही है वो बिसुही पर 15 से शुरू होना है पुल का निर्माण। जी हाँ, सो राष्ट्रीय राजमार्ग 330 पर बिसुही नदी के जो जर्जर और सक्रिय पुल का है उसमें आवागमन में होने वाली परेशानी अब दूर की जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर 15 अक्टूबर से 3 लेन के पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। 16 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल से बलरामपुर, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर समेत नेपाल के लोगों की भी जो राह है वो आसान होगी। सो काफ़ी ज़्यादा संघर्षों के बाद मार्च 2026 में इस पुल के निर्माण को जो है वो स्वीकृति मिली थी। सो नविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH खंड अयोध्या ने पुल के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पर साल 1912 में बना सिंगल लेन का पुल अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। 1999 में पुल के बीच में दरार आने पर बाईपास बनाकर इसकी मरम्मत भी कराई गई थी। सो गोंडा बलरामपुर रास्ते में ये सड़क चौड़ी होने के बाद भी पुल सकरा होने से यहाँ जाम की प्रॉब्लम भी
बनी रहती है और भारी जो व्हीकल्स हैं एक ही तरफ से निकल पाते हैं। सो 5 साल की कवायद के बाद परिवहन मंत्रालय ने पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। पुल के साथ फुटपाथ अलग से रहेगा और हर रोज़ तकरीबन 20,000 व्हीकल्स जो हैं वो 70,000 लोगों को आवागमन इस पुल से होता है। सो नेशनल हाईवे के अधिशासी अभियंता ने बताया है कि निर्माण कार्य शुरू होने की तैयारी चल रही है। सो फिलहाल गोंडा और बलरामपुर मार्ग पर जो बिसुही नदी है उसका पुल इटिया थोक के पास आपने देखा है कितना ज़्यादा सकरा रहता है, तो अब इस पुल को बनाया जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया था क्योंकि सच में यहाँ से निकलने पर काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ चले। सो नेक्स्ट अपडेट जो आ रही है वो आ रही है चूँकि बारिश की वजह से फसलों पर मौसम की मार हुई है और फसल बचाने की जद्दोजहद कर रहे किसानों की परेशानी भी बढ़ी है। पहले से ही गिरे हुए धान को ज़्यादा नुकसान भी अब हो रहा है। सो मक्का और धान की जो है वो फिक्र फिलहाल बढ़ गई है। बेलसर में भी दोपहर करीब 1 बजे अचानक काले बादल छाए और तेज़ हवा के साथ बारिश हुई, इससे लोगों में उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली लेकिन किसान जो है उन्होंने बताया पिछली बारिश से मक्का और अर्ली प्रजाति के धान को नुकसान हुआ था। अब दोबारा बारिश होने पर खेतों में खड़ी धान की जो बाकी फसल है वो भी प्रभावित हो सकती है। सो इसलिए जो बारिश हुई है वो फिलहाल जो फसल है उनके लिए तो बेहतर बिल्कुल भी नहीं है और इससे काफ़ी ज़्यादा और भी लॉस होने की बात सामने आ रही है। सो इसके बाद चलते हैं अपने अगली अपडेट की तरफ और अगली अपडेट जो है वो है बेरोज़गारी के विरोध में जेन ज़ी ने प्रदर्शन जो किया है। सो बढ़ती बेरोज़गारी के विरोध में यंगस्टर्स ने सोमवार को यानी कल प्रदर्शन किया। बेरोज़गारी से परेशान कई युवा धरने देने के लिए गांधी पार्क भी पहुँचे। सो सूचना पर रोडवेज चौकी प्रभारी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे और परमिशन नहीं होने की बात करते हुए युवाओं को धरने पर बैठने से रोक दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी और युवाओं के बीच काफ़ी देर तक बहस भी हुई। इसके बाद युवाओं ने हाथों में बेरोज़गारी से जुड़े पोस्टर लेकर गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने रोज़गार की मांग लेकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लीडर ने कहा कि शिक्षा पूरी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, इससे युवा परिवार पर बोझ महसूस कर रहे हैं और साथ ही कहा कि गांधी पार्क में पुलिस ने युवाओं को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया, इसलिए कलेक्ट्रेट तक मार्च करना पड़ा। युवाओं ने कहा कि सरकार रोज़गार के अवसर कम कर रही है, मांगें पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। इसके अलावा आपको हम बता दें कि भाई सोशल मीडिया पर ठगी से सावधान रहने की अपील भी की गई है। सो इंस्टाग्राम पर फेक प्रोफाइल इनाम और इन्वेस्टमेंट के नाम पर होने वाली साइबर ठगी को लेकर के कल मंडे को जिले के सभी 18 थानों में जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने स्टूडेंट्स से और इसके अलावा बिजनेसमैन से सोशल मीडिया जो यूज़र हैं उनको ठगी की तरीकों की जानकारी दी। सो SP अभिषेक ने बताया कि ठग जो है परिचित अधिकारी या सेलिब्रिटी के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर रुपए मांग सकते हैं। गिफ्ट लकी ड्रॉ या गिव अवे के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस, टैक्स और डिलीवरी चार्ज भी मांगा जाता है। सो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मुनाफे का लालच देकर फर्जी लिंक से रुपए हड़पने का भी मामला सामने आता है। पुलिस ने अनजान लिंक पर क्लिक ना करने और OTP, पिन, पासवर्ड और बैंक से रिलेटेड जानकारी साझा ना करने की अपील की है। इसके अलावा अगर किसी के भी साथ ठगी हो जाती है तो वो तत्काल फौरन 1930 जो कि नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है या फिर cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करने की बात की है कि भाई आप फौरन जाइए cybercrime.gov.in पर पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर 1930 आपको टोल फ्री नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, इस पे भी आप जो है वो कॉल करके अपने साथ हुए फ्रॉड की जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है उसको हम बताते हैं आपको। फिलहाल जो है 19 मानकों के आदेश, फिर भी स्कूल जो है वो बेहाल ही सिचुएशन में है। सो 2 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के निरीक्षण में स्कूल्स की बदहाली सामने आने के बाद BSA ने 19 पैरामीटर्स पर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए थे। 3 दिन बाद सोमवार को भी कई स्कूल्स में इन निर्देशों का असर नज़र नहीं आया।
कहीं बच्चे घास और झाड़ियों के बीच पढ़ने पर मजबूर हुए तो कहीं जल भराव और कीचड़ से होकर जो है अपने कक्षाओं तक पहुंच रहे हैं। टूटी टूटियां और ख़राब हैंडपम्प्स के कारण पेयजल संकट भी है। सफाई की कमी में जहरीले जो जंतु हैं उनका भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी घास भी उगाई है और फिलहाल बताया जा रहा लंबे समय से सफाई कर्मी विद्यालय में नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा दवा का भी छिड़काव नहीं कराया गया जिससे दोबारा से घास उगाई है। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो स्कूल से रिलेटेड थी वो हमने बताया। इसके अलावा अब हम चलते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि एथलेटिक्स से जुड़ी हुई आ रही है। सो आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित माध्यमिक शिक्षा विभाग की जनपदीय एथलेटिक्स और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का कल यानी सोमवार को समापन भी हो गया। प्रतियोगिता में 187 नंबर हासिल करके भारतीय इंटर कॉलेज कटरा बाजार की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। 163 अंकों के साथ महाराजा देवी बख्श सिंह इंटर कॉलेज बेलसर की टीम उप विजेता रही और समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। अगली जो अपडेट आ रही है उसको लेकर बताते हैं कि भाई डिजिटल तकनीक और नवाचार के लिए विनय सिंह को सम्मानित किया गया है। जी हाँ, सो कंपोजिट विद्यालय मुजेड़ के शिक्षक जो हैं विनय कुमार सिंह को बिसिंह को प्रतिष्ठित एडू लीडर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। यानी मथुरा में मौजूद KM यूनिवर्सिटी में जो एक समारोह हुआ वहाँ पर इनको सम्मानित किया गया और ये शिक्षा जगत में नवाचार ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास डिजिटल शिक्षण सामग्री AI बेस्ड एक्टिविटी की प्रभावी जो है उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है वो ऑफ़ कोर्स डायरिया से डर नहीं अभियान से जुड़े केमिस्ट को लेकर के आ रही। सो 5 साल तक के बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए चल रहे अब डायरिया से डर नहीं अभियान केमिस्ट भी अब इसमें जुड़ेंगे। सो कल यानी सोमवार को शहर के एक होटल में स्वास्थ्य विभाग PSI इंडिया और KNVU के सहयोग से जो है वो दवा व्यापारियों और केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों की कार्यशाला भी हुई। सो PSI इंडिया के मैनेजर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बताया उन्होंने कि अभियान UP के 13 और बिहार के 3 ज़िलों में चल रहा है। इसका उद्देश्य 5 साल तक के बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों को रोकना है और उन्होंने कहा कि बीमारी की स्थिति में लोग अक्सर सबसे पहले केमिस्ट से कॉन्टैक्ट करते हैं इसलिए इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम है। साथ ही साथ अब आपको बताते हैं आज होने वाले इवेंट्स के बारे में। सो आज सुबह 8 बजे से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। सुबह 9 बजे से परसपुर ब्लॉक के संसाधन केंद्र में टीचर्स का FLN प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। टीकाकरण शिविर सुबह 10 बजे करनैलगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण शिविर लगाया जाएगा। एंड इसके अलावा आपको बता दें करनैलगंज में मौजूद रामलीला भवन में अहिल्या उद्धार मारीच दरबार और नगर दर्शन का मंचन भी किया जाएगा। सो ये आज होने वाले कुछ इवेंट्स थे जिनके बारे में हमने आपको बताया। आई होप कि भाई आपको ये सारी अपडेट्स मिल गई होगी और ज़रूर आपके काफ़ी ज़्यादा काम की भी रही होगी। तो चलिए अब फिलहाल वक्त है आगे बढ़ने का, कुछ नए सॉन्ग्स को सुन लेने का आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9018935394 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज, गोंडा।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

तो एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सुबह सुबह आज क्या किया वैसे आपने? अब आप कहेंगे सुबह सुबह भाई क्या ही करता है इंसान, उठता है सबसे पहले फ़ोन ही चेक कर लेता है। बस यही तो मसला है दोस्त। तो चलिए कुछ बातें आपको हम बताते हैं कि आखिर सुबह उठते ही फ़ोन चलाने की आदत कितनी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। वैसे उससे पहले अगर आप चाहिए तो हम आपको मौका भी दे सकते हैं ये सोचने का कि आप सोच करके बताइए कि आपको क्या लगता है सुबह जो फ़ोन चलाने की आदत है इससे क्या हो सकता है, आखिर ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा है तो आप बता सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मन में ही सोच लिए। सो यस ऑफ कोर्स आपको अब बताने वाले हैं कि आखिर कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है ये मॉर्निंग का फ़ोन का इस्तेमाल। तो चलिए वो भी हम बता देंगे आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में। फ़िलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। लौट के आते हैं और बताते हैं।

0: सो सुबह उठते ही भैया फोन फोन फोन और फोन। अब कैसा होता है सुबह उठते ही फोन फोन फोन और फोन, चलिए हम आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite RJ Khan.

वैसे अगर हम आपसे पूछे कि कितने परसेंट ऐसे हम इंडियंस होंगे जो इस आदत में होंगे सुबह उठते ही फ़ोन देखने वाली, जी हाँ फ़ोन स्क्रीन पर एक्टिव होने वाले, चलिए अंदाज़ा लगाइए कितने परसेंट इंडियन होंगे जो सुबह उठते ही फ़ोन देखते होंगे। बस आप मेंशन कर सकते हैं इतने परसेंट, कोई भी आप अप्रॉक्सीमेटली जैसा अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वैसे उसके आगे अगर हम बताएं तो ये आपके फोकस, आपके मूड और स्ट्रेस पर असर डाल सकता है। जी हाँ, ये जो सुबह सुबह का हम लोगों का ये होता है ना भाई देखने का, कि किस तरह से हम ऑफ कोर्स देखने लग जाते हैं सुबह सुबह उठते ही, हमारी जो स्क्रीन टाइमिंग है वो वापस से बढ़ जाती है और हम उसी के होकर रह जाते हैं, यानी सुबह उठते ही हम कहीं और नहीं जाते हैं, सीधे फ़ोन की स्क्रीन पर चिपक जाते हैं और उसी से लग जाते हैं और न जाने क्या क्या स्क्रॉल करते करते हमारा जो है मूड है वो उस पर काफ़ी असर पड़ता है। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, कंटेंट के अकॉर्डिंग आपके मूड पर भी इसका साफ असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमने आपसे बताया कि आपके फोकस पर और आपके मूड पर इसका बेहद असर पड़ता है, और इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह जो हम स्क्रीन टाइमिंग अपनी बढ़ा चुके हैं या सुबह सुबह जो हम स्क्रीन देखते हैं उसका आखिर असर क्या होता है, राइट? सो हमारे फोकस, मूड और ऑफ कोर्स स्ट्रेस पर असर डालता है। और गीता श्रीवास्तव जी कहती, सर हम देखते हैं अलार्म बंद करने के लिए। सेम सेम यार, हम भी देखते हैं तो अलार्म बस बंद करने के लिए या तो बस नेक्स्ट स्नूज करने के लिए। सो यहाँ पे तो हम मानते हैं कि भाई सेम आदत है। एंड आपको अगर मूड और स्ट्रेस के बारे में बताएं तो सुबह फ़ोन पर मान लीजिए आपने उठाया और कोई ऐसी नेगेटिव खबर चल रही है या काम के मैसेजेस हैं या सोशल मीडिया कंटेंट देखने से जो है स्ट्रेस या एंग्जाइटी भी जो है वो बढ़ सकती है। जाहिर सी बात है अगर कंटेंट वैसा है तो आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। सो दूसरों से कंपैरिजन करने की आदत मूड पर भी जो है असर डाल सकती है। सुबह सुबह ही आप उठते ही फलाने की लाइफस्टाइल देखो, धमाके को देखो, ये देखो वो देखो, उसमें चला जाएगा। सो फिर सवाल उठता है कि भाई आखिर उठते ही फ़ोन क्यों ना देखें, वाजिब है सवाल। जवाब ये है कि सुबह जो है ब्रेन अभी स्लीप इनर्शिया से बाहर आ रहा होता है। सो फॉरेन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और ईमेल देखने से ब्रेन पर इंफॉर्मेशन लोड जो है वो बढ़ जाता है। अभी एक्टिव ही हो रहा है, अभी आपसे कोई सो के उठे हो कह दे कि हाँ हाँ तुरंत तुरंत दो बाल्टी भारी सा पानी जो है उसको पहुँचा दो, पहुँचा देंगे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो बात नहीं रहेगी जो जाग जाने के बाद प्रॉपर होती है और एक नींद से उठते ही फौरन दे दिया जाए। यानी कंप्यूटर ऑन करते ही तुरंत तुरंत तुरंत खुल जाए, तुरंत खुल जाए, अरे उसको भाई खुलने तक का टाइम तो दो, बस ऐसे इंसान भी होता है। स्लीपिंग इनर्शिया से धीरे धीरे बाहर आ रहा होता है, कुछ वक्त चाहिए होता है। सो सवाल ये भी आता है कि मान लो ठीक है भाई सुबह उठने के बाद फौरन स्क्रीन टाइमिंग पे हम नहीं जा रहे हैं तो आखिर कितनी देर ना जाए। सो आपको बता दें जागने के कम ज़रूरी ना हो तो 15 से 30 मिनट बाद सोशल मीडिया या ईमेल या गैर ज़रूरी जो नोटिफिकेशन है उससे दूरी बनाए रखें। इस दौरान ब्रेन को जो है वो नेचुरली एक्टिव होने का वक्त मिल जाएगा, खुद से एक्टिव होगा और ये ज़्यादा असर रहेगा। सो अब आती है कि भाई फोकस पर इसका क्या असर होता है। सो सुबह सुबह सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से अटेंशन बार बार स्विच होती है, इससे पढ़ाई हो, ऑफिस हो या ज़रूरी काम हो, लंबे वक्त तक फोकस करना जो है वो मुश्किल हो जाता है अगर हम सुबह सुबह स्क्रीन टाइमिंग में जा रहे होते हैं। सो ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपको हम बता दें एक फैक्ट, वो ये है कि ग्लैंस डिजिटल कंज्यूमर सर्वे 2026 की अगर हम माने तो ऐसे परसेंटेज हमने पूछा था ना कितने परसेंट भारतीय होंगे जो इस आदत से मजबूर होंगे, तो आपको बता दें 1, 2, 10, 20, 30 नहीं, 50, 60 भी नहीं, बल्कि 84% भारतीय सुबह उठते ही मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और ईमेल से दिन की शुरुआत फोकस, स्ट्रेस, मूड और ब्रेन फंक्शनिंग पर असर डाल सकती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इसलिए रिसर्च के मुताबिक यह आदत आपकी मेंटली और
फिजिकली सेहत को बिगाड़ सकती है, प्रभावित कर सकती है, इसलिए सुबह उठते ही फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। आई होप कि भाई आपको अब ये जानकारी मिलने के बाद अब आप कल का जो ऑफ कोर्स आपका वापस से जागना होने वाला है उसमें आप ज़रूर बना लें कि भाई 15 से 20 मिनट 30 मिनट कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। और हाँ, अगर आप भी गीता जी की तरह सिर्फ अलार्म को बंद करते हैं और मेरी तरह, तो कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, फ़ोन पर टिकना, नोटिफिकेशंस चेक करना, रील्स पे जाना, कंटेंट पे जाना, वो मसला पैदा कर देगा। सो चलिए भाई, आपकी सेहत का ख्याल हमको भी है और हम भी चाहते हैं कि आप भी अच्छे अच्छे भले भले रहें, ताकि आप भी सेहतमंद और सेहत याफ्ता रहें और हम भी सेहतमंद और सेहत याफ्ता रहें। आई होप कि भाई आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आइंदा से आप खुद भी और अपने घर में अगर कोई भी आपके फैमिली में है उनको भी आप यही गाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले खुद के साथ ही ये इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद आप इन चीज़ों को अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें हमने हमेशा कहा है कि बहुत बड़ा असर डालती है। इसलिए छोटी छोटी आदतों को अगर हम बेहतर कर लेंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत बेहतर होगी। इसी के साथ हमारी रेखा कुशवाहा जी भी आ गई हैं, गुड मॉर्निंग से लिखा, गुड मॉर्निंग टू यू रेखा जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में अजय जी भी आ गए हैं मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा LBS चौराहे से, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है अजय जी गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। फिलहाल वक्त हो गया है खूबसूरत से गाने को आप तक पहुंचा देने का, तो चलिए भाई इस गाने को एंजॉय करते हैं अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, क्योंकि यही तो है आपके गोंडा शहर की धड़कन।

0: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर।
1: ओए सन्नू।
2: अरे बोलो चक्कू।
1: तुम्हें पता है
2: क्या,
1: मेरे पापा ना बहुत बड़े संगीत तज्ञ हैं। और तुम्हें पता है जब वो सितार बजाते हैं टन, तब सैकड़ों आदमी ना पत्थर की तरह बैठ जाते हैं।
2: और हम बता चक्कू, जब हमारे पिताजी जो काम करते हैं ना, तो हजारों आदमी काम छोड़कर चलने लगते हैं।
1: वो क्या बजाते हैं भाई?
2: नील का भोंपू।
3: मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: तुझे मेरे बारे में वो सब पता है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया।
2: You know you've been my best buddy since forever, right?

0: लगी।
1: सो फिलहाल आपको चैट करने का तो बड़ा शौक है, और चैट को हम कई बार ये भी चाहते हैं कि भाई हमारी प्रिवेसी में रहे, ऑफ कोर्स। तो चलिए व्हाट्सएप से जुड़े हुआ एक फीचर के बारे में बताने वाले हैं, और मुझे तो उम्मीद है कि भाई आपको ये पसंद आने वाला है। अब कितना पसंद आने वाला है या ये कितना ज़्यादा काम का है, तो खैर आप सुनने के बाद खुद ही इसका अंदाज़ा लगाने वाले हैं। पर आपको ये बता दें कि व्हाट्सएप में अब कोई नहीं देख पाएगा जो आपकी सीक्रेट चैट होंगी। क्या है पूरा फीचर और क्या कुछ इसमें करना होगा, क्या बताया गया है, आइए सारी जानकारी से आपको कराते हैं रूबरू आपके मॉर्निंग वाले शो में। अब हम लोग कुछ हो जाते हैं टेकी टेकी, यानी कि टेक्नोलॉजी की बात।
2: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, Aajya Khan.

सो अब ऐसा कहा जा रहा है कि भाई व्हाट्सएप पे कोई नहीं देख पाएगा आपकी जो चैट होगी उसको। सो रिस्ट्रिक्टेड चैट में लगेंगी 4 पाबंदियां। जी हाँ, जिस 4 पाबंदियों को लेकर के बोला जा रहा है कि आपकी जो चैट होगी उसकी प्राइवेसी होगी, कोई देख नहीं पाएगा, तो जो रेस्ट्रिक्टेड चैट होगी यानी आपकी जो सीक्रेट रखने वाली आपके अकॉर्डिंग, उस पर 4 तरह की पाबंदियां लगेंगी। पहला ये है कि चुनी हुई चैट व्हाट्सएप वेब या दूसरे लिंक्ड डिवाइस पर नहीं खुलेगी। अब व्हाट्सएप वेब क्या है? जब अपने अकाउंट को हम किसी दूसरे पीसी पर लैपटॉप में खोलते हैं तो स्कैन करके खोलते हैं, उसे वेब व्हाट्सएप बोलते हैं। सो वेब व्हाट्सएप हो या दूसरी कोई भी लिंक्ड डिवाइस हो जहां पर आपका व्हाट्सएप खुलता हो, तो वो चैट नहीं खुलेगी जो आपने उसको सीक्रेट किया होगा। दूसरा क्या है? फोटो वीडियो गैलरी में अपने सेव भी नहीं होंगी। जी हाँ, अगर कोई सीक्रेट के उससे आ रही है तो आपके गैलरी में या फोटो में या वीडियो में सेव भी नहीं होंगी। इसके अलावा उस बातचीत को आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे कि मान लीजिए एक्सपोर्ट कर पाएं, जैसे कि नॉर्मल चैट हो जाती है, बट वो बातचीत आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं होंगी। और सबसे अहम जो बताया जा रहा ऑफ कोर्स कि मेटा भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सो मेटा जो कि इसको बनाने वाला चलाने वाला है, वो खुद भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और ऐसी जानकारी जो है वो हम नहीं बल्कि ऑफ कोर्स खुद ये मेटा ने कहा है। सो व्हाट्सएप को लेकर के ये जो खबर आई, जाहिर है ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर हो सकती है। और आपके लिए अगर आप भी स्पेशली चाहते हैं कि भाई कुछ चैट्स जो है वो आपकी सीक्रेट ही रहे, तो इसमें ये सारे फीचर्स जो हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। आई होप कि भाई ये जानकारी आपके काफ़ी ज़्यादा काम की होगी और कहीं ना कहीं इसमें आपकी हेल्प भी होगी। यानी अगर आप ढूंढ रहे होंगे भाई ऐसा कोई फ़ीचर है, ऐसा कोई फ़ीचर है, सो फाइनली ये फ़ीचर आ गया है और ये फ़ीचर आपको मिल गया, तो मुबारक हो। चलिए मिठाई खिलाने की बातें हम नहीं करते, बस खुश रहिए, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको आपकी चाही हुई चीज़ें मिलती जाए और लाइफ में जितनी मिल जाए उतना बेहतरीन है, उतना ही अच्छा है, उतना ही सच्चा है ना। सो यस, चलिए फ़िलहाल वक्त हो गया है आपको म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ ले जाने का। और यस, अब म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ चलेंगे, उसके बाद वापस से आएंगे। आने के बाद भी बहुत कुछ है जो आज आपके मॉर्निंग शो में आपके लिए है, तो इसलिए बहुत सारी बातें हम लगातार करते रहने वाले हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

0: सुना कुछ नहीं? आपको नहीं पता? ओहो हो हो हो, वैसे आपको हम बता दें कि जीरा पाउडर जो है वो अनसेफ है और FSSAI ने वापस मंगा लिया है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा नाम जिसका अक्सर हमारे घरों में कई सारे मसाले इस्तेमाल होते हैं, उसका एक जो है जीरा पाउडर अनसेफ है और उसको FSSAI ने वापस मंगा लिया है। कौन है आखिर वो ब्रांड जिसका जीरा पाउडर अनसेफ है और जिसको FSSAI ने वापस मंगा लिया है? चलिए जानने के लिए चलते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, Ajay Khan.

सो FSSAI ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स को बाजार से प्री पैक्ड जो जीरा पाउडर है उसको वापस मंगाने का निर्देश दे दिया है। सो सैंपल्स की जांच में इसे इस्तेमाल के लिए अनसेफ पाया गया है। सो आपको बता दें कि FSSAI ने क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। सो सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में FSSAI ने कहा कि वो देश भर के जो कंज्यूमर्स हैं इनके हेल्थ की सुरक्षा का इसके लिए खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। FSSAI ने कहा कि गंभीर स्वच्छता संबंधी कमियों की वजह से क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड का FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल लैब जांच में तय सीमा से ज़्यादा कीटनाशक अवशेष मिलने के बाद एवरेस्ट के खिलाफ ये कदम उठाया गया है। सो लगातार बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम सुने, कभी कभी कहीं कभी कहीं मैगी और नेस्ले जैसा ब्रांड भी फंसा, और कई सारे प्रोडक्ट्स कई अलग अलग कंपनीज के, कई अलग अलग बड़े ब्रांड्स के जिनका हम लोग आँख बंद करके इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कई कई प्रोडक्ट्स जो हैं वो जाँच में फेल होते नज़र आते हैं। फिलहाल ये नया एक मामला आया है एवरेस्ट के ज़ीरा पाउडर का जिसको अनसेफ बताया है, और FSSAI ने वापस सारे के सारे पैकेट्स जो बाज़ार में जा चुके हैं उनको वापस मंगाने के लिए कहा है, और साथ ही साथ लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। सो फिलहाल कहीं ना कहीं इसी वक्त में जब हम हेल्थ को लेकर के कहते हैं कि इतनी सारी डिसीज़ हो गई हैं, इतनी सारी बीमारियाँ फैल चुकी है, इसी बीच में जब कुछ भी ऐसा आता है या कुछ भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कितने ज़्यादा सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है मिलावट के ख़िलाफ़। ये तो एक ब्रांड है, एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में पता लग पाया, इस तरह के लोकल कितने सारे ब्रांड्स होते हैं, कितनी सारी मिलावट या कितनी गंदगी से चीज़ें बनती है। शायद बहुत कुछ अभी सुधारना बाकी है। वैसे इसके लिए आप और हम भी कदम उठा सकते हैं, जहाँ भी ऐसा कुछ देखते हैं वहाँ पे लीगल वे में जा करके उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ताकि मिलावट के ख़िलाफ़ हमारी जंग जो है वो जारी रहे। क्यों, सही कहा ना। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

हाँ जी, तो भाई फिलहाल एक सरप्राइज है उन लोगों के लिए जो स्पेशली म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, यानी जिनको म्यूजिक पसंद है, जिनको सॉन्ग्स पसंद है, जिनको सिंगर्स, सुपरस्टार्स, रॉक स्टार लगते हैं। सो ये बहुत जल्द आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, और यही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिलने वाला है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या है, इतना बड़ा सरप्राइज है और आपको पता ही नहीं है। ऑफकोर्स नहीं पता होगा, तभी तो हम बता रहे हैं। चलिए अंदाज़ा लगाइए और बताइए क्या सरप्राइज मिल सकता है। और एक हिंट के तौर पे हम बता दें, उस सिंगर की तरफ से जिसने अभी हाल ही फिलहाल में संगीत से संन्यास ले लिया है, और वो लोगों के दिलों में अपने हर गाने के ज़रिए धड़कता रहता है। सोचिए और बताइए।

0: हाँ जी, तो भाई हमने पूछा था ऐसे कौन से सिंगर के बारे में जिनको अभी जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया, और फिलहाल उनके तरफ से बहुत बड़ा सरप्राइज़ पूरे देश को मिलने वाला है। और मैंने कहा था कोई अगर भाई आपको डाउट है या कोई भी अंदाज़ा है जो आप बता सकते हैं। सो फिलहाल गीता जी ने पहले रिस्पॉन्ड किया, अरिजीत सिंह आ रहा है। ऑल राइट, मार्च में बैंगलोर में, ये लो भाई इन्होंने बाकायदा डेट और इवेंट बता दिया है। इसके साथ ही साथ 11 अक्टूबर से टिकट आ रही है। क्या बात है, काफ़ी अपडेटेड है। एंड सविता दुबे जी लिखती हैं अभिजीत सिंह। अच्छा अरिजीत को अभिजीत कर दिया, कोई बात नहीं, इतने में अरिजीत नाराज़ नहीं होगा, मुझे पता है। ऑल राइट, सो यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही फरमाया। आपको बताते हैं कौन सा इवेंट है, कौन सा सरप्राइज़ है जो अरिजीत जा रहे हैं देने पूरे देश को, और म्यूज़िक लवर्स के लिए ये कोई बहुत बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। क्या है पूरी बात, आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

सो आपने कहा बेटा बुला रहा है देखने के लिए, ऑल राइट, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको पहले ही इस इवेंट के बारे में पता है। वैसे हम अपने लिसनर्स को बता दें कि भाई पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है, और अरिजीत जो हैं 5 अक्टूबर को म्यूज़िक इंडस्ट्री में 20 साल इनको पूरे हुए हैं। इस ख़ास मौके पर इन्होंने साल 2027 में 9 शहरों स्टेडियम पर अपने कॉन्सर्ट टूर का ऐलान किया है। सो म्यूज़िक कॉन्सर्ट में अरिजीत सिंह अगर तुम हो साथ, तुम ही हो, विदा करो और कई हिट गाने गाएंगे। और अरिजीत सिंह ने साल की शुरुआत में सिंगर ने म्यूज़िक करियर से चुकी संन्यास की घोषणा करके हर किसी को हैरान कर दिया था। ऐसे में सिंगर के कॉन्सर्ट की खबर फैंस के लिए किसी खुशखबरी से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। सो अरिजीत सिंह ने म्यूज़िक कॉन्सर्ट की घोषणा करके फैंस के लिए बड़ी खबर दी और सिंगर की म्यूज़िक इंडस्ट्री में 20 साल पूरे होने के खास दिन पर घोषणा की गई है। और साथ ही साथ अरिजीत ने कहा है, म्यूज़िक के 20 साल मेरे लिए बेहद अच्छे रहे। इस जर्नी को सबसे अहम हिस्सा वो लोग रहे जिन्होंने इन गानों को सुना और नई पहचान दी। मैं पूरे भारत को दूर टूर करने और मंच पर लाइव फैंस के प्यार और उनका एक्सपीरियंस लेने के लिए निकल रहा हूं मंच पर लाइव, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो मेरे पास बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना बाकी है। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ और टीम इनोवेशन अरिजीत का म्यूज़िक कॉन्सर्ट करवा रहे हैं। सो अरिजीत म्यूज़िक कॉन्सर्ट अहमदाबाद इनका होगा, चंडीगढ़ होगा, जयपुर, बेंगलोर, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे, इंदौर और हैदराबाद में होना है। सो सिंगर की जो म्यूज़िक कॉन्सर्ट है वो काफ़ी शानदार होने वाला है। स्टेडियम में कॉन्सर्ट से जुड़े हाई टेक्निक का इस्तेमाल भी किया जाएगा, यानी सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास और सब कुछ बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। सो अरिजीत सिंह ऑफकोर्स एक ऐसा बहुत बड़ा नाम जिसको हर कोई दिल से चाहता है, पसंद करता है। आई होप कि भाई अब आप भी एक्साइटेड होंगे इन शहरों में किसी एक शहर जाने के लिए, क्योंकि अरिजीत ने जब से घोषणा की है संन्यास की उसके बाद से फ़िलहाल सामने नहीं आए हैं, और अब जब आ रहे हैं इस फॉर्म में तो हर कोई इंतज़ार कर रहा है। ये एक छोटा सा गाना उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं, फिर वापस से आते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।

क्या बात है, वाओ। कुछ ऐसे गाने जो सिर्फ सुने नहीं जाते, जो जिए भी जाते हैं। उनमें से आशिकी टू का ये गाना चाहूं मैं आना, आई होप कि आपने काफी एंजॉय किया होगा। और भाई जाहिर सी इसमें अरिजीत साहब की आवाज है। जिन अरिजीत साहब का 2027 में लाइव कॉन्सर्ट 10 शहरों में होने वाला है, उनके बारे में हमने बताया था। एंड यस, इसके साथ ही साथ चैट बॉक्स की बात करें तो महेंद्र देवन फ्रॉम राजस्थान से आ चुके हैं, लिखते हैं गुड मॉर्निंग नमस्कार अदनान सर जी। गुड मॉर्निंग नमस्कार आपको भी महेंद्र जी, राजस्थान से गोंडा एफएम पर आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में आरजे अदनान के जरिए। एंड यस, हर उस लिसनर को जो फ्रिक्वेंसी से जुड़े हैं, रेडियो गार्डन से जुड़े हैं और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया। एंड फिलहाल अब चलने का वक्त आ गया है, गाने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। आज का शो कैसा लगा ये भी हमको ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे लगता है कि अब लेना होगा आपसे इजाज़त। आज का शो कैसा लगा ये हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिलहाल आप सुनते रहिए अपना गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और साथ ही साथ अब आने वाले बैक टू बैक शोज एंजॉय करते रहिए अपने गोंडा एफएम पर।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में

0: सतर्क रहें, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9860 9876 9819817। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
6: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
6: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
7: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब
8: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
10: नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपनी आरजे समता आ गई हूँ गांव की गूंज की टीम के साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के माध्यम से आप सभी से एक बेहद खास बात और यात्रा साझा करने। आज हम सभी यानी मैं और गांव की पूरी टीम यानी गांव की गूंज की पूरी टीम आपको ले चलेंगी एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मानविंग लोंग की ओर। साथ ही आपके दिल यानी गोंडा के उस पन्ने को फिर से खोलेंगे जो कभी देश के सबसे गंदे शहर के रूप में दर्ज था, और फिर कैसे यहां के सभी लोगों ने आत्म मंथन और संकल्प से इसे UP का सबसे साफ टॉप 5 शहरों में बनाया।
11: हाँ समता, यही नहीं, आसपास के गांव जैसे करनलगंज, मनकापुर, नौबस्ता, बालपुर, कटरा, पड़री कृपाल, तिवारी

0: पूर्वा, पंडित पूर्वा, केशवपुर पहाड़वा, इमिलिया आदि की जनता ने भी इस कार्य में भरपूर योगदान दिया है।
1: हाँ किरण दी और समता दी, सही कहा आपने, पर आज ये गीता दी कहाँ रह गईं? शायद पड़ोसन सरला और विमला को सफाई की हिदायत देने में रह गई होंगी, मैं देख कर आती हूँ। तब तक आप हम सबको एक गीत सुना दीजिए जिसके बोल हैं, शिव की धनुषिया को तोड़ दियो रे दशरथ के ललनवा।
2: हाँ भाई, अयोध्या की ओर चलते हैं और अवध की माटी से जुड़ते हैं, राम जी का और सीता जी का स्वयंवर याद करते हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, तो लो सुनो ये सॉन्ग।

0: कहा?
1: अरे कहाँ रह गई गीता दीदी भाई?
2: अरे हम सरलवा और बिमला का समझावत रहे कि गंदगी जौन है कचरा पेटी में डारा करो, बस सब सुनते नहीं।
1: तो आपने उन्हें एशिया के सबसे अच्छे गांव मावली नोंग के बारे में क्यों नहीं बताया?
2: ये कौन सी जगह है? अरे तनिक बढ़िया से बताओ।
3: मावलिंग नोंग एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, इसे भगवान का बगीचा भी कहते हैं।
4: पर समता दी, इस गांव को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव क्यों कहते हैं?
3: क्योंकि जया, यहां एक भी तुम्हें कूड़ा देखने को नहीं मिलेगा। ये गांव मावलिंग नोंग हिमालय की अद्भुत सुंदरता के लिए जाना जाता है, साथ ही पर्यटकों के आकर्षक केंद्र भी बना है। ऐसा क्यों है ये किरण दी बताएंगी, पर बाकी बातें मैं बता देती हूँ। मानविंग लोग, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है, एक शांत और सुंदर स्थान है जिसका वातावरण किसी दिव्य उद्यान जैसा मनमोहक है। ये गांव और सपाटे के लिए आकर्षक तत्वों से अधिक प्रचलित है।
2: हाँ समता, अब हमों का याद आवा, पिछले साल पड़ोस की जो मंजू है वो अपने पति के साथ वही गाँव में घूमे गयी रहा है। महुरिया गांव की जो मंजू देवी है एक प्रगतिशील किसान की पत्नी है। वो बतावत रही कि मावली नो मा सड़क पर एक को पत्ता ना पई हो, अतनी सफाई रहा था, सबके द्वार प्राकृतिक रूप वाले हैं जानो कि नहीं, और जो लगा थे सड़क मट्टी से लीप दी गई हो, बहुत सुंदर गांव होए।
1: हाँ गीता जी, मावली नोंग में आस्था के प्रतीक भव्य गिरजाघर से लेकर सादगी से भरी आरामदायक जीवन शैली को दर्शाने वाले घर तक हैं।
4: हाँ दीदी, मैंने भी पढ़ा है कि यहाँ प्रकृति का भरपूर आनंद मिलता है, जिसका उदाहरण है अद्भुत लिविंग रूट ब्रिज, जहाँ प्राचीन वृक्षों की जड़ों का उपयोग करके पीढ़ियों से निर्मित एक इंजीनियरिंग चमत्कार को सजीव रूप दिया गया है।
1: हाँ, मावल्या नाग का आकर्षण केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है, ये सच्ची मेहमान नवाजी और एक सरल शांतिपूर्ण जीवन शैली अपनाने का अवसर प्रदान करता है। ये गांव उत्तरी पूर्वी भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक गांव है। पता है जया, डिस्कवर इंडिया पत्रिका द्वारा इसे एशिया के सबसे स्वच्छ गांव होने का खिताब भी मिला है।
2: अरे ये सब तो ठीक है, अतना बतिया लिए हो, अब हम कहीं तो तनिक गौना ही हुई जाए। ए किरण, कही दो बलमुआ से मोहे ले जाए, ये गाना हमें बहुत सुनने में नीक लागत है। तब तक हम सबका ये बताए दी कि एशिया के सबसे साफ सुंदर गांव मावली नोंग है।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं गांव की गूंज, वो गूंज जो मिट्टी से उठती है, वो आवाज जो हमें हमारे जड़ों की याद दिलाती है। आज हमारी टीम एशिया के सबसे स्वच्छ गांव की ओर जाने को तैयार है। मेघालय की हरी भरी पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव मानविंगलोंग। जया, अगले हफ्ते की टिकट करा दी है ना सबकी?
1: हाँ समता दी, वैसे भी दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है, वहाँ के गिरिजा घरों की रौनक तो देखने लायक होगी। बस गीता दी और सरला दी का टिकट अभी वेटिंग में है।
2: अरे बढ़िया है, दोनों जनी अब ज्ञान न दे हैं, बहुत बोलत रही।
3: छोटकी ननदिया जहर बोले राजा, अरे छोटकी नन

0: हम तो भाई बहुत परेशान है। पूछो काहे? गोंडा और इके आस पास के गावन का लेके बहुत गंदगी रहत है।
1: हाँ दी, मानविन लोग में सड़कें कूड़े नहीं फूलों से सजती हैं। हर घर के बाहर डस्टबिन होता है, वो भी बांस का। यहाँ प्लास्टिक का उपयोग न के बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात, स्वच्छता संस्कार में है, मजबूरी में नहीं। यहाँ के बच्चे सबसे पहले क ख ग के साथ सीखते हैं साफ रखना, सहेजना और सम्मान करना।
2: मतलब स्वच्छता प्लस साक्षरता यानी मजबूत गांव। मालवी नोंग हमें सिखाता है कि स्वच्छता और साक्षरता साथ साथ चलती है। जब गांव पढ़ा लिखा होता है तो वो गंदगी को आदत नहीं समस्या समझता है। यही वजह है कि ये गांव छोटा है परंतु यहाँ की सोच बहुत बड़ी है।
3: अच्छा सुनो सुनो सुनो सभी लोग, अब लौटते हैं अपने गोंडा की ओर और अब जरा आंखें बंद करें और सोचें। क्या सोचें? गांव के बारे में। देखिए, शुकुलपुरवा की गलियां, नौबस्ता की सुबह, नवाबगंज के खेत, बालपुर कटरा बाजार की हलचल, मोहरिया पुरैना की मिट्टी की खुशबू, इसी तरह से रोहिणपुरवा, डेहरास, रामचेलापुर जिसे अब रामचेरापुर बुलाते हैं, भाई साहा, पांडेपुरवा, पंडितपुरवा, सिसई, खमरौनी, मधईपुर, मछली गांव, दुल्हिन दुल्हापुर, खुरहसा, वजीरगंज, तरबगंज आदि की हरियाली। अरे भाई, मेहनती लोग और संस्कार और अपनापन, ये सब तो हमारे इन सभी गांव में भी है। बस अगर कमी है तो व्यवस्थित स्वच्छता और सामूहिक जिम्मेदारी की।
0: अच्छा बत कहियो बहुत जरूरी है, लेकिन तनिक कुछ गौनई हुई जाए तो उनका हर्ज है। चलो सोहर गा लिया जाए। बेटी मेरी सुकुमार जी।

0: सच कहें तो गांव और शहर अलग नहीं है, अंतर बस इतना है कि गांव में हरियाली ज्यादा है, हवा ज्यादा है, साफ है, रिश्ते ज्यादा सच्चे हैं, और शहर साफ सड़कों, कूड़ा प्रबंधन, जिम्मेदार नागरिकों की सीख गांव से ले ले और गांव तकनीक शिक्षा योजनाओं की सीख शहर से ले ले तो फर्क अपने आप मिट जाएगा।
1: तो ठीक है, युवा गांव की ओर लौटें, आज फिर इसकी जरूरत है। खेतों को सम्मान मिले, स्वच्छता को संस्कार बनाया जाए और साक्षरता को हथियार। शहर में रहकर गांव को मत भूलिए और गांव में रहकर खुद को पीछे मत समझो।
2: जिस गांव की गलियां साफ होती हैं, वहां सोच भी साफ होती है और जहां सोच साफ होती है वहीं भविष्य उज्जवल होता है।
0: तो श्रोताओं साथियों, आज की गांव की गूंज में हमने सीखा मानवीर लोंग से प्रेरणा, गोंडा से उम्मीद और अपने गांव का भविष्य। तो आइए अपने गांव और शहर को एक जैसा सुंदर, एक जैसा स्वच्छ और एक जैसा सशक्त बनाएं। मैं हूं आपकी अपनी आज समता, तो फिर मिलेंगे आपसे अपनी स्वर कोकिला किरण पांडे यानी हमारी प्यारी किरण दी के साथ में, आपकी प्यारी गीता दीदी और समझदार जया के साथ एक नई गांव की गूंज के नए एपिसोड के साथ।
3: पर समता दी, एक गीत सुनते चलें तो मजा आ जाए।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं साथियों, गांव की गूंज फिर एक सफर पर चलेगी अगली बार। जाते जाते मैं ये गीत सही

गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई बज चुके हैं 12 और वक्त हो चुका है आपके अपने शो ज्ञानस्त्री लाइव का। जी हाँ, ज्ञानस्त्री लाइव, और आज हम सुन रहे हैं स्वास्थ्य संगिनी। जी हाँ, स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज दिन शनिवार, और शनिवार के दिन हम बात करते हैं आपकी सेहत की। आपकी सेहत यानी कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं और किन किन चीज़ों से आपको अवेयर होना चाहिए। ऐसे ही आज हम भी कुछ चीज़ें लेकर आए हैं जिसके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन आपको असल में उसका कारण, वो क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है और उसका क्योर क्या है, वो आपको अभी तक नहीं पता है। और हम उसे बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते रहते हैं, टालते रहते हैं कि यार छोटी मोटी प्रॉब्लम ही तो है, लेकिन ये छोटी मोटी प्रॉब्लम ना बहुत बड़ी हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ की। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, और सबसे ज़रूरी बात, आपका पेट ठीक होगा। हाँ दोस्तों, आज आपके पेट पे ही आज हम बात करने वाले हैं। आप सुन रहे हैं अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी और मैं हूँ आपकी आरजे आयुषी, आपकी दोस्त, आपके आज के कार्यक्रम की होस्ट। आज का टॉपिक है दोस्तों फूड पॉइजनिंग। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ा ही बोरिंग टॉपिक लग रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। ये टॉपिक उतना बोरिंग नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपकी ज़िंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है। और मैं ये गारंटी देती हूँ कि आज के कार्यक्रम के बाद आप बाहर का खाना खाने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लीजिए रविवार की छुट्टी है, आप परिवार के साथ बाहर गए हैं, मज़ेदार खाना खाया है, गोलगप्पे खाए हैं, चाट खाई है, पानी पूरी है, और साथ में एक कटोरी दही बड़ा मिल गया। भाई वाह, दिन ही बन गया मान लो। शाम को घर आकर आप सीधा सो गए, रात में अचानक उठे और पेट में ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा मरोड़ उठ रहा है कि आपसे सहन नहीं हो रहा है। उसके बाद उल्टी, दस्त, बुखार, ये सब चालू हो गया, और आपके मन में तुरंत यही ख्याल आएगा कि अरे ये क्या हो गया मुझे। बस दोस्तों, यही है फूड पॉइजनिंग। और ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक लाखों भारतीयों की, कह सकते हैं उनके अधिकतर हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन होने वाली एक प्रॉब्लम है। जी हाँ, भारतीय, जहाँ पे भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे तेल मसाला, बाहर का खाना और ये चटपटी चीज़ें का सेवन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिर्च मसाले खाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हंसी मजाक एक तरफ और फूड पॉइजनिंग एक तरफ, क्योंकि भाई फूड पॉइजनिंग एक बहुत ही गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल लगभग 60 करोड़ लोग, सोचिए 60 करोड़, कितनी बड़ी संख्या होती है, ये लोग दूषित खाने की वजह से

0: बीमार हो जाते हैं और इनमें से लगभग 4,20,000 लोगों की तो मौत भी हो जाती है। है ना ये आंकड़ा बहुत ज्यादा डरावना। जी हाँ, सिर्फ एक मामूली सी फूड पॉइजनिंग जिसे आप सोचते हैं बहुत ही छोटी मोटी समस्या है, लेकिन देखिए लगभग 4,20,000 लोगों की मौत इससे हो जाती है। भारत में हर साल लाखों मामले सामने आते हैं और ये सिर्फ वो रिपोर्ट हैं जो रिपोर्ट होती हैं, यानी कि जो दर्ज हुई होती हैं। जो घर पर ठीक हो जाते हैं वो उनकी गिनती अभी हमारे पास नहीं है। तो चलिए सबसे पहला सवाल पे हम चलते हैं, जो कि है फूड पॉइजनिंग आखिर होता क्या है। सरल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो जब हम कोई ऐसा खाना खाते हैं या पीते हैं जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी या जहरीले केमिकल्स मौजूद होते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर जाकर तबाही मचा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। जी हाँ, फूड पॉइजनिंग, इसे मेडिकल भाषा में फूड ब्रोन इलनेस भी कहा जाता है। हिंदी में इसे विषाक्त भोजन रोग भी कहते हैं, लेकिन हम आम भाषा में इसे पेट का खराब होना कहते हैं। अब दोस्तों, खाना खराब होता कैसे है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इसको थोड़ा सा हम बहुत ही ज़्यादा डीप समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। देखिए, जब आप खाना बनाते हैं तो वो गर्म होता है और उसमें बैक्टीरिया नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे खाना ठंडा होने लगता है और खुले में रखा होता है वैसे ही बैक्टीरिया की पार्टी शुरू हो जाती है। जी हाँ, बैक्टीरिया इतने मेहनती होते हैं कि वो हर 20 मिनट में अपनी पॉपुलेशन को डबल कर देते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि एक बैक्टीरिया से दो, दो से चार, चार से आठ और कुछ ही घंटों में इनकी जनसंख्या लाखों में हो जाती है। काश इतना मेहनती हमारा इंसान भी होता कि जितनी रफ्तार से ये बढ़ रहे हैं वैसे ही जो है हमारी तरक्की भी आगे बढ़ती। दोस्तों, आप समझते हैं कि ये फूड पॉइजनिंग के कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। हाँ, ये एक नहीं होते बल्कि कई तरह के होते हैं। पहला प्रकार इसका है बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, ये सबसे आम है और सबसे ज़्यादा केसेस भी इसी से होते हैं। देखिए, कई प्रकार के बैक्टीरिया हमारे खाने में छुपकर बैठ जाते हैं और मौका मिलते ही वो अपना हमला भी शुरू कर देते हैं और उन्हीं को हम बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। दूसरे प्रकार की हम बात करें तो वो वायरल फूड पॉइजनिंग होता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए जैसे वायरस दूषित पानी और खाने के जरिए शरीर में पहुंच जाते हैं। ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि इनका इन्फेक्टेड जो इंसान होता है, जिसको इसने उन्हें इन्फेक्ट किया होता है, वो एक दूसरे में भी फैल सकता है। उसके बाद अगर हम तीसरे प्रकार का जिक्र करें तो इसे हम कहते हैं पैरासाइटिक फूड पॉइजनिंग। इसमें छोटे छोटे परजीवी खाने या पानी के जरिए पेट में पहुंचते हैं, ये ज़्यादातर दूषित पानी पीने से होता है। उसके बाद अगर चौथा प्रकार की हम बात करें तो केमिकल या फिर टॉक्सिक फूड पॉइजनिंग, ये तब होता है जब खाने में कोई मिलावट हो, जैसे दूध में यूरिया, मिठाई में हानिकारक रंग, सब्जियों में अत्यधिक पेस्टिसाइड। ये सबसे खतरनाक है क्योंकि इसका असर लंबे समय तक हमारी बॉडी पे रहता है। तो दोस्तों, एक मज़ेदार बात मैं आपको अब बताती हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो कहते हैं यार पिछले हफ्ते शादी में कुछ खाया होगा, शायद उसी में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, कुछ ज़्यादा खा लिया होगा या कुछ बेकार सा खा लिया होगा, लेकिन उनके साथ बैठे दूसरे लोग को कुछ भी नहीं हुआ होता है। ऐसा क्यों? आपको लगता है कि आपने भी ये नोटिस किया होगा कि एक ही घर में चार लोग, चारों ने एक ही पार्टी से खाना खाया और पार्टी से आते हैं तो दो लोग बीमार हो जाते हैं, दो बिल्कुल चंगे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, मैं आपको बताती हूँ भाई। देखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों हर इंसान की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, वो उसी खाने को खाकर ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ लोग का इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक होती है कि वो बीमार पड़ जाते हैं। एक और ज़रूरी और फ़र्क समझिए, लोग फूड पॉइजनिंग और स्टमक फ्लू को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। स्टमक फ्लू वायरल इन्फेक्शन है जो धीरे धीरे आता है 24 से 48 घंटे में, जबकि फूड पॉइजनिंग के लक्षण तेज और अचानक आते हैं, खाने के कुछ घंटों में ये अपना असर दिखाने लगते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई, ये फूड पॉइजनिंग का मतलब ये नहीं है कि खाने में लिटरली जहर ही डाल दिया गया हो, बस खाना थोड़ा सा दूषित हो जाता है, बस इतनी सी ही ये बात है। लेकिन ये दूषित खाने खाकर जो हमारी हालत होती है, अगर उसको हम गंभीरता से ना लें तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले सकती है, आपकी डेथ भी इससे हो सकती है। दोस्तों अब एक चौंकने वाली बात भी मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि जो खाना दूषित होता है उसका कोई टेस्ट नहीं बदलता, कोई स्मेल नहीं आती और कोई रंग नहीं बदलता। जी हाँ, सबसे बड़ा धोखा यही होता है। आप खाना खाएंगे, आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, कुछ घंटों बाद आपका पेट बोलेगा कि यार आपने क्या ही खिला दिया मुझे। इसीलिए फूड पॉइजनिंग इतनी ट्रिकी होती है कि आप समझ नहीं पाते कब, कैसे, क्या और क्यों हो गया ये। दोस्तों आज हम सबसे पहले खंड में हमने ये समझा कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है, कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और ये कैसे होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि खाना बाहर से नॉर्मल दिखे तो भी वो दूषित हो सकता है। अब थोड़ा सा ब्रेक की तरफ चलते हैं, हम वापस आएंगे और आपसे बात करेंगे लक्षणों की, यानी शरीर में ये कैसे सिग्नल देता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है। बने रहिए हमारे साथ अपने प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। हम आते हैं ब्रेक के बाद और बातें करते हैं इस बहुत ही गंभीर विषय पे।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9816 9876 9819817। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी आज की होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज दिन शनिवार है और शनिवार के दिन आरजे आयुषी आती हैं लेके कुछ स्वास्थ्य की बातें। और आज का जो विषय है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, क्योंकि इस पे हमें थोड़ा सा ज्यादा गौर फरमाना चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं गर्भावस्था की, छोटे बच्चों की, छोटे बच्चों के हेल्थ की, आपके हेल्थ की और आपके परिवार के सेहत की। लेकिन मैं अगर आपको सही बताऊं तो जब तक आप एक परिवार प्लान नहीं करेंगे, सही सदस्य, परिवार का सही आकार का चुनाव नहीं करेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। जी हाँ, क्योंकि जितने लोग रहेंगे उतना ही खर्चा भी बढ़ेगा और आज के युग में खर्चा चलाना क्या बात होती है ये तो आप बहुत ही अच्छे से समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों पहले लिंक में हमने जाना कि परिवार नियोजन क्या है, अब बात करते हैं कि उससे होने वाले फायदों की। जी हाँ, और साथ में ये भी कि अगर हम परिवार नियोजन ना करें तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए भाई, जितने फायदे हैं ना उतने ही अगर आप इसको नहीं फॉलो करते हैं तो इसके नुकसान भी हैं। नुकसान जानने से पहले हम चलते हैं प्रॉफिट की तरफ, क्योंकि इंडियंस प्रॉफिट के पीछे बहुत ज्यादा पागल है। दोस्तों परिवार नियोजन के फायदे अनगिनती हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी फायदा है माँ और बच्चे की सेहत। जब दो बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर होता है तो माँ का शरीर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, वो अगले बच्चे के लिए तैयार होती है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। बच्चे को भी पूरा पोषण मिलता है, माँ का दूध मिलता है और माँ का पूरा ध्यान भी मिलता है। जब बच्चा एक छोटा होता है और एक ऐसी स्थिति में होता है जब वो पूरी तरीके से अपनी माँ पे और अपने घर वालों पे निर्भर होता है, तो उस बच्चे को 2 से 3 साल तक पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान और पूरा केयर चाहिए होता है। तो इसीलिए बच्चों में सही समय का गैप होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरे फायदे की अगर हम बात करें तो वो है आर्थिक मजबूती। दोस्तों, आज हम ये सोचते हैं और आपने अपने घर के कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि घर में जितने सदस्य होते हैं तो हमारा परिवार उतना ही स्ट्रांग होगा, लेकिन ये सरकार भी मानती है और कहीं ना कहीं आप भी अगर इसको गौर से सुनेंगे तो जितने सदस्य होते हैं उसमें हमारा लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। कैसे, मैं बताती हूँ, लेकिन पहले हम दूसरे फायदे की बात करते हैं। देखिए, दूसरा फायदा जैसे कि मैंने बताया, आर्थिक मजबूती। दोस्तों, सोचिए अगर एक परिवार में 5 से 6 बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई, खाना, कपड़ा, दवाई, इन सब पर कितना खर्च होगा, और अगर 2 बच्चे हैं तो उन दोनों की अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना और अच्छा भविष्य दिया जा सकता है, यानी कि कम बच्चे और बेहतर जिंदगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें, क्योंकि हमने हमेशा यही सुना है कि हमें क्वालिटी पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। जी हाँ, अगर आपके बच्चे कम होंगे तो उनका फ्यूचर भी उतना अच्छा होगा। उसके बाद अगर हम तीसरे फायदे की बात करें तो वो है महिलाओं का सशक्तिकरण। जब एक महिला ये तय कर सकती है कि उसे कब और कितने बच्चे चाहिए, तो वो पढ़ सकती है, काम भी कर सकती है और सपने भी पूरे कर सकती है। परिवार नियोजन महिला को आजादी देता है, जिंदगी जीने की आजादी। जी हाँ, देखिए, हम सब ये जानते हैं और ये एक बहुत ही कड़वा सच है हमारे समाज का कि महिलाएं बहुत समय से प्रताड़ित होती आ रही। कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाया जा रहा है, उनको शिक्षा उनकी थोड़ी कम दी जाती है। काफी जगह ये भी देखा जाता है कि अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो पुरुषों की अपेक्षा उन्हें वेतन भी कम दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज का भारत बदल चुका है, हम सब भाग रहे हैं मॉडर्निज्म के पीछे, और परिवार नियोजन एक बहुत ही अच्छा जरिया बन चुका है महिला सशक्तिकरण का। अब बात करते हैं, अगर हम परिवार नियोजन ना करें तो क्या होगा। दोस्तों, आप सोचे होंगे कि क्या ही होगा, जनसंख्या बढ़ेगी और तो शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं बताऊं भाई, ये तो सिर्फ एक चीज है, बाकी काफी सारी चीजें हैं जिसमें हमें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहली बात, माँ की खराब सेहत। जी हाँ, बार बार गर्भधारण से माँ का शरीर कमजोर पड़ जाता है, खून की कमी हो जाती है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और कई बार तो माँ की जान को भी खतरा बन जाता है। दूसरी बात ये दोस्तों कि बच्चों का विकास रुक जाता है। जब एक के बाद एक बच्चा पैदा होता है तो ना माँ के पास समय होता है, ना पैसे होते हैं और बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। भारत में आज भी लाखों बच्चे कुपोषित हैं और इसकी एक बड़ी वजह है परिवार नियोजन की कमी। तीसरी बात पे अगर हम गौर करें तो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। जब परिवार बड़ा होता है और आमदनी कम होती है तो बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर जाना पड़ता है। लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और ये एक ऐसा चक्र है जिसमें हम सभी फंस के रह जाते हैं। उसके बाद अगर हम चौथी बात करें तो घर में तनाव और झगड़े भी बढ़ जाते हैं। पैसे की तंगी, बच्चों की परेशानी, माँ की बीमारी, ये सब मिलकर परिवार में अशांति पैदा कर देती है। दोस्तों, एक सुखी परिवार के लिए जरूरी है सोच समझकर परिवार बनाना। और पांचवी और सबसे बड़ी बात ये है कि देश पर बोझ बढ़ता है। जब जनसंख्या बेकाबू हो जाती तो सरकार के लिए सबको स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार देने में मुश्किल हो जाता है। अस्पताल में जगह कम पड़ने लगती है, स्कूलों में शिक्षक की कमी होने लगती है और सड़कों पर भीड़ भी ज्यादा हो जाती है। ये कुछ ऐसे नुकसान है जो अभी मैंने आपको बताए, लेकिन कुछ ऐसे नुकसान है जो हम बता नहीं सकते, जो हम सिर्फ फेस करते हैं। बच्चे अगर ज्यादा हों, जनसंख्या बढ़ जाए तो हमें काफी सारी दिक्कतों का और भी है जो सामना करना पड़ता है। हमारी मानसिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ता है। ज्यादा जनसंख्या होती है, घर में तनाव रहता है, स्ट्रेस होता है और उनके बेटर फ्यूचर के लिए पेरेंट्स पे भी बहुत ज्यादा भार पड़ जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें नुकसानों की, तो सिर्फ मेंटल ही नहीं बल्कि आपका इकोनॉमिक फैक्टर और आपके घर में भी काफी सारी चीजें होती हैं जिसका आपको सामना करना पड़ता है। ज्यादा बच्चे यानी खर्च ज्यादा, आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा। और ये भी कह सकते हैं आपने, वो तो सुना होगा ना कि एक माँ के कई लाल होते थे पहले, कई सारे बच्चे होते थे, और आज क्या है। आप अगर अपनी एक दो पीढ़ी पीछे देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक माँ के पांच पांच छह छह बच्चे हैं, जिससे एक बहुत बड़ा परिवार बना। देखिए पहले के लोग ये मानते थे, और आज भी जो लोग उन रूढ़िवादी सोच को मानते हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर परिवार नहीं है तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी कमी है, परिवार ही असली धन है। बिल्कुल, देखिए परिवार ही असली धन है, लेकिन परिवार की स्थिति अच्छी हो वो उससे भी बड़ा धन है। अगर आपके परिवार में छह लोग हैं और छह के छह कुपोषित हैं, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है उनको, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बुरी दशा है। लेकिन अगर परिवार में लोग कम हैं और वो एक अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशन में हैं, वो हेल्दी हैं, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जिसमें उनका विकास हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट की बात है। फिलहाल ये था दूसरा लिंक जिसमें हमने बात की फायदे और नुकसान की। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि परिवार नियोजन में आखिर हम कर क्या सकते हैं। सिर्फ यही है कि हमें फैमिली को एक अच्छा शेप देना चाहिए, और क्या फायदे हैं क्या नुकसान, जी नहीं, काफी सारी चीजें हैं जिस पे हमें गौर करना चाहिए, क्या क्या है सब पे बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम के बारे में, वो है फूड पॉइजनिंग। अभी तक हमने जाना कि ये क्या होती है और साथ ही साथ इसके सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये आखिर होता क्यों है, क्या कारण है और क्या इसके पीछे का रहस्य है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, मुझे ये नहीं हो सकता या ये कैसे होगा। अरे दोस्तों रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फूड पॉइजनिंग घर में भी हो सकता है। जी हाँ, आपके घर में, आप ही की वही रसोई जहाँ पे आप बहुत खुश होके बहुत ही अच्छे मन से आप घर में खाना बनाते हैं और आपकी रसोई में एक कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जो आपको पता नहीं है, लेकिन जो फूड पॉइजनिंग को डायरेक्टली न्योता देती हैं, यानी कि इनविटेशन देती हैं। तो चलिए आज हम थोड़ा जासूसी करते हैं आपकी रसोई की। जी हाँ, आपकी रसोई की, तो दिल थाम के बैठ जाइए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अब पता चलने वाली हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़े कारण की हम बात करते हैं, वो है बैक्टीरिया से दूषित खाना। दोस्तों, ये विलेन नंबर एक है और इसके कई सारे कैरेक्टर भी हैं, जैसे सेल्मोनेला। आपको ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये एक बैक्टीरिया है, और या फिर ये कहें कि ये बैक्टीरिया का सुपरस्टार है जो फूड पॉइजनिंग में होता है। ये मिलता है कच्चे अंडे में, कच्चे मुर्गे में या फिर बिना पैश्चराइज किए हुए दूध में। अगर अंडे की भुर्जी आधी कच्ची रह गई हो तो ये वायरस आपको सामने से आपको हेलो बोलेगा और आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे इकोली की। इकोली शहर की बात नहीं हो रही भाई, ये इकोली है, जो कि एक बहुत बड़ा वायरस है। ये भी बहुत बदनाम किस्म का वायरस है दोस्तों। देखिए, ये कच्चे अधपके मांस में, बिना धुली सब्जी में और दूषित पानी में मिलता है। 2024 में अमेरिका के एक फेमस बर्गर चेन की वजह से सैकड़ों लोगों को इकोली से बीमारी हो गई थी। अब बात करते हैं हम ओरेस से। ओरेस एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है। ये तब खाने में आता है जब बनाने वाले के हाथ साफ नहीं होते हैं, और सबसे खतरनाक ये है कि ये बैक्टीरिया खाने में टॉक्सिन्स यानी जहर छोड़ता है। खाना गर्म करने पर बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन जहर नहीं। खाना गर्म करने से हमेशा बचाव नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम गर्म गर्म खाना खा रहे हैं, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, कोई वायरस नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में सही मात्रा में साफ सफाई नहीं रखी जाती है, बाहर से चीज़ों को लाकर धुला नहीं जाता है और जो चीज़ें अधपक्की हैं उन्हें सही से पका के नहीं खाया जाता, जैसे मांस, अंडा, ये सारी चीज़ें, तो आपको भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे कैंपिलोबैक्टर की। ये एक बहुत ही बड़ी बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया कच्चे मुर्गे में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। यूके में तो ये फूड पॉइजनिंग का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। उसके बाद अगर हम दूसरे बड़े कारण की बात करें तो वो है गलत तापमान पर खाना पकाना। जी हाँ दोस्तों, ये सुनिए और थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे ज़्यादा तेज होती है 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यानी कि अगर आपका तापमान या उस खाने का तापमान जिस पर आप पका रहे हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री के तापमान पे है, तो इसे एक्सपर्ट कहते हैं टेम्परेचर डेंजर जोन। मतलब जो खाना ना तो फ्रिज में ठंडा है ना गैस पर गर्म है, तो वो डेंजर जोन में कंसीडर होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि भाई गर्मियों में हमारे देश में तो गर्मी जो होती है ये 9 महीने से भी ज़्यादा टिकती है, और हमारे देश में अगर खाना हम अभी बना रहे हैं तो 2 घंटे बाद वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और अगर रात में बचा हुआ खाना है और सुबह हम उसे बिना गर्माए खा रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और शादियों में जो खाना बाहर घंटों तक रखा रहता है उसमें भी बैक्टीरिया की पार्टी चल रही होती है। जी हाँ, बैक्टीरिया आपको बिल्कुल बुला रहे होते हैं अपने करीब की, आओ आओ मैं अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। उसके बाद तीसरा कारण है क्रॉस कंटामिनेशन। ये टर्म थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल इसका सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपने कच्चा चिकन काटा, ठीक है, उसी चाकू को बिना धोए उसी से आपने सलाद काट लिया, उसी कटिंग बोर्ड पे आपने रोटी का आटा गूंद लिया, बस उसी कच्चे चिकन से जो बैक्टीरिया होता है वो सलाद में आ गया। सलाद पकता नहीं तो बैक्टीरिया भी आपके पेट में डायरेक्टली चला जाता है। एक गोल्डन रूल भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है कच्चे मांस और पकी हुई चीज़ों को हमेशा अलग अलग रखें, अलग चाकू, अलग बोर्ड और अलग बर्तन में उसे रखें। उसके बाद अगर हम चौथे कारण की बात करें तो वो है दूषित पानी। दोस्तों भारत में आज भी कई शहरों में गांव में क्वालिटी वाला पानी, क्वालिटी वाले पानी का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बॉटल्स में पानी पिएं, बल्कि आप पीने लायक पानी पिएं, ये पानी की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, वो नहीं उपलब्ध है कई शहरों में कई गांव में। आज भी नदी नालों में और नहरों में घर के वेस्ट आते हैं, फैक्ट्री के वेस्ट आते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो गंदा हो जाता है, और इसी गंदे पानी की वजह से हेपेटाइटिस ए और फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें पांचवें कारण की, तो देखिए बाहर का खाना और स्ट्रीट फूड एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अगर मैं आपको सीधा बात बताऊं तो मैं स्ट्रीट फूड की दुश्मन नहीं हूं। चाट, गोलगप्पे और चौमीन मिल जाएगी, बर्गर मिल जाएगा, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, ऐसा मुझे भी लगता है और मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी इन्हीं सब खानों के ज़रिए भी होती है। लेकिन देखिए सच्चाई यही है कि जहाँ हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता वहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा होता है। खुले में रखा हुआ खाना, कटा हुआ खाना, फल, उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, मक्खियाँ गंदगी से आती हैं और खाने पे बैक्टीरिया छोड़ जाती हैं, फिर वो फल आप खा लेते हैं। देखिए सिंपल इक्वेशन है, बड़े शादी समारोह में हज़ारों लोगों के लिए खाना बनाया जाता है जहाँ टेम्परेचर कंट्रोल मुश्किल होता है, इसीलिए शादी के अगले दिन हॉस्पिटल में भीड़ लग जाती है। छठे कारण की अगर हम बात करें तो वो है एक्सपायरी डेट को इग्नोर करना। जी हाँ, खाना खाने से पहले जो पैकेट वाले फूड्स होते हैं, जो पैक्ड होते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट चेक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों पैकेट बंद खाने पर जो डेट लिखी होती है वो डेकोरेशन के लिए नहीं होती है, और उसे हमें देखना होता है, उसे सही से परखना होता है, कहीं पुराना दही तो नहीं है, बासी दूध तो नहीं, एक्सपायर तो नहीं हो चुका है, कहीं ये बिस्किट ख़राब तो नहीं हो गया है, और न जाने से कितनी चीज़ें होती हैं जिसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ये सब फूड पॉइजनिंग का एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम सातवें कारण की बात करें तो वो है मिलावट। भारत में फूड अडल्ट्रेशन एक बड़ी समस्या है। दूध में पानी और यूरिया, मिठाई में सिंथेटिक कलर, सब्जियों में केमिकल स्प्रे, ये सब धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये केमिकल पॉइजनिंग होती है जो इमीडिएट भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म तक चल सकती है। अब बात करते हैं कि कौन लोग सबसे ज़्यादा खतरे में हैं, यानी कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा खतरे में है। देखिए अब इसमें मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करूँगी, इसमें मैं उम्र विशेष की बात करूँगी। जी हाँ, उम्र विशेष, जिसमें छोटे बच्चे आते हैं जो कि 5 साल से कम के बच्चे होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता है, उनके लिए फूड पॉइजनिंग बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे बुजुर्गों की, जिनकी उम्र के साथ इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, डायबिटीज किडनी की बीमारी वाले बुजुर्ग को तो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं की। देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए जो सॉफ्ट चीज या रॉ मिल्क होते हैं वो उन्हें बहुत कम कंज्यूम करना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर। गर्भवती महिलाओं के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, इससे गर्भपात तक हो सकता है, तो जो भी खाएं वो थोड़ा सतर्कता से खाएं। पहले से बीमार लोग जो होते हैं, जो कि कैंसर से पीड़ित होते हैं, HIV से पीड़ित होती हैं, कोई ऑटो इम्यून डिजीज होता है, उनके लिए ऑर्डिनरी फूड पॉइजनिंग भी जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों अभी हद तक हमने जाना कि इसके कारण क्या होते हैं और उनमें से कई हमारी अपनी आदतों में भी छुपे हुए हैं, लेकिन घबराइए नहीं, इसका जो ट्रीटमेंट है, जो उपचार है, जो इलाज है वो मुमकिन है और सही समय पर अगर हमने ध्यान दिया तो हमारा ना तो गर्भपात होगा और ना ही हमारी जान जाएगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे इसके इलाज के बारे में, घरेलू उपाय के बारे में और बचाव के बारे में।
1: What is this? अरे कितना क्रेडिट देगा उस लड़की को? अरे वो दूसरे शहर से, I'm telling, अगर पैसा नहीं आया ना, you will have to pay.
6: But Papa, she's a nice girl.
7: भैया देखो, दिल्ली वाली दीदी आ गई।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग की। अभी तक हमने जाना कि ये क्या होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं और इसके कॉज क्या होते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। भाई देखिए, मुसीबत तो बहुत बड़ी है लेकिन इसका इलाज मुमकिन है, जो कि हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, और कब तक हम अपने घर में ही उपचार कर सकते हैं ये भी हमें समझना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि किसी भी बीमारी को हमें कम में नहीं आंकना है। खैर, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है रे, हल्का सा पेट दर्द ही तो है, थोड़ा सा डायरिया हो गया, क्या हुआ, अभी 2-4 ORS का घोल पिलाओ, अभी ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि इंसान की हालत ख़राब होती जा रही है तो उसे बिल्कुल घरेलू उपचार पे आपको नहीं छोड़ना है, आपको उनका ध्यान रखना है और उनको डॉक्टर के पास सही समय में आपको लेके भी जाना है। उसके बाद हम बात करेंगे आज उपचार के बारे में। देखिए, उपचार के बारे में अगर मैं बता रही हूँ तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बैठिए और हो सके तो कोई डायरी उठा लीजिए और इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। देखिए, ये जो अभी मैं बताने वाली हूँ ये वो पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे क्या करें जब फूड पॉइजनिंग हो जाए और कैसे करें बचाव ताकि ये और ज़्यादा ना बढ़े। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, दवाई से बेहतर है परहेज। जी हाँ, और परहेज के लिए चाहिए सही जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला हिस्सा है फूड पॉइजनिंग होने पर क्या करें। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको घबराना नहीं है। 80% फूड पॉइजनिंग केस माइल्ड होते हैं और 1 से 2 दिन में खुद ही ठीक हो जाते हैं, तो पैनिक बटन को बिल्कुल ना प्रेस करें। उसके बाद आपको पहला काम करना है पानी। जी हाँ, पानी पानी पानी। गर्मी भी पड़ रही है, आपको पानी पीते रहना चाहिए, लेकिन अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है तो भी आपको पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों, उल्टी और डायरिया से शरीर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ जाते हैं और पानी की कमी हो जाती है, सॉल्ट जो है वो आपकी बॉडी से निकल जाता है, इससे भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रखा है। तो आपको ORS का घोल यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है, उसे पीना है। ये हर एक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, बहुत ही कम दाम में ये आपके लिए अवेलेबल है हमारे मार्केट। नहीं मिला, चलिए हम बताते हैं कि इसे घर पे कैसे बनाना है। आपको बस 1 लीटर उबला हुआ पानी लेना है, फिर उसे ठंडा कर लेना है, उसमें 6 चम्मच आपको चीनी डालनी है और 1/2 चम्मच आपको नमक डालना है। बस हो गया ये आपका होममेड ORS रेडी। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके आपको इसे पीते रहना है, हर 15 से 20 मिनट में आपको 1-1-2-2 घूंट इसको पीते रहना है। एक साथ अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपको उल्टी भी हो सकती है। उसके बाद नारियल पानी। देखिए, नारियल पानी भी इस सिचुएशन के लिए बहुत बड़ा आपका दोस्त साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें नेचुरल पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उसके बाद आपको दूसरा काम करना है खाने से सावधानी। जी हाँ, खाने से आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। सावधानी का मतलब ये नहीं है कि खाने को बिल्कुल टाटा बाई पे बोल देना है। जब बहुत ज़्यादा आपको उल्टी और डायरिया हो रहे हों तो पहले कुछ घंटे बना हुआ खाना आपको तुरंत बंद कर देना है, शरीर को रेस्ट देना है, थोड़ा सा बेहतर लगे तो आपको खाना खाना है। तो शुरुआत करते हैं आपके ब्रैड डाइट से। जी हाँ, BRAT डाइट से। ब्रैड का मतलब है बी यानी कि बनाना, आर यानी राइस, ए यानी कि एप्पल सॉस और टी यानी कि टोस्ट, जिसे हम प्लेन ब्रेड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपको दलिया, उबले हुए आलू, खिचड़ी, ये सब हल्के और आसानी से पचने वाले भोजन होते हैं और इनके सेवन से आपकी बॉडी को, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको दूर रहना है। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ भाई। सबसे पहले तला भुना नहीं खाना है, मसालेदार नहीं खाना है। हाँ, इस टाइम पे ऐसा लगेगा कि आपको उल्टी हो रही है, कुछ चटपटा खाना चाहिए और कुछ ऐसा जो आपका मन खुश कर दे, लेकिन भाई इस टाइम पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है और इन खानों को अवॉइड करना है। साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉफी, शराब और कोल्ड ड्रिंक को आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। ये सब पेट को और भी ज्यादा इरिटेट कर देते हैं। उसके बाद अगर हम तीसरे काम की बात करें तो वो है सबसे बड़ा और सबसे बेहतर, सबसे आसान और सबसे मजे का काम, वो है सिर्फ और सिर्फ आराम। शरीर बैक्टीरिया से लड़ रहा होता है इस टाइम और उसे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा आराम उतनी ही जल्दी रिकवरी। ऑफिस जाने की, स्कूल जाने की, घर के काम करने की, सबसे छुट्टी ले करके आपको सिर्फ आराम करना है। चौथा और बहुत ज़रूरी काम दोस्तों ये है कि खुद से दवाई आपको नहीं लेनी है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है। बुखार हुआ तो पैरासीटामोल ले लो, डायरिया हुआ तो डायरिया की कोई भी दवाई ले लो, पेट दर्द हुआ तो एंटासिड ले लो, लेकिन ये सब बिना डॉक्टर की सलाह से लेना डेंजरस हो सकता है। खासकर एंटीबायोटिक ये कभी भी खुद से नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करती है, वायरल पर नहीं। मतलब गलत एंटीबायोटिक लेने से आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। डायरिया की दवाइयाँ जो कि स्टूल बंद करती हैं वो भी खुद से नहीं लेनी चाहिए। अगर शरीर में टॉक्सिन बाहर निकल रहा है तो उसे बाहर निकलने देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में यही आएगा कि डॉक्टर के पास तुरंत कब जाएं। दोस्तों ये लिस्ट याद कर लीजिए कि अगर आपको बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के यानी कि 38.9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। आपको अगर डायरिया हो रहा है, आपको 24 घंटे से उल्टियाँ ही हो जा रही हैं, कुछ भी अंदर रुक नहीं रहा है और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, आपको जो है बहुत ज़्यादा धुंधलापन हो चुका है आपकी आंखों में, आपको चक्कर ज़्यादा आ रहे हैं और ये लक्षण जो हैं वो 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। मुद्दा ये बनता है कि इस सिचुएशन में डॉक्टर आखिर करते क्या है। मैं बताती हूँ कि आखिर डॉक्टर करेगा क्या। देखिए, डॉक्टर सबसे पहले एग्जामिनेशन करता है। कभी कभी स्टूल टेस्ट और ब्लड टेस्ट भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। फिर ज़रूरत के हिसाब से आईवी ड्रिप यानी कि नसों में सीधा पानी और सॉल्ट चढ़ाते हैं, एंटी नॉसेट इंजेक्शन लगाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कन्फर्म हो जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पे, फूड पॉइजनिंग से बचाव के गोल्डन रूल। दोस्तों WHO ने फूड सेफ्टी के लिए 5 कीज दिए हैं। चलिए एक एक को समझते हैं कि आखिर ये क्या है। गोल्डन रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो है हाथ धोना। ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है ना, लेकिन इस एक आदत से लाखों बीमारियां रोकी जा सकती हैं। आपको कब कब हाथ धोना है ये भी मैं आपको बताती हूँ भाई। आपको खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद में हाथ धोना है, खाना खाने से पहले हाथ धोना है, टॉयलेट से आने के बाद आपको हाथ धोना है, कच्चा मांस छूने के बाद आपको हाथ धोना है और किसी बीमार इंसान को टच करने के बाद आपको अपना हाथ ज़रूर धोना चाहिए। और अब बात करते हैं कि हाथ आखिर धोया कैसे जाए। बस पानी से, साबुन से, कम से कम 20 सेकंड तक। वो आपने ऐड तो देखा होगा ना, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या जस्ट, बिल्कुल उसी की हम बात करें तो 20 सेकंड तक आपको ज़रूर अपना हाथ धोना है। उंगलियों के बीच में, नखूनों के बीच में, सब जगह आपको अच्छे से रगड़ रगड़ के अपने हाथ को साफ करना है। रगड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बर्तन धुलने वाले स्क्रबर से आप अपना हाथ रगड़ डालें, आप सॉफ्टली लेकिन साबुन से अच्छे से अपने हाथों का हर एक कोना, जिसमें आपकी उंगलियों के बीच और नाखून जो होता है, जो आप नाखून की गंदगी होती है, उसे हटाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें गोल्डन रूल नंबर 2 की तो वो है खाना अच्छे से पकाना। कच्चा खाना, अधपका मांस सबसे बड़ा खतरा होता है। मुर्गे का मांस पूरी तरीके से वाइट होना चाहिए, अंदर से गुलाबी बिल्कुल भी नहीं। मछली फ्लेकी होनी चाहिए। अंडे का योग सेट होना चाहिए। एक थर्मोमीटर आप अपने पास रखिए। जी हाँ, देखिए किचन का थर्मामीटर अलग आता है और बुखार नापने का थर्मामीटर अलग आता है, तो आपके घर में ये चीज़ आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए कि ये दोनों ही ज़रूर हों। मास्क की अंदरूनी टेम्परेचर जो होता है वो कम से कम 75 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गोल्डन रूल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो है खाना सही तरीके से स्टोर करना। पका हुआ खाना 2 घंटे के अंदर ही फ्रिज में रख देना चाहिए। फ्रिज का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए। फ्रीजर में रखना है तो -18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बचे हुए खाने को गर्म करते समय पूरी तरह अंदर तक गर्म होने देना चाहिए, बस ऊपर से ही गर्म नहीं बल्कि पूरी तरीके से उसे गर्म करना है। उसके बाद अगर हम चौथे गोल्डन रूल की बात करें तो वो है सेफ पानी और रॉ मटेरियल। घर में फिल्टर या आरओ का पानी इस्तेमाल करें, नहीं है तो पानी को उबाल लें, 1 मिनट तक जरूर उसे उबालें, इससे पानी सेफ हो जाता है और पीने लायक हो जाता है। फल और सब्जियां खाने से पहले साफ कर लें, अच्छे से धुल लें। बेहतर होगा कि अगर आप नमक के पानी में इसको 10 मिनट तक भिगो के रखें। उसके बाद गोल्डन रूल नंबर 5 जो कि आखिरी रूल है वो है क्रॉस कंटेमिनेशन से बचें। कच्चे मांस और पकी हुई चीज़ों को अलग अलग चाकू से अलग अलग कटिंग बोर्ड पर काटें, ठीक है। और फ्रिज में कच्चा मांस हमेशा सबसे नीचे रखें ताकि उसका रस ऊपर की चीज़ों पर ना गिरे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टिप भी मैं आपको देना चाहूँगी, वो ये है कि बाहर खाते समय कुछ बातों का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। खाना ताज़ा बना हो और वो आपको मतलब आपको खुद ये चीज़ श्योरिटी हो कि वो खाना ताज़ा बना है। जहाँ बनता है वहाँ पे लोग के हाथ गंदे तो नहीं है, सिंक ना हो उसके आसपास, खाना घंटों तक खुले में ना रखा हो, वहाँ से आपको जो है वहीं से आपको खाना खाना चाहिए। बीमार हो तो खाना ना बनाएं। जी हाँ, देखिए बीमारी में खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ बीमारियों में आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जब आप छींकते हैं खांसते हैं तो वो खाने में गिर जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और अगर आपको फूड पॉइजनिंग है या कोई स्टमक इलनेस है तो किसी और के लिए खाना ना पकाएं, आप दूसरों को भी बीमार कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट में खरीदारी की। देखिए, रॉ मीट को प्लास्टिक बैग में अलग रखें, टूटे या बल्गिंग कैंस में मत खरीदें, वेजिटेबल्स ताज़े होने चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगी। देखिए, अपने हाथों को धोना है, खाना ताज़ा खाना है और पानी साफ पीना है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप लगभग 70% केसेस फूड पॉइजनिंग के रोक सकते हैं। और याद रखिए, स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। एक बार बीमार हो जाए और तकलीफ हो जाए तो भाई दवाइयों पर ज़्यादा खर्च होता है, इसीलिए दिन बर्बाद ना करें, पैसे खराब ना करें, अपने जो रोग है उसको पहले ही उसका रोकथाम कर लें जिससे कि आपको वो रोग ना हो। आज की ये जानकारी अपने परिवार को ज़रूर बताइएगा, अपने बच्चों को सिखाइएगा और पड़ोसियों से भी इस चीज़ों को शेयर करिएगा, क्योंकि अगर हम साथ मिलेंगे एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हम एक दूसरे की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, खासकर अपनों का। तो भाई ये थी आज का विषय, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ समझा होगा, सीखा होगा और इसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी जरूर करेंगे।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सेहत या संग। सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए आपके लिए एक बेहद ही खूबसूरत स्वास्थ्य कार्यक्रम। मैं हूं आपकी अपनी आरजी उन्नति और ये है आपका रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। अरे भाई वाह, आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउडस्पीकर से आ रही आवाज, सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर। अरे ये HPV क्या होता है भाई और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे टीकन भाभी जी इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देती हैं ना, जरा बताइए ये चल क्या रहा है?
2: अरे आरजे जी, आज बड़ा खास दिन है गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहती हूँ। गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी की एक 12 साल की बेटी थी, नाम था गुड़िया। पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे भी बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो हिचकिचाई, उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया जाएगा तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए, उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा भी लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद से रामलाल का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें? अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचते हैं। वहां कई और लड़कियां भी आई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं, तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन दो दिन में सब कुछ ठीक हो गया। धीरे धीरे

0: लाले।
1: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुलकर विस्तार में बताइए।
0: देखिए, HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका ना जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
1: मतलब ये सीधी सीधी जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
0: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं आरजे जी?
1: क्या टीकन भाभी, अब तो आप थोड़ा सा डरा रही हैं।
0: अरे, डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रही हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण ही नहीं होता। ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
1: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
1: अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका है भी या नहीं?
0: यही तो अच्छी खबर है। जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है तो वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत ही आसान है।
1: सच में? कैसे?
0: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
1: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी अच्छे से समझ सकें।
0: ठीक है ठीक है, एक और उदाहरण से समझाती हूँ। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
1: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
0: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
1: ओह, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
0: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी खास बात है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, ये तो पहले ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
1: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए? कोई खास उम्र है क्या?
0: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र का हो तो?
0: तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर।
1: टीकन भाभी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका है, तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
0: यही तो सबसे अहम बात है आरजे, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
1: जरा विस्तार से बताइए।
0: देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई वहीं हार जाएंगे, इसलिए पुरुषों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है।
1: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला बिल्कुल नहीं है।
0: बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ रहता है तभी गांव मजबूत बनता है।
1: लेकिन टीकन भाभी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ये टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में भी दिक्कत होती है।
0: यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें हैं।
1: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ कर देती हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी हो जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार आता है या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
1: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है, उनका क्या?
0: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का माँ बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ भी नहीं।
1: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत?
0: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले ही

0: छाता रखते हैं, वैसे ही पहले ही सुरक्षा देता है ये टीका। जरा सोचिए आरजे जी, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करना? टीकन भाभी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
0: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी हैं, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंच सके। जहां जानकारी नहीं पहुंचती, वहां रानी जैसा केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गांव था, छोटा पुरवा। यहां रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हंसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा कि बहन, अपनी बेटी को टीका जरूर लगवाना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में ऐसा कौन सा टीका लगता था और हम तो बिल्कुल ठीक है। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा, मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास जवाब ही नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि बेटा, तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। ये सर्वाइकल कैंसर का मामला था और अब ये काफी आगे बढ़ चुका था। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उसी दिन हमने टीका लगवा लिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ, लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द। रानी की बीमारी ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, पूरे परिवार को झकझोर दिया। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो, समय रहते।
1: टीकन भाभी, तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
0: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटी का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने सुनी है उसे दूसरों तक पहुंचाइए, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाइए।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: छोटी सी तैयारी, बड़ी बीमारी से बचाव, बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ। तो चलिए, जाने से पहले लेते हैं सेहत की शपथ और इसी के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत। फिर मुलाकात होगी अगले एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है,
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
2: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का
3: साफ सफाई और स्वच्छता का
2: पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
3: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
2: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
6: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
7: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
6: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
7: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
6: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
8: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
9: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
10: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
10: आज ही कॉल करें 92 60 981 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
9: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
10: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अंशिका आजकल चल रही है छुट्टी पे, तो हमारे स्टूडियो में वन डे कोई ना कोई हमारे यहाँ गेस्ट आ ही रहे हैं आजकल। तो आज भी हमारे साथ गेस्ट है, लेकिन हम उनका इंट्रोडक्शन बाद में कराएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में। मैं हूँ आपकी आज समता, और आती है हमारे साथ में अंशिका, और हर दिन कुछ न कुछ नया लेकर के। तो इस प्यारे से दोपहर में आप सभी को हमारी तरफ से शुभ दोपहरिया। आइए प्रोग्राम की ओर चलते हैं, और प्रोग्राम का जो पहला सेक्शन होता है, आप सभी को पता है कि आज हमारा है मंगलवार, यानी कि मंगलवार के दिन हम लेकर के आते हैं कुछ बच्चों के लिए कुछ खास हम खास, बच्चों की डिजीज को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर के, छोटे से बड़े बच्चे यानी टीनेजर बच्चे तक हम लेकर के आते हैं उनकी केयर को लेकर के। तो आज हम बात करेंगे सबसे छोटे बच्चों के लिए, उनका पोषण, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां। और आप सभी को बता दूं कि आज की जानकारी कोई ऐसे वैसे नहीं देने वाला है, बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि जिस उस क्षेत्र में माहिर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि घर के एक बड़े बुजुर्गों को हर चीज की जानकारी सबसे ज्यादा होती है, और वही बुजुर्ग हमें आगे बढ़ने और चलने की प्रेरणा भी देते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ, कल आप सभी ने उनकी बहुत सारी रेसिपीज को भी सुना होगा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने गेस कर ही लिया है। हाँ जी बिल्कुल, रंजना मैम आई हैं आज हमारे साथ में, हमारी मास्टर शेफ। लेकिन आज हमारे साथ में रंजना मैम आई हैं, मास्टर शेफ की उपाधि हम लोग उनको खाना खजाना के दिन देते हैं। तो आज बहुत सारी चीजों पे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमारे प्रोग्राम की औपचारिकता होती है, आज के दिन की प्यारी सी पोयम, तो वो कविता है आज बचपन की दुनिया, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो छोटी सी दुनिया, वो अपनी कहानी। न खिलौनों की कीमत, न चीजों का मोल, मिट्टी में भी मिल जाती थी खुशियों की डोर। न हार का डर था, न जीत की चाहत, न हार का डर था, न जीत की चाहत, हर दिन में बसती थी खुशियों की आहट। बचपन तो वो मौसम है जो एक बार आता है, फिर उम्र भर इंसान उसे याद कर मुस्कुराता है। बचपन तो वो मौसम है जो एक बार आता है, फिर उम्र भर इंसान उसे याद करके मुस्कुराता है। बचपन, हमारे घर में भी बच्चे हैं, तो अगर मेरी मम्मी या उसकी मम्मी कभी बच्चों को डांट देती हैं, तो हम लोग हमेशा से, मेरी सोच ये होती है कि ये बचपन क्या हम लोगों की जिंदगी में दोबारा लौट कर आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए बचपन है तो बचपन को बचपन की तरीके से जीने देना चाहिए। आइए इस प्यारे से एक गीत को सुनते हैं, और आज के रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी मैं यही बताना चाहूंगी आपको कि घर में बच्चे हैं तो उन्हें बच्चों की तरीके से ट्रीट करें, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि कम उम्र में ही बच्चे बड़े हो जा रहे हैं। कारण कुछ और भी रहा होगा, कोई भी रह सकता है, मोबाइल है, घर का वातावरण है, आज की पढ़ाई है। हम लोग के टाइम पर भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बचपन हम लोगों ने बचपन की तरीके से ही जिया है, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ खेल, पढ़ाई और अपने आप को एक मासूमियत के दायरे में रख करके जीना। तो बहुत सारी बातें आज हम बताएंगे करेंगे, लेकिन उसके पहले एक प्यारे से गाने को सुन लेते हैं, उसके बाद हमारी मास्टर शेफ, हमारी रंजना मैम जो है स्टूडियो में आ गई हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे, लेकिन एक ब्यूटीफुल से सॉन्ग के बाद। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में हमारे हैं आज गेस्ट। तो चलिए हम सीधे सीधे इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तो हमारे साथ में हैं हमारी रंजना मैम। मैम आपको बहुत प्यार भरा वाला नमस्कार।
6: तो आप सब सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार
5: जी। तो मैम आज आप हमारे स्टूडियो में जब जब आई हैं तो बहुत ही अच्छा सा कुछ खाने पीने के लिए ही बताती हैं, बट आज हम चाहते हैं कि आप, जैसे हमारा सेक्शन होता है बच्चों का, तो मैं चाहती हूँ कि आज आप कुछ बच्चों के लिए ऐसा बताएं ताकि सभी को कुछ ना कुछ उसमें से सीखने को मिले।
6: देखो भाई समता, आजकल तो बच्चे वैसे भी बड़े महंगे हो गए।
5: हाँ, ये तो बात सही कह रही है बिल्कुल,
6: क्योंकि जैसे ही बच्चा पेट में आता है कितना सारे टीकाकरण और ये तो कहो कि अब आशा बहुएं सब हैं, तो बहुओं की गांव में स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई है।
5: हाँ।
6: है ना, तो सरकार चूंकि उन्हें खाने को भी देती है। हाँ। फिर वहाँ डॉक्टर बैठती है, वो सब इंतजाम देखती है, वेट देखती है, बच्चे को किस चीज की जरूरत है, माँ को किसकी जरूरत है, वो सब चीजों को देखती है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, तो जन्म लेने के बाद बच्चे की शैशव अवस्था प्रारंभ हो जाती है
5: बिल्कुल
6: उसी समय से। हालांकि जब बच्चा पेट में रहता है उससे लेके और वृद्धावस्था तक, बच्चे की जैसे केयर करी जाती है वैसे प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था, हर जगह पोषण की तो आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है।
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
6: नहीं तो बच्चे जो हैं बीमार पड़ जाएंगे। और नवजात शिशु जो होता है, जब पैदा होता है तो 15 दिन तक उसको नवजात शिशु कहा जाता है। है ना
5: जी,
6: तो उसके बाद क्योंकि वो क्या करता है, माता के पेट से जब वो बाहर आता है तो बाहरी चीजों से वो एडजस्टमेंट करता है। तो कभी देखो जोर से तुम दरवाजा बंद करो, बच्चा चौंक जाता है। उससे हमें पता चलता है इसको सुनाई दे रहा है।
5: हाँ।
6: हमने लाइट जलाई, बच्चे ने आधी आंखें खोल के देखी तो हमें लगता है कि बच्चे के मतलब सेंस काम कर रहे हैं।
5: बिल्कुल
6: ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात होती है कि जब बच्चा माता का स्तनपान करता है, बहुत ही कोई अभागे ही रहते हैं, बहुत थोड़े बच्चे रहते हैं जो माता का दूध नहीं ले पाते। बाकी तो माता का दूध जो है वो हर बच्चे के लिए अमृत कहा गया है, क्योंकि जब बच्चा माता का स्तन अपने मुंह में डालता है तब वो चूसता है।
5: हाँ।
6: उसके चूसने से क्या होता है, उसकी मांसपेशियां कड़ी होती हैं, जबड़े वर्क करते हैं और माँ खुद सुखद अनुभव करती है और बच्चा भी अपनी माँ के सीने से लग करके अपने को बड़ा सुरक्षित और अच्छा महसूस करता है।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
6: तो ये तो बहुत जरूरी है कि माता अपना जो है दूध बच्चे को जरूर पिलाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती हैं जो भले गाय के दूध में या डब्बे के दूध में, वो बच्चे थोड़े माता के दूध वालों से कमजोर रहते हैं।
5: हाँ।
6: इसलिए रहते हैं क्योंकि कोई ना कोई कमियां तो बनी ही रहती है।
5: बिल्कुल।
6: अच्छा, बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता 15 दिन बाद, और 3 महीने तक आते आते बच्चे की मांसपेशियां विकसित हो जाती है, मजबूत होने लगती है। तुम देखो बच्चा अगर करवट ले लेता है हाथ के बल या पेट के बल, तो देखो कोशिश करता है, तुम पुकारोगी तो सर उठाने की कोशिश करता है, ये जैसे भी, तो हम लोग कहते हैं अरे वाह हमको तो पहचान रहा है ये बड़ा तेज है। तो ये कहावत कही जाती है कि एक माह में बच्चा माँ को पहचान जाता है और 3 महीने में अपने फादर को और 6 महीने में परिवार को पहचानने लगता है। तो क्यों पहचान, भाई माँ तो हमेशा जब से जन्म दी अपने सीने से चिपकाए,
5: बिल्कुल बिल्कुल।
6: फिर फादर जब आते जाते हैं उनको छूते हैं वो करते हैं तो बच्चा स्पर्श बहुत अच्छे से
5: स्पर्श को महसूस
6: करता है। तो स्पर्श उसमें ले, उसके बाद जो परिवार के सदस्य हैं वो बारी बारी से उसको छूते हैं, उसको गोद लेते हैं, उसका नाम लेते हैं। तो बच्चा वो भले जो है बोल तो पाता नहीं है 6 महीने, पर अपने हाव भाव से वो दिखाता है कि वो उसको जान रहा है। जैसे बच्चा कुछ नहीं जानता, स्माइल करना उसका एक काम ही है, वो ये नहीं है कि तुम्हें देख के ही हंस रहा है, पर हम लोग को लगता है अरे वाह बच्चा तो बड़ा अच्छा हमें देख के हंसा, है ना। ये सब नेचुरल चीजें रहती हैं, इसमें कोई उसको कुछ करना नहीं रहता है। तो जन्म के समय जो है बच्चे का वजन 6 से 7 पाउंड रहता है, तो हम उसको एक स्वस्थ कहते हैं, 7 पाउंड को कि स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया। तो इसके लिए हमारे लिए माँ का खान पान भी बहुत जरूरी रहता है,
5: बिल्कुल,
6: क्योंकि माता जो कुछ खाती है वो बच्चा ग्रहण कर लेता
5: है,
6: माता के नाल से उसको जुड़ा रहता है।
5: हाँ,
6: तो
5: उसी के माध्यम से
6: पूरा पोषण वो ले लेता है। और जन्म के समय से ही बच्चा जो है धीरे धीरे सर जैसे ही हुआ हिलाने लगता है, इधर उधर कोशिश करता है देखने, पर जो जन्म लिए बच्चा 15 दिन वाला होता है उसको बहुत हिफाजत से रखना पड़ता है, क्योंकि ये तो जानती हो माँ के पेट में रहता है बच्चा, तो पेट में तो अंधेरा है
5: अंधेरा
6: और पानी
5: है।
6: में तैरता रहता है बच्चा, उसी में सुरक्षित। तुमने देखा है बच्चे को जब हम रोता है और हिला हिला के सुलाते हैं या पालने में डालते हैं तो बच्चा तुरंत चुप क्यों हो जाता है?
5: क्योंकि उसको लगता है कि अभी भी हम पेट में ही
6: माँ के पेट में है, हम हिल रहे हैं, है ना। तभी बच्चे के लिए पालना भी बनाया गया है, और हम लोग जब भी गोदी लेते हैं रोते बच्चे को हिला करके ही टहल करके हिलाते रहते हैं, तो बच्चा वो उसमें एडजस्ट हो जाता
5: सुरक्षित है, रहता है,
6: ठीक है, उसमें सुरक्षित भी रहता है। और 3 साल का होते होते बच्चे का मस्तिष्क बिल्कुल पूर्ण हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत तेजी से विकास होता है। कुछ हड्डियां हमारी बहुत पहले की रहती हैं जो बहुत मुलायम रहती हैं, क्योंकि वो माता का के शरीर से जब जन्म लेता है तो बच्चे की मुलायम हड्डियां ही काम, और धीरे बाद में कुछ और निकल आती हैं और ये कड़ी हो जाती है।
5: मैम जैसे बच्चे को, हम लोगों ने भी घर में बच्चे हैं तो देखा है कि घर जो उनका सर होता है जो तारू बोलते हैं उसको बीचों बीच में, वो बड़ा मुलायम रहता है,
6: वो तब तब करता रहता है
5: बिल्कुल। हाँ। उसको छुओ तो घर में जैसे हमारे यहाँ भी जब बच्चे आए ट्विंकल आई और वो, तो मम्मी हम लोग गोदी में उसको सुलाते थे तो मम्मी कहती थी कि यहाँ पर मत छुओ तुम लोग सर में, बहुत मतलब सेफ्टी से उनको रखना पड़ता है,
6: क्योंकि कहते हैं वो बहुत हल्का होता है और कहीं मतलब चोट लगी तो उसके वो छेद हो गया कुछ हो गया तो बच्चे की इससे जान जा सकती है। और दूसरा बच्चा मस्तिष्क से पागल हो सकता है
5: कमजोर
6: कुछ भी हो सकता
5: है,
6: आंखों की जिसपे जहाँ असर पड़ेगा, आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, नहीं रह सकती है, पेट उसका खराब हो जाएगा, जो भी, तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं। वैसे जिनके घर में बच्चे होते हैं वो बहुत सहूलियत से सहारा दे के लेते हैं, बच्चे को कपड़े में लपेटे रहते हैं, और हमेशा बच्चे को साफ सुथरे कपड़ों में ही रखना चाहिए, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है बच्चा तो बता नहीं पाता, जुकाम हुआ वो नाक रगड़ने लगता है, इतना हाथ हाथ भी नहीं चलाता है और सीने से लग के नाक रगड़ रहा आँख रगड़ रहा, तो ये जान लो कि उसको इन्फेक्शन हो रहा है। तो उसको हमेशा बचाना नहीं चाहिए। और जन्म के समय बच्चे का जो सिर होता है वो 33 सेंटीमीटर का होता है,
5: ओके,
6: हाँ, और 6 महीने पे उसका 40 सेंटीमीटर,
5: हाँ, बताइए
6: सेंटीमीटर में होता है। तो ये जो होता है ये बच्चे को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे के जो होता है शिशु का शुरू के जन्म में जब उसका तीव्र गति से विकास होता है, कुछ बच्चे देखो बड़ी जल्दी उसी समय उन्हें ताली बजाना सिखाते हैं, रुमाल दिया कि लो नक्कू पोछ लो, है ना, या कोई टाटा कर लो, जय जय कर लो, तो ये सब छोटे बच्चे जल्दी महीने के करने
5: वो लोग करने लगते हैं
6: है ना। और कभी के 6 महीने का बच्चा घुटने चलने भी लगता है, साल भर का होते होते बच्चा चारपाई पकड़ के खड़ा हो जाता है, एक दो पैर कर
5: हल्का फुल्का वर्ड्स बोलने लगते हैं
6: बिल्कुल। और वो वर्ड्स तो इतने समझ में नहीं आते शुरू में, उसको हम लोग बलबलाना कहते हैं,
5: बलबलाना कहते
6: हैं कि कोई भी शब्द
5: शब्दहीन
6: होते हैं बाजार करके निकाल दिया और हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि
5: बच्चा बोल रहा है। सबसे पहले पापा बोलना शुरू किया, मम्मी बोलना शुरू,
6: फिर वो वही शब्दों को जो उसको आसान लगता है उसको वो पकड़ लेता है, है ना, पापा पापा बाबा है ना, ऐसे वो मुंह उसको जो अच्छे लगते हैं और जो शब्द उसको अच्छे लगते हैं उसको पकड़ लेता है और वो उसी को बार बार दोहराता रहता है
5: बिल्कुल।
6: हालांकि 14-15 महीने के होने पे बालक कुछ शब्द बुआ है ना,
5: पापा सबसे पहले, मम्मा ऐसे ये वाले वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं।
6: और गांव में तो प्रचलित है कि बच्चा पहला शब्द बुआ ही बोलते
5: हैं। हाँ ये तो बात है, यहाँ भी मेरी ट्विंकल ने सबसे पहला बुआ ही बोला था,
6: बुआ ही बोलते है ना, भले जो भी हो लेकिन वो शब्द है बच्चों के जो भी जहाँ से भी निकल रहे हैं मुँह से जैसे भी बोल रहे हैं बलबलाते हुए उतना ही रहता है
5: जी।
6: तो एक पोषण वैज्ञानिक है लेवर्टन
5: जी
6: है ना
5: जी,
6: उन्होंने कहा है कि बालक अपने संपूर्ण जीवन में शैशव काल को छोड़कर फिर उसका भार है पौष्टिक आहार है उतना ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है जितना कि उसको शैशव अवस्था में जरूरत रहती है। और इस समय अगर हम ज्यादा ध्यान दे देते हैं बच्चों को तो सोचो कि वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ नागरिक बनता है बड़े होकर के
5: जी,
6: है ना। और जो है इस समय बच्चे का वजन 4 किलोग्राम होता है
5: ओके
6: ठीक है तो इतनी तेजी में उसका वजन बढ़ता है और उसी हिसाब से लेता है। अब बच्चे को भी हमारे प्रोटीन है जो हमारे पौष्टिक तत्व है, प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है वसा है जो हमारे 6 पौष्टिक तत्व उनको उसको भी तो आवश्यकता रहती
5: बिल्कुल,
6: है
5: बिल्कुल बिल्कुल। और मैम आजकल में आपने जैसे अभी स्टार्टिंग में कहा कि बच्चे बहुत महंगे हो गए, एग्जैक्टली आजकल की जो लड़कियां हैं वो कम से कम ही क्या कहते हैं बेबी करना चाहती हैं, एक हो गया बस चलो बहुत हो गया
6: बहुत हो गया।
5: और उसके बाद में खुद के मतलब केयर की भी बहुत ध्यान मतलब होता है। अच्छा पहले ये नहीं था, जो हुआ चलो सब खा लो, लेकिन आजकल वो अपना फिगर भी मेंटेन करना है साथ में कम खाना है तो बच्चे भी उसी हिसाब से ही जन्म ले रहे हैं। फिर ज्यादातर आपने देखा होगा कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कर देते हैं ऑपरेशन हर किसी को ऑपरेशन कह देते हैं तो इससे भी बच्चे पे मम्मी मेरी बताती है कि इससे भी बच्चे पे फर्क पड़ता है।
6: नहीं नहीं अगर ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है तो डॉक्टर्स के हिसाब से वो अच्छा रहता है और उसका मस्तिष्क ठीक रहता है क्योंकि जब बच्चा दर्द से पैदा अक्सर बहुत बहुत दर्द होता है बच्चों गांव में
5: जी,
6: बच्चा थक जाता है ना। तो ये तो भ्रांति है तरह तरह की कहने की बात है पर ये जान लो तुम कि जो बच्चा पैदा हो रहा है तो अगर वो अच्छा नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन प्रथम बच्चा 8 से 10 घंटा ले लेता लेकिन अब इतना तो होता
5: इतना नहीं होता।
6: अच्छा पहले बच्चों में जो था ज्वाइंट फैमिलियां रहती थी संयुक्त परिवार में तो संयुक्त परिवार में जो आया उसने बच्चे को उठाया 6 महीने का होते होते बच्चा बाहर पूरा गांव घूमा
5: और क्या। और मैम फिर ना वो जल्दी से कब बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता
6: था। और जो हमने खाया वही उनके मुंह में रख दिया तो बच्चा सब कुछ। अब आजकल देखो माँ बाप अकेले रहते हैं या तो बच्चा आया के पास रहता है या माँ के पास भी रहा तो वो आगे पीछे दूध का गिलास लिए घूम रही है बच्चा खाने क्यों, क्योंकि बच्चा जो है उसको कुछ ना कुछ मनोरंजन का साधन चाहिए
5: बिल्कुल।
6: चाहे तुम खेलते हुए खिलाओ चाहे उसको, अब आजकल बच्चे देखो टीवी देखते हुए मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं जो कि बहुत ही खराब है क्योंकि जब बच्चा अच्छे से शौक से खाएगा तुमसे बातें करते हुए माता से बातें हुए करते खाए तो वो उसके शरीर में
5: लगेगा
6: लगता है है ना, क्योंकि वो जो भी खाएगा उसको खुश होके खा रहा है तो वो उसको लगता है। और यही हाल बीमारी में भी है, यदि बच्चा बीमार है मतलब बीमार क्या दांत निकलने में सबसे ज्यादा बच्चे बीमार पड़ते हैं
5: जी।
6: तो उसका मुख्य कारण क्या है कि एक तो बच्चा घुटने चलने लगता है जमीन पे, तो जो भी चीज पड़ी रहती उठा के मुंह में डाल लेता। ये बच्चों के नेचुरल चीज है उठा के मुंह में डालना, है ना। तो इसमें तो देखना पड़ता है कि बच्चा मुंह में उंगली डाल रहा है तो गंदी चीज तो नहीं डाल रहा है
5: जी।
6: जो भी हो,
5: कई बार ऐसा हुआ है मैम, हम अपने बचपन की मुझे बात याद आ गई, मम्मी बताती हैं कि मेरे भैया जो छोटा वाला है तो वो ऐसे पाँव पाँव जैसे चलते हैं ना, तो जो मकौड़े नहीं होते काले वाले,
6: काले वाले,
5: वो उसको उठा के मुंह में डाल दिया था। अब उसने उसको जीभ में उसको काटा, अब मतलब उसने वो जब उसने रोना शुरू किया तब पता चला कि उसकी जिबान से खून निकलने लगा कि चीटा ने काटा है, तब पता चला कि उसने अपने हाथ से उठा करके मुंह में डाल लिया था।
6: अच्छा, तो बच्चे जो है चीटा चीटी को पकड़ते भी
5: बहुत है।
6: एक तो उनकी पकड़ बड़ी अच्छी रहती है उंगली और अंगूठे की, बचपन में उनकी पकड़ बड़ी, और वो महीन महीन चीज
5: पकड़ भी लेते हैं, बिल्कुल सही कह रही है। तो अभी हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बहुत ही मजेदार टॉपिक चल रहा है, तो इसके बाद में हम जानेंगे कि आजकल के बच्चों का जो पोषण है वो किस तरीके से और अच्छा होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी लेंगे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग

0: पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और आज हमारे साथ है रंजना मैम। आप सभी को पता है कि हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी फिर से बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि है बाल्यावस्था यानी शिशु अवस्था। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कि उस अवस्था में और पोषण क्या होना चाहिए एक माँ के लिए और एक बच्चों के लिए। तो मैम इस टॉपिक को फिर से हम करते हैं।
4: हाँ, तो देखो समता, शैशव अवस्था अलग है, बचपन अलग है
3: जी,
4: है ना। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तब बाल्यावस्था शुरू हो जाती है। तो 15 दिन तक जन्म का जो है नवजात शिशु अवस्था है, फिर शैशव अवस्था है। अब देखो, तुमने देखा होगा कि बच्चे को हम क्या खाना दें, है ना
3: जी।
4: तो सबसे पहले तुम जान लो कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तब हम लोग के यहाँ अन्न प्राशन की प्रक्रिया की जाती है। और कभी कभी बहुत धूम से की जाती है, कभी घर में कर दी जाती है। दादी या बाबा चांदी की कटोरी चांदी चम्मच से खिला देते हैं, खीर बच्चा खा लेता है
3: जी।
4: तो हमको मालूम है कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब उसको माता के दूध के अतिरिक्त भी कुछ पोषण चाहिए होता है, जिसको कि हम लोग सप्लीमेंट्री आहार कहते हैं या पूरक आहार कहते हैं। अब हम बच्चे को क्या करेंगे, दाल का पानी, जैसे हमने अरहर की दाल सिर्फ नमक डाल के बनाई, बस 2 चम्मच चाय का पानी देंगे। अब हम लोग ये नहीं कि आधी कटोरी पिला दे ना बच्चे को, कुछ चीजें बच्चे बड़े टेस्ट से खाने लगते हैं वो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे खीर बनाई 1 चम्मच बस खिला दो
3: जी।
4: क्योंकि बच्चे का पाचन भी तो हमें देखना है,
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: कि बच्चा बीमार ना हो जाए, उसको खा के बीमार ना पड़े
3: जी।
4: अगर हम फल का रस दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फल का रस निकाल लेंगे, उसके बाद कटोरी गरम हल्के गरम करके उसमें डाल देंगे,
3: मतलब उसका जो जूस है वो
4: उसका ठंडापन निकाल देंगे,
3: उसकी तासीर
4: गरम हो जाए, जिसमें बच्चे को नुकसान, वो भी हम 2 चम्मच देंगे, है ना
3: जी।
4: तो बच्चा ऐसा आहार ले कि उसको पोषण मिलता रहे। अच्छा, साथ ही माता का दूध पीता ही रहे, क्योंकि तुरंत बच्चे का अगर माता दूध पिलाना बंद कर देती है तो उसको पोषण संबंधी अनेक कमियां दिखाई देने लगती।
3: बिल्कुल।
4: फिर बच्चा जब 6 महीने से 8 महीने 9 महीने तो तुम जो खाओगी ममता समता तो खुद ही छीन के खाने लगता।
3: बिल्कुल,
4: है
3: बिल्कुल,
4: क्योंकि तो वो खाने से इंट्रोड्यूस हो चुका है और उसको पता भी चलता है कि क्या खाना है। जो चीज उसको पसंद है वो तो बहुत स्वाद लेके खाएगी, बार बार मांगता है बच्चा कि यही चाहिए। और जो चीज नहीं पसंद है उसको जबरदस्ती मुंह फेर लेगा, नहीं खाएगा, गिरा देगा। और तुम ये देखो समता कि बच्चे अपने हाथ से खाना कितना पसंद करते
3: हैं। हाँ, और जबकि उस अवस्था में भी रहता है मैम, कुछ भी दो अपने यहाँ से तो सीधे मुंह में लगता है कि वो चाह रहे हैं कि हम।
4: और हालांकि चम्मच अच्छे से नहीं पकड़ पाते या जो भी, अभी उनमें ये आदत नहीं होती है कि वो कैसे खाएं। तो हाथ पूरा फैला रहता है, उसी में एक उंगली में जो एक चावल चिपका वही चाट लिया, है ना, या पूरा मुंह पेट फैला के चाटा। तो इस समय तो पोषण बहुत जरूरी है कि वो कैसे खा रहा है, उसको प्रोटीन भी चाहिए होता है। तो प्रोटीन जो होती है ये माता के दूध से बहुत अच्छी मिल जाती, गाय के दूध में इतनी अच्छी नहीं होती है, जबकि माता के दूध में प्रोटीन जो होती है उच्च कोटि की होती है। और जो है वो बच्चे को बहुत फायदा करती है,
3: बहुत फायदा
4: कि माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन जो है लैक्टो एब्ल्यूमिन होती है। तुमने देखा होगा बच्चों के डब्बों पे लिखा रहता है लैक्टोजेन, ये वो, है ना। तो वो इसी से शब्द लिया गया है।
3: ओके।
4: तो लैक्टो एब्ल्यूमिन जो है वो माता के दूध में पाई जाती है, इसमें प्रोटीन बहुत होता है, तभी उन्होंने लैक्टोजीन और ये सब डब्बे में नाम रख देते हैं दूध के। अच्छा, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो जो है माता के दूध में वो भी अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो बच्चे का पोषण पूरा, हम लोग का भोजन जो है ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट पे ही डिपेंड।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: ठीक है। तो ये जो है बच्चा जब लेता है तो वो बहुत संतुष्टि का अनुभव करता
3: उसको लगता है कि हाँ, हाँ मतलब बहुत ही अच्छा सा हमने अभी खाया है कुछ और।
4: हाँ
3: मैम, ये एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे बचपन से ही माँ का दूध नहीं लेते हैं तो क्या हाँ, उनका शरीर भी दुबला पतला रहता
4: नहीं,
3: है
4: नहीं नहीं, नहीं नहीं, हम सप्लीमेंट्री इसी का है पूरा का हार सप्लीमेंट्री फूड्स देते हैं उनको। हम अब जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो माता के दूध में गाय मतलब ज्यादा पाया जाता है और गाय के दूध में कम पाया जाता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट शिशु के लिए रहता है कि हमको उसको चाहिए कि उसको इतना चाहिए चाहिए तो हम वो दूध में चीनी डाल देते हैं जो सुक्रोज होती है ग्लूकोज होती है तो ये कार्बोहाइड्रेट उसको पूरा कर देते हैं, है ना। छोटे बच्चे को हम लोग दूध में चीनी डाल के जरा सी देते जरूर है तो चूंकि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो उसकी कमी उससे पूरी हो जाती है, ठीक है।
3: तो जैसे हमारे यहाँ घर में बच्चे हैं मैम तो उन्होंने माँ का दूध बिल्कुल नहीं पिया, पर ऐसा कुछ भगवान की दया से लगता नहीं है कि बाकी चीजों में जैसे फ्रूट्स हो गया फिर और कुछ चीजें हो गई तो उनका सेवन वो लगातार जैसे होता है कि हाँ खाते हैं बच्चे तो जैसे लगता है कि हाँ मतलब कि दूध अगर नहीं भी पिया है तो बाकी जैसे अभी आपने बताया कि दूध में चीनी हल्की सी डाल करके हाँ, वो उसका पूरक पूरा हो जाता है,
4: पूरा हो जाता है तो उससे कमी नहीं होती। बहुत सारे बच्चे नहीं भी ना माता का दूध पाते ना कभी गाय का दूध और सिर्फ डब्बे के दूध पे रहता है।
3: ये भी बात
4: लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पाल रहा है बच्चा उसको ये जरूर पता होना चाहिए कि 6 महीने के बाद बच्चे को पूरक आहार हमें देना ही देना,
3: देना ही।
4: हालांकि अब देखो बच्चे को 3 महीने से ही सेव ये देते हैं सेरेलैक देते हैं और मतलब दलिया देने लगते हैं
3: आजकल तो मैम हाँ। सेरेलैक जैसे हम लोग पहले क्या होता था कि सेरेलैक के डब्बे आज भी आते हैं बट मुझे लगता है कि अब ज्यादा मदर्स जो हैं वो अवेयर हो गई हैं तो अपने आप से घर में बनाती हैं
4: बना लेती हैं
3: है ना अपने आप
4: हाँ, मखाना भून के गेहूं भून करके पका करके हाँ। अच्छा दलिया है सूजी का खीर पतला करके वो दे देती हैं। तो अब एक तो बच्चे अब कम भी होने लगे हैं दूसरे माता को भी लगता है कि एक ही बच्चा है उसको अच्छे से पाल ले
3: बिल्कुल बिल्कुल
4: है ना
3: यही मेन कारण यही है
4: और दूसरे से अब पढ़ी लिखी माता होने लगी
3: बिल्कुल
4: पहले जो था 12-14 साल में शादी हो गई पता चला कि 15 साल में माँ बन गई है ना
3: तो वो उतना अवेयरनेस था नहीं बट अब जो है वो वाकई में जैसे कह रही हूँ। और मैम एक चीज और भी है अब जो अब आजकल की जो लड़कियां हैं वो कम से कम 25-30-35 तक लड़कियां हो जा रही हैं तब शादी हो रही है
4: हाँ।
3: तो उसके बाद बावजूद भी तो उनके अंदर ज्ञान की बहुत हो जाती है ना
4: ज्ञान के संग है लेकिन जानते हो बच्चे समय पे ही होने चाहिए है ना
3: हाँ।
4: तो जो बच्चे बिल्कुल घर में नॉर्मल डिलीवरी होती है नहीं इसीलिए होती
3: हाँ।
4: क्योंकि हड्डियां भी तो माता की कड़ी हो जाती
3: हाँ,
4: है
3: बिल्कुल
4: है ना
3: हाँ। तो समय से और
4: 30-32 साल की उम्र में बच्चा कठिन रहता पैदा करना क्योंकि बच्चे की जान को भी खतरा रहता है इसीलिए जो है ऑपरेशन की सुविधा दी गई है इसीलिए दी गई है ना। तो ये बात है और बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए टाइम बे टाइम आधे आधे एक एक घंटे पे जैसे सो रहे तब तो कोई बात
3: हाँ।
4: नहीं जगे तो उनको कुछ दे दिया जाए चाहे थोड़ा सा बिस्कुट मीठा दे दो
3: हाँ।
4: चाहे कुछ भी फल का सेब का टुकड़ा पकड़ा दो अगर दांत निकल आए और नहीं तो तुम रस तो दे ही रही हो 6 महीने के बच्चे को तो इस तरह से उनका पोषण जैसे जैसे होगा वो फिर बाद में जहाँ तक हो साल भर का बच्चा मतलब 12-14 महीने का हो जाए
3: हाँ।
4: तो बच्चे को दाल का पानी है या दाल है जरा सा चावल है रोटी उसी में मैश कर दो वो सब देना चाहिए थोड़ा थोड़ा दो बस इतना दो असत्य में नहीं दो कि बच्चा पचा ले जब उसका पाचन देख लो कि ठीक है तब उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दो। तो इस तरह से यदि तुम बच्चे को पोषण दोगी तो माता भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और दूसरे सबसे बड़ी बात है समय समय पर टीकाकरण जरूर कराना
3: बिल्कुल
4: चाहिए।
3: ये तो आपने बहुत ही पॉइंट वाली बात बोली है।
4: हाँ, बिल्कुल
3: exactly.
4: टीकाकरण बहुत जरूरी है आपका बच्चा कितना भी स्वस्थ है सब कुछ लेकिन टीकाकरण बहुत जरूरी है DPT का इंजेक्शन लगवाना
3: हाँ।
4: है पोलियो की ड्रॉप दिलानी है ये सब चीजें जरूरी रहती हैं क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो आगे चल के बच्चा अपाहिज भी हो जाता
3: हाँ।
4: है बहुत सारे कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो और बच्चे में विटामिन ए जरूर देना चाहिए है ना
3: जी,
4: हरी सब्जियां हैं, थोड़ा बच्चा बड़ा हो रहा है, अंडे की पीली दे दो, दूध दे दो, जरा सा खीर है
3: जी।
4: माता के दूध के अतिरिक्त सप्लीमेंट्री फूड्स जरूर देने
3: बिल्कुल
4: चाहिए।
3: देना चाहिए, ताकि वही बच्चे फिर आगे चल करके हमारे हमारे देश का जो भविष्य
4: हाँ
3: वो ऐसा होना चाहिए। तो मैम यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार हम आपको देंगे इजाजत, और कि हम ब्रेक के उस पार आके आपसे मिल करके विदा लेंगे, ठीक है? तो चलिए लिस्टर सुनते एक प्यारा सा गीत, और उसके बाद मैम से विदा लेंगे, उनसे कुछ बातचीत करके तब हम उनसे विदा लेंगे। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज हमारे हैं मास्टर शेफ यानी कि हमारी रंजना मैम। तो पोषण पे बात हो रही है तो आइए लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले सेक्शन पे आ गए हैं कि बच्चों के लिए जो बाकी बचा पोषण है वो भी जान लेते हैं।
3: हाँ समता, ये तो है कि बच्चों को हम लोग कुछ भी खिला देते हैं, है ना, जो भी खुद खाया कुछ भी। पर कभी कभी तुम देखो जो बच्चा नहीं पसंद करता, मान लो नींबू खिला दिया
2: जी, हाँ,
3: उसने मुंह बनाया, हम लोग हंसने लगे, फिर दोबारा खिला दिया
2: जी,
3: तो उससे आगे चल के बच्चे का मन उससे हट जाता है। फिर वो खाना उसको पसंद नहीं करता
2: जी,
3: फिर चाहे जाए कितना फायदा हो, संतरा खिलाओ, सब नहीं हाँ, खाना पसंद
2: बिल्कुल,
3: करता
2: बिल्कुल।
3: और बच्चे को शुरू से बहुत ज्यादा मिर्च मसाले नहीं देने
2: चाहिए, नहीं देना चाहिए बिल्कुल।
3: जैसे जैसे बड़ा होगा वो आप जो खाना खा रही वो तो खुद ही खाने लग जाएगा
2: हाँ, बिल्कुल।
3: तो अलग से जो है बहुत मिर्च मसाले नहीं देने चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो हम सबसे यही कहेंगे कि बाहर का खाना
2: हाँ,
3: बच्चों को बिल्कुल ना खाने दे,
2: बिल्कुल ये तो बिल्कुल।
3: और टॉफी और चॉकलेट भी ना खाने दे।
2: सही, बिल्कुल 100% मैम कि ये जो सारी चीजें है ना ये हमारे पोषण को दिनों बदिन जो है
3: नहीं,
2: ना वो
3: इससे जानते हो बच्चे हाँ, को वही चीज जो अच्छी लगती है रंग बिरंग वो पसंद करता है
2: हाँ,
3: चॉकलेट टॉफी खाता है। पर ये नहीं दो, इसलिए उसकी जगह अंजीर दे दो
2: हाँ,
3: काजू बादाम भिगो के दे दो, किशमिश
2: हाँ,
3: दे दो, थोड़ा बच्चे को ये खाने दो। थोड़ा जब बच्चा मजबूत हो जाए 2-3 साल बाद तो फिर वो अपना खाने लग जाएगा हाँ, थोड़ा। तो अगर आप कुछ खा रही हैं तो घर में नमकीन बना लीजिए, मीठा खुरमा बना लीजिए, समोसा अपने घर का बना हुआ छोटा छोटा सा बना
2: हाँ,
3: दीजिए, रोटी में जैम लगा के उसमें मुंह बना दीजिए
2: exactly,
3: जैम भर दीजिए। बच्चे को डिफरेंट खाना पसंद रहता है और उसी हिसाब से हम लोग ने देखा था, हम लोग छोटे छोटे थे हमारे घर में भी जो बच्चे थे तो चिड़िया बना दे मेरी मम्मी और एक की मतलब तीली पे लगा
2: तीली
3: दे
2: पे लगा कर
3: और उसी को उलट पुलट के भून दे, मतलब गरम कर दे तावे पे
2: बन गया
3: और वो आंच पे तो
2: हाँ,
3: वो चिड़िया था, लो चिड़िया खा लो, चलो अब देखो चिड़िया उड़ेगी नहीं,
2: उड़ेगी
3: उसी
2: नहीं।
3: में कुछ लगा दिया
2: मैम एक चीज और याद है आपको, दाल चावल का केक
3: हाँ,
2: जैसे दाल चावल
3: हाँ,
2: कटोरी में मिला करके उसको केक बना दिया
3: हाँ,
2: और हमने तो अपनी भतीजियों को अपने बच्चों को मैम बहुत खिलाया ये केक बना हुआ
3: सुंदर सा कटोरी में
2: हाँ,
3: भर लो दाल चावल
2: हाँ,
3: उसके बाद उसको उलट दो और ऊपर से
2: सजा दो
3: जैम जेली ले लो उसको कर दो
2: हाँ,
3: तो सच में तो ये आप जो है बाहर का फूड मत दीजिए
2: हाँ,
3: बड़ा होगा तो खुद तो खाएगा ही बाहर का, लेकिन आप शुरू से अगर बच्चे को मजबूत कर ले रही है तब बिल्कुल उसको बीमारियां भी नहीं लगेगी। नहीं तो मौसम बदलते ही बच्चे कुछ जरूर जल्दी बीमार पड़ते
2: बिल्कुल
3: हैं। तो आप उनसे भी बचा ले जाएंगी और आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो बस मेरे इतनी ही कि आप बाहर का ना उसको दे, बल्कि सब्जियों का सूप है, फलों
2: हाँ,
3: का रस है और रा फूड्स हैं जैसे
2: हाँ,
3: हल्के फुल्के वो आप देती रही हैं, केला से केला आप दीजिए, बच्चा बहुत पसंद करता है
2: बिल्कुल।
3: तो चलिए बस
2: तो
3: आज इतना ही,
2: थैंक यू सो मच, मतलब आज इतना ही नहीं मैम, आपने इतनी मतलब कहते हैं ना कि विस्तार से जानकारी आज हम लोगों को मिली है। एंड मैं सुनने वाली सभी महिलाओं को ये जानना मतलब बताना चाहूँगी कि आगे जब भी कोई इस तरीके की जो मतलब मेजर जानकारियाँ होती हैं तो मैम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैम बिल्कुल, आप हमारे शोज़ में आइए और ऐसी जानकारी तो मतलब मुझे भी मिली है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा सुन करके। एग्जैक्टली मुझे अपने दिन याद आ गए मैम, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जब मैं आपसे क्लास करती थी तो मुझे आज वही पूरा सीन याद आ गया कि हम लोग इतनी गंभीर में जा करके हम लोग बात करते थे और मैम इतने अच्छे से समझाती थी। तो थैंक यू सो मच मैम दिल से, और फिर से मैं आपको याद करूंगी एंड फिर से आपको आना है हमारे।
3: सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार,
2: थैंक यू सो मच। तो भाई ये थी हमारे साथ रंजना मैम और मैं मिलूंगी अभी आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए सुनते रहिए इस प्यारे से गाने को, बस हम यूं आए यूं गए एंड यूं आए।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और मैं हूँ आपकी आरजे समता। तो भाई लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले सेक्शन पे आ गए हैं। यस, आज की मोरल स्टोरी जो कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है और उनके पेरेंट्स के लिए है आज की स्टोरी। तो आइए सुनते हैं इस प्यारी सी स्टोरी को और जानते हैं कि इसका मोरल क्या निकल रहा है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा था लेकिन उसमें आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी थी। वो उत्तर जानता था फिर भी कक्षा में हाथ उठाने से डरता था कि कहीं उसका जवाब गलत ना हो जाए। एक दिन उसकी शिक्षिका ने बच्चों से पूछा कि बच्चों सफलता के लिए सबसे जरूरी क्या है। किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा अच्छे नंबर। मैडम ने मुस्कुराकर कहा सफलता के लिए सबसे जरूरी है मेहनत और अपने आप पर विश्वास। कुछ दिनों बाद स्कूल में साइंस की मॉडल जो कि एग्जीबिशन होती है उसकी अनाउंसमेंट हुआ। आरव ने सौर ऊर्जा से चलने वाला एक छोटा सा घर बनाने का फैसला किया। उसके पास महंगे सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने पुराने खिलौनों की मोटर, कार्डबोर्ड, लकड़ियां और पुरानी तारों से मॉडल बनाना शुरू कर दिया। मॉडल कई बार खराब हुआ। पहली बार मोटर नहीं चली, दूसरी बार तार टूट गया और तीसरी बार पूरा मॉडल गिर गया। आरव निराश होकर बोला कि ये मुझसे नहीं होगा। फिर उसकी माँ ने कहा बेटा हारना बुरा नहीं होता है लेकिन कोशिश को छोड़ देना ये बुरा होता है। एक बार फिर से इसको ट्राई करो। आरव ने माँ की बात मानी और फिर मेहनत शुरू कर दी। वे रोज स्कूल के बाद अपने मॉडल पर काम करता था। जब कोई समस्या आती तो वो अपनी मैम से पूछता और किताबों से जानकारी लेता। आखिर जिस दिन प्रतियोगिता का दिन आया उस दिन उसने दूसरे बच्चों के सुंदर मॉडल और महंगे मॉडल देखे। उसे देखकर आरव फिर घबरा गया। तभी उसकी मैम ने कहा आरव दूसरों से अपनी तुलना मत करो, बस ये सोचो कि तुमने पूरी ईमानदारी से और मेहनत से ये काम किया है। आरव ने कॉन्फिडेंट के साथ अपना मॉडल जजों के सामने रखा और उसे दिखाया। उसने बताया कि उसने अपनी पुरानी बेकार चीजों से उपयोग करके इस मॉडल को बनाया है और कई बार टूटने के बाद दोबारा इसे तैयार किया गया है। जैसे ही रिजल्ट आया तो आरओ को प्रथम पुरस्कार मिला। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जज ने पूछा तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है। आरओ ने मुस्कुराकर कहा मैंने सीखा है कि साधन कम होना समस्या नहीं है, असली समस्या तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। एक दिन आरव ने सिर्फ प्रतियोगिता नहीं जीती, उस दिन उसने केवल एक कॉन्फिडेंट के साथ में अपनी इस प्रतियोगिता को जीता, बल्कि अपने डर को भी हरा दिया। बाद में वो बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बना और गरीब बच्चों के लिए सस्ती सौर ऊर्जा की तकनीक बनाने लगा। जब कोई बच्चा अपनी सफलता का पूरा रहस्य पूछता उससे तो वो कहता मैं एक छोटा सा दीपक था, मेरे पास रोशनी कम थी लेकिन मैंने जलना नहीं छोड़ा। लगातार जलते रहना एक छोटा दीपक का भी बहुत बड़ा काम होता है और अंधेरा उसे कम कर देता है। आइए इस कहानी से हमें इस सीख को बताते हैं। मेहनत करते रहिए, खुद पर विश्वास रखिए और असफलता से कभी डरिए नहीं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करने वाला इंसान देर से ही सही लेकिन हर दिन अपनी मंजिल जरूर पा लेता है। तो इस कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी भी चीज से घबराना नहीं चाहिए। आप आगे तो बढ़िए, पीछे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जब आरव आगे बढ़ा और एक वो वैज्ञानिक बना, आपको लग रहा है कि इस कहानी से सिर्फ एक ही मकसद निकल रहा है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम इसको अपने जीवन में भी शामिल करना चाहें तो इस कहानी से हमें अपने जीवन में भी बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। क्योंकि हमारे जीवन में भी कई ऐसी कठिनाइयां आती हैं, कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर हम अपने आप को असहाय और बहुत ही कमजोर मान लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अपना विल पावर और अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है और उसी सफलता को देखने के लिए वही लोग ताली बजाते हैं जो आपको पीछे हटने के लिए, आपको गिराने के लिए उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। तो बच्चों, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे आपके जीवन के सफर में हो, चाहे आपके स्कूलिंग में हो, कॉलेज में हो, आपके खुद पर्सनल किसी रिलेशन में हो। तो आज की स्टोरी यही है। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और मैं आऊंगी आपसे टाटा बाय बाय करने के लिए। तब तक के लिए सुनते रहें इस प्यारे से गीत को।

ही होता है। बात बात में मैंने देखा ही नहीं कि टाइम हमारा आपसे विदा लेने का हो गया और मैं चली थी आपको एक गाना सुनाने। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे फिर सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
7: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
8: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

हां जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है 3:04 बाद स्टूडियो क्लॉक, और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा का अपना एफएम रेडियो 89.6 एफएम, गोंडा शहर

माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरत नगमा आप इंजॉय कर रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। हम आपको बता दें, इरशाद कामिल के लिखे बोल हैं और धुरंधर फिल्म से फरमाइश थी हमारी समरीन जी की। कॉलेज यून गुंडा का पहला फरमाइश बेहद ही रोमांटिक गाने के साथ आगाज हो चुका है आज के कार्यक्रम का। एंड अब वक्त है आपके अपने चैट बॉक्स में चलने का, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं कुछ बेहद ही प्यारे लिसनर्स और उनके कुछ बेहद ही खूबसूरत मैसेजेस, कुछ बेहद ही प्यारे और ऑफकोर्स दिल को छू जाने वाले पैगामात। लेट्स सी, हमारे पास सबसे पहले मैसेज आज किसका आया है। तो एज यूजुअल हमारे पास जो मैसेज आया है वो आया अरविंद जी का। लिख रहे हैं, हेलो अरविंद जी, मैम कैसे हैं आप? शुभ दोपहरिया। हेलो अरविंद जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? शुभ दोपहरिया, आपका वेलकम करते हैं हम कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड इसके बाद धर्मेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ धर्मेश जी, आप बताइए आप कैसे हैं? आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ये लाइन आई है हमारे अरविंद जी की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सुरेंद्र यादव फ्रॉम गौरा चौकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। सोनिया तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और आपका भी स्वागत करते हैं। कोयल सी तेरी बोली, वैसे आपकी बोली कोयल सी तो है लेकिन आपको कॉल करनी पड़ेगी क्योंकि हमें आपकी बोली सुनने का बहुत मन कर रहा है, तो उठाइए अपना।

डाल करें 6393316429 और भेज दीजिए अपनी फरमाइश कॉल करके। इसके बाद हमारे पास जुड़ी हैं गुलाबशाह सिद्दीकी जी। हेलो, गुड आफ्टरनून अंती मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू। इतने सारे बुक के मेरे लिए, सच में बताइए बताइए, झूठ तो नहीं बोल रही हैं। थैंक यू सो मच। एंड महेंद्र दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम राजस्थान, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून अंती मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू। महेंद्र जी कैसे हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं। उस्मान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड आफ्टरनून आज मैम, गुड आफ्टरनून टू यू उस्मान जी, आपका भी इस्तकबाल करते हैं हम कॉलर ट्यून गोड़ा में। एंड अरविंद जी का लिखना है कि मेरी रूह की तलब तुम हो, ओके मेरी रूह की तलब हो तुम, कैसे कहूँ सबसे अलग हो तुम, मैम आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारी लाइन थी। इसके बाद बाबू अंसारी जी अहमदपुर बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हैं और आपने लिखा है गुड आफ्टरनून मैम जी, कैसी हैं। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं, आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद अरीबा शेख हमारे साथ जुड़ गई है, हेलो गुड आफ्टरनून अति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू अरीबा जी। मस्त, ओके मुसीम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड आफ्टरनून डियर राजनी जी, कैसी हैं। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। मुसीम जी आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, कुर्सी की पेटी मान ली जाए क्योंकि अगली फरमाइश हमारे पास धर्मेश त्रिपाठी जी की आ गई है हिम्मत वाला से, ताकि ताकि तो इंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के अगली फरमाइश को, तो अपनी फरमाइशें भेजते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और रीना शर्मा जी की एंट्री हो चुकी है, आपका भी वेलकम है रीना जी हमारे और आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा में।

और ये गाने की फरमाइश थी हमारे धर्मेश जी की तरफ से, ताकि ताकि हिम्मत वाला से आप एंजॉय कर रहे थे। एंड नरेश प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपने लिखा है वेरी लवली गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर लिसनर्स, गुड आफ्टरनून टू यू नरेश जी, कैसे हैं आप? और आपने अपना एड्रेस भी बताया है कि फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश से नरेश प्रजापति आपका स्वागत करते हैं। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे और आपने अपनी फरमाइश भी हमें भेज दी होकर, नहीं भेजिए भैया तो भेज दीजिए, क्योंकि 3 से 4 का ही वक्त है आपके पास और घड़ी की सुइयां रुकती किसी के लिए भी नहीं है, वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। आए हुए थे हम 3:04 पे और हो चुके हैं 3:14, फिलहाल देख रहे हैं ना 10 मिनट गुजर भी गए हैं। मेरी फरमाइश को हवाओं में बिखेरने के लिए शुक्रिया, मेरी पसंद से हर दिल को सरोबोर करने के लिए शुक्रिया, आपकी आवाज का जादू यूं ही चलता रहे, मेरी छोटी सी चाहत को पूरा करने के लिए शुक्रिया। अरे वाह क्या बात है, अगर इस हसीन अंदाज से आप शुक्रिया करेंगे तो हमें कहना पड़ेगा कि वेलकम जी। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास मोहम्मद मुजीब जी का है और वो कहते हैं जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू, तो एंजॉय करते रहिए और हम तब तक समोसा खाकर आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, आप यहीं रहिएगा, समोसे बाद में खाइए, चाय बाद में पीजिएगा, बट अभी सुनते रहिए कॉलेज गोटा विद राजन अधी।

मोहम्मद मुसीर जी की फरमाइश पर आप इंजॉय कर रहे थे मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी से जब तक रहेगा समोसे में आलू। अभिजीत पूर्णिमा और सपना मुखर्जी की आवाज थी इस गाने के अंदर, अनु मलिक का संगीत और देव कोहली के लिखे बोल। और मुझे लगता है भैया देव कोहली साहब को ना या तो वो किसी रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू को देख रहे थे या उन्हें लग रही थी पक्का भूख और वो डिसाइड नहीं कर पाए थे क्या कुछ खाना है, इसीलिए उन्होंने इडली डोसा सांभर चटनी हर एक चीज़ का इजाद इसके अंदर कर दिया और बता दिया है कि ये भी होता है वो भी होता है। और उस गाने को सुनने के बाद मुझे रोमांटिक गाना तो नहीं लेकिन हाँ भूख ज़रूर लगने लगा है। और अब सोच रहे हैं कि जब किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाके छापा मार दिया जाए और कुछ बढ़िया सा खा भी लिया जाए। फिलहाल कहीं भी जाना नहीं है, यहीं में मौजूद रहिए, इन्जॉय करते रहिए कॉल ट्यून गोंडा। इसके बाद चलेंगे साथ साथ में पार्टी करने के लिए, पार्टी के पैसे कौन देगा ये आप लिख लीजिएगा। फिलहाल आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। एंड महेंद्र जी की तरफ से मैसेज आया है, आज नंदी मैम कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं महेंद्र जी। एंड ओके तो भैया आलू समोसे को लेकर के काफ़ी सारे मैसेज आ चुके हैं, इतनी अच्छी फरमाइश लग गई है। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास जो है वो है बाबू अंसारी जी का फ्रॉम बाराबंकी, जुगनी जुगनी फ्रॉम बादल। एंजॉय करते रहिए। बॉबी देओल रानी मुखर्जी के ऊपर फिल्माया गया गाना, अनु मलिक का संगीत है, समीर साहब के लिखे बोल हैं, अनुराध पॉट बल सुखविंदर सिंह जसविंदर और अनमोल मलिक की आवाज़ है। हम मिलेंगे अगले गाने पर जो कि हमारी गुलाबशाह जी की है, नरेश प्रजापति जी की है, देवी प्रसाद जी की है और महेंद्र जी की है। सो एंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गोंडा विद राजनीति गोंडा का अपना वाला एफएम रेडियो ज्ञान असली पर।

और आप इंजॉय कर रहे थे बाराबंकी से आई फरमाइश हमारे बाबू अंसारी जी की जुगनी जुगनी। और क्या बात है, यहाँ पे पार्टी वार्टी की बातें चल रही हैं और गुलाब शाह जी को पता भी नहीं है, लेकिन उनका नाम आ चुका है पार्टी के अंदर कि वो पार्टी देने वाली है। तो गुलाब शाह जी, आप तो तक तय कीजिए और हम बढ़ते हैं आप ही के गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास है गुलाब शाह सिद्दीकी की और वो इंजॉय करना चाहती है मेरा सनम सबसे प्यारा है। तो सुनते रहिए, इंजॉय करते रहिए। और ये गाना आपने किसको डेडिकेट किया, इसका जिक्र आज आपने नहीं किया है, तो हम ही बता देते हैं। ये गाना उन सभी को डेडिकेटेड है जो है उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड ऑफ कोर्स अगली फरमाइश हमारे पास है इंदौर से नरेश प्रजापति की। तो बने रहिए, सुनते रहिए, इंजॉय करते रहिए। कॉल ट्यून गुंडा विद राजनीति।

और आप एंजॉय कर रहे थे कुमार सानू आशा जी की आवाज में समीर साहब के लिखे बोल आनंद मलिन का जो था संगीत। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं गुलाबशाह जी की फरमाइश, और मुझे यकीन ही था कि आपके हस्बैंड के लिए डेडिकेटेड होगा और आपने बता दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अगली फरमाइश हमारे पास आई है नरेश प्रजापति की, मिले ना फूल तो आइए इंजॉय करते हैं। और ये गाना इंदौर से डेडिकेट किया गया है कुछ बेहतरीन लोगों के लिए जो उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिसमें हमारे गजराज जी शामिल हैं, मंगलीलाल जी शामिल हैं, कल्याण जी शामिल हैं, कैलाश राजपूत, राहुल और अनु पांडे जी। आप लोगों के लिए ये गाना डेडिकेट है हमारे अपने नरेश प्रजापति की तरफ से, सुनते रहिए।

और ये फरमाइश थी हमारे नरेश प्रजापति की मिले ना फूल। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। एंड के गुप्ता जी का मैसेज आ गया है, उन्नति जी हमको भी शिफ्ट कर दीजिए। आइए बेशक शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास अगली फरमाइश है दीपमाला जी की और वो इंजॉय करना चाहती है 90s का बहुत ही बेहतरीन नगमा, एक रोमांटिक गाना है। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में बहुत प्यार करते हैं ये गाना हमारी दीपमाला जी और हमारे के गुप्ता जी की तरफ से है। सो इंजॉय करते रहिए साजन फिल्म से। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश थी हमारी दीपमाला जी की और के गुप्ता जी की। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना हमारे पास है कस्मे बादे, प्यार वफा। एंजॉय करते रहिए देवी प्रसाद जी की फरमाइश। और हमारे साथ जुड़ गए इट्स कुमार जी, आपका स्वागत करते हैं। इट्स कुमार जी, कैसे हैं आप? एंड ऑफ कोर्स आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। प्रमुख कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। दरक्षा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। इस्तकबाल करते हैं कॉलर ट्यून गुना में। एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगले गाने की तरफ। एंड ओके महेंद्र जी, अरविंद जी, आपका गाना सभी को डेडिकेटेड है, हम जरूर उनका नाम लेंगे। एंजॉय करते रहिए।

देवी प्रसाद जी की फरमाइश के बाद आइए बढ़ते हैं अगली गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास आई है महेंद्र जी की फ्रॉम राजस्थान, और एंजॉय करना चाहते हैं वो नखरा लड़की का फ्रॉम सुहाग। एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे इस गाने की उस पर। अगली फरमाइश हमारे पास है सुरेंद्र यादव जी की, सोनिया तिवारी जी की, अरविंद मौर्या जी की, अरीबा जी की, उस्मान खान जी की, राम नरेश जी की, आसिफ अंसारी जी की, इम्तियाज जी की, रफी खान की। तो सुनते रहिएगा एंड ये गाना आप सभी को डेडिकेटेड है आपके अपने महेंद्र जी की तरफ से, तो एंजॉय कीजिए।

और आप एंजॉय कर रहे थे हमारे महेंद्र जी की फरमाइश सुहाग फिल्म से। 1994 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। अजय देवगन, करिश्मा कपूर, अक्षय कुमार और नगमा जी नजर आई थी। कुमार सानू, अलका जी, उदित नारायण की आवाज में ये गाना था। समीर साहब के लिखे बोल थे और आनंद जी का संगीत। एनएसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है आपके अपने सुरेंद्र यादव जी, और उनकी फरमाइश को पूरा करते हुए हम बढ़ेंगे हमारी अगली फरमाइश की ओर, जो किसी और की नहीं होने वाली है, हमारी सोनिया तिवारी जी की। तो बने रहिए, एंजॉय करते रहिए। कॉल ट्यून कुंडा, मिलते हैं इस गाने के उस पार।

और ये फरमाइश थी हमारे सुरेंद्र जी की। एन वक्त को मद्देनजर रखते हुए आइए बढ़ते हैं अब थोड़ा सा और आगे और ट्यून करते हैं हमारी अगली फरमाइश जो कि सोनिया तिवारी जी की है, कोयल सी तेरी बोली। एंजॉय करते रहिए। ये एक अवॉर्डेड सॉन्ग है, यानी कि इस गाने को अवार्ड मिल चुका है। माधुरी दीक्षित को इस गाने की वजह से अवार्ड मिल चुका है, तो एंजॉय करते रहिए राधा पॉट फॉल उदित नारायण की आवाज में। हम मिलते हैं अगले गाने को लेकर के। अगली फरमाइश हमारे पास अरविंद मौर्या जी की है और उसी के बाद हमारे पास फरमाइश है आशिक रानपाल की जो हमें नेपाल से सुन रही हैं। आपका भी वेलकम करते हैं और हमारी अगली फरमाइश जो होगी वो ऑफ कोर्स आपकी अपने अरीबा जी और उस्मान खान की होगी।

और ये फरमाइश थी हमारी सोनिया तिवारी जी की। नसी के साथ आइए बढ़ते हैं, ट्यून करते हैं नेपाल से आई फरमाइश हमारे पास आशिक रानपाल की, मेरे नैना सावन भादो। तो एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार हमारे अरविंद जी की फरमाइश पर। तब तक के लिए सुनते रहिए कॉल ट्यून गोंडा और एंजॉय करते रहिए गोंडा वाला अपना एफएम।

और आप एंजॉय कर रहे थे मेरे नैना साफन फादो। आई थी फरमाइश हमारे पास नेपाल से, एंड आइए बढ़ते हैं अरविंद जी की फरमाइश की ओर। और ये गाना डेडिकेट किया है उन्होंने अरीबा जी को, गुलबशा जी को, नागेश्वर धाकर जी को, धर्मेंद्र मोहन जी को, उर्स कुमार जी को, रोशनी जी को और मुझे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग आपने आज फरमाइश कर दी है। ये गाना मुझे बेहद ही पसंद है, और एक वक्त था जब ये गाना आई थिंक हर दूसरा बंदा सुन रहा था। लेकिन इस गाने को लेकर एक कन्फ्यूजन बहुत बड़ी वाली है कि इस गाने का असल सिंगर कौन है, आतिफ असलम या फिर श्रेया, क्योंकि ये आवाज़ों को कहीं ना कहीं लोग ढूंढते तो हैं बट अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। अगर आपने ये गाना 2020 के आसपास कभी सुना हो, यानी कि कोविड के टाइम पे कभी सुना हो, या अपने स्कूल जाते टाइम सुना हो, तो मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। लगातार मैसेजेस आ रहे हैं हमारी गुलबशा जी के, इट्स कुमार जी के और हमारे धर्मेश जी के। आप लोगों के मैसेजेस के लिए बहुत शुक्रिया।

एंड यकीनन आपको इस गाने को सुनकर कुछ बीते हुए लम्हे जरूर याद आए होंगे, क्योंकि मुझे तो आए हैं। बहुत ही पसंदीदा गाना है मेरा और आप एंजॉय कर रहे थे हमारे अरविंद जी की फरमाइश। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है अरीबा जी का, तो आइए उनकी फरमाइश को एंजॉय करते हैं। बोल बोल बोल, तुझको क्या चाहिए, पैसा चाहिए या प्यार चाहिए? शाहरुख खान पर फिल्माया गया गाना है। हम मिलते हैं अगले सॉन्ग पर जो हमारे उस्मान खान जी की है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

अरे भाई, इतनी जल्दी वक्त गुजर कैसे जाता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। अभी आए हुए मुझे मात्र 4 मिनट हुए थे और देखिए 48 हो चुका है। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। हमारे साथ जुड़ गई है श्याम नाम की पगली, आपका स्वागत करते हैं एंड आई होप आप बहुत अच्छी होंगी। वैसे तो आप अच्छी ही हैं, मैं जानती हूँ। फिलहाल आइए इंजॉय करते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और अगला सॉन्ग है जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, उस्मान खान जी की फरमाइश है। और हम मिलेंगे अगले गाने पर जो कि राम नरेश जी की है एंड इसके बाद हैदराबाद तेलंगाना से आसिफ अंसारी जी की फरमाइश। और उसके बाद है हमारी 2-3 और फरमाइशें, देखते हैं कि वक्त हमें पीछे छोड़ता है या हम वक्त को पीछे छोड़ते हैं।

और ये फरमाइश थी हमारे उस्मान खान जी के, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने को ट्यून करते हैं। अगला सॉन्ग हमारे पास है गोरे रंग पे इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा, राम नरेश जी की फरमाइश है। और हम मिलेंगे अगली फरमाइश पर जो कि हमारी हैदराबाद से आई है, इसके बाद इम्तियाज जी की, रफीक खान जी की, तो इंजॉय करते रहिए। और हमारे आसिफ जी की जो फरमाइश है वो डेडिकेटेड है दो खास लोगों के लिए, बताते हैं उनका नाम लेकिन इस गाने के उस पार।

ये फरमाइश थी हमारी राम नरेश जी की। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया था कि आशिफ जी की फरमाइश है हैदराबाद तेलंगाना से, और ये फरमाइश आई है दो लोगों के लिए डेडिकेटेड किया है, यानी कि भाई रोशनी जी और गुलफशा जी के नाम डेडिकेटेड है। और एंजॉय करते रहिए, क्या सॉन्ग है। महेंद्र जी की तरफ से तारीफ आ चुकी है हमारी राम नरेश जी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं इस गाने के इस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश थी हमारे आसिफ अंसारी जी की हैदराबाद तेलंगाना से। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना है हमारे पास बिंदास, इम्तियाज जी की तरह ही एकदम बिंदास फरमाइश भी आई है, तो एंजॉय करते रहिए। और ओके, तुम्हारे पास तारीफें आ रही है रोशन जी की तरफ से, गुलफशा जी की तरफ से, हमारे आसिफ जी के लिए। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अपने आखिरी गाने को लेकर के। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

ये फरमाइश थी हमारे इम्तियाज जी की। फिलहाल के लिए घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का, तो आगे ट्यून करते हैं हमारे आखिरी गाने को, जो कि हमारे रफीक जी की और बबलू जी की पसंद पर है, ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। भले ही जाते जाते मैं आपके लिए इस गाने को पेश कर रही हूँ, लेकिन यकीनन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कल फिर मुलाकात होगी, वो भी कल आपसे मुलाकात होगी दो बार। पहले ही मुलाकात आपसे होगी हमारी सुबह सवेरे यानी गुड मॉर्निंग गोंडा में, और दूसरी मुलाकात होगी आपकी अपने कॉल ट्यून गोंडा में। तो कहीं मत जाइएगा, एंजॉय करते रहिएगा। फिलहाल अब चाहूंगी आपसे इजाजत। आई होप आज का शो आपको पसंद आया हो, आज आपने बहुत एंजॉय किया हो। अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा आपके अपने चैट बॉक्स के अंदर, और रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना एफएम रेडियो 11.6 एफएम पर, प्रोग्राम चल रहा था कॉल ट्यून गोंडा विद राजयोनति। बाय बाय, टेक केयर।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचे। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में। स्टे ट्यून्ड।

0: नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम Havells Galaxy, पता है एनवी ट्रेडर्स कचहरी रोड DM आवास के बगल गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। Havells Galaxy, आपकी अपनी शॉप।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
5: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

किसी से प्यार किया हो या ना किया हो, लेकिन किसी एक से तो ज़रूर किया है। वो कौन है? वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और नहीं है, वो आपका फेवरेट वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान 89.6 FM है। और उससे भी ज़्यादा आपने प्यार किया है अपने फेवरेट शो से, और उसी शो में से एक शो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी अपनी आरजे बीना, आपके वाले शो विज्ञानशाला के साथ, जहाँ बातें होती हैं ज्ञान विज्ञान और विज्ञान के प्रगति की। जी हाँ, साथ ही साथ क्यूरोसिटी, आपके सवाल और हमारे जवाब, आपकी जो लर्निंग है उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ही ज़्यादा कहते ना कि लॉजिकल बनाती है। क्या आपके पास भी हर बात का लॉजिक ढूंढने की आदत है? तो समझ लीजिए कि ये शो आपके लिए। तो कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, जल्दी से पहले अपने हाथ उठा के बता दे कि भाई हम तो आ गए यहाँ से मन में ये सवाल लिए। वैसे सवाल लेने से पहले मैं बहुत सारी ऐसी रोचक और थोड़ा सा डराने वाली जानकारी भी देना चाहूँगी, जिसने ना सिर्फ हमें बल्कि WHO को भी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात करने वाली हूँ। अब मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे वायरस की जिसने हाल ही में एक महिला के शरीर में गलती से प्रवेश ले लिया और उस महिला की मृत्यु हो गई। न्यूज़ में तो सुना ही होगा, लेकिन उस न्यूज़ की बात को मैं थोड़ा और व्याख्या करते हुए बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आप लोग भी उठ के आ जाएं और अपने सवाल ज़रूर वायरस और बाकी सबसे जुड़े हुए लेके आएँ। ये बात तो ऐसे न्यूज़ वाली है, लेकिन मैं आपको मतलब बात करूँ तो आप लोग को बताने वाली हूँ जीन्स के बारे में, और जीन्स में होने वाले म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन मतलब छोटे से चेंजेस या बदलाव, वो बदलाव जो हमारे शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हाँ ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, हमारे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो हमारे शरीर में म्यूटेशन की वजह से आए हैं। म्यूटेशन यानी कि हमारे बॉडी में जीन्स हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। सभी कहते हैं ना तुम्हारे जीन्स नहीं अच्छे, जीन्स तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, उनका जेनेटिक मतलब पूरा मेकअप बहुत अच्छा है। तो वो जीन क्या है, इसके बारे में बात हो चुकी है पहले भी, लेकिन थोड़ा सा बैकअप लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आप लोग एकदम एक्टिवेट हो जाएं एनर्जी के साथ, और कहते हैं ना कि सीखने का जो दौर है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिज्ञासा। तो देखते हैं आपकी जिज्ञासा कितनी है जानने की, ये तो आपके मैसेजेस ही बताएंगे। आपके मैसेजेस के बिना मेरी जो कहते हैं ना कि वाणी से नई चीज़ें बताने में थोड़ा समय लगेगा। वैसे मैं तो बताऊंगी बहुत सारे फैक्ट आज से जुड़े हुए, और ख़ास तौर पे उस वायरस के बारे में जिसने कहीं ना कहीं मेरी भी नींदें उड़ा दी हैं। पर क्या करें, नींदें उड़ाने से ज़िंदगी नहीं चलती, ज़िंदगी चलती है सीखने और सिखाने से। तो देखते हैं कौन है हमारे साथ, अभी तक तो कोई नहीं दिखा। पहले ये गाना एनर्जी बढ़ाने वाला, उसके बाद बातें।

देखिए, मन में आशाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो आशाएं तभी पूरी हो पाती हैं जब हमें ज्ञान हमारी ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए। मतलब ज्ञान हमारे पास अत्यधिक होगा तभी हम कुछ चीज़ें बेहतर रूप से कर सकते हैं। और चलिए मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ उस वायरस के बारे में, जहाँ पे जिस वायरस ने तहलका मचाने की कोशिश की है और हमें एक तरह से डरा दिया। तो मैं बात करना चाहूँगी रूस के एक रिसर्च लैब की, जहाँ पे एंटी प्लेग रिसर्च चल रही थी। प्लेग बीमारी जानते हैं जो कि वायरस से होती है, उसी के संक्रमण के मतलब जानकारी और उससे जुड़ी जो नई बातें हैं या उससे जुड़ी मेडिसिन की खोज के लिए वहाँ रिसर्च का काम चल रहा था। और उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको मतलब शॉक में डाल दिया है। तो सबसे पहले मामला समझिए क्या है, कि बात है 25 सितंबर की, जो कि एक प्रयोग के दौरान, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक महिला के हाथ से एक टेस्ट ट्यूब गिर के टूट जाती है, जिसमें न्यूमोनिक प्लेग फैलाने वाले बैक्टीरिया मौजूद थे। ठीक है, इसके कुछ समय बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जो उसके साथ काम कर रहे थे उन सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। करीब 200 लोगों की पहचान की गई है, उन्हें मेडिकल निगरानी में रखा गया है। अस्पताल में कुछ हिस्सों में क्वारंटीन की व्यवस्था कर दी गई है। राहत की बात यह है कि अब तक निगरानी में रखे गए लोगों में संक्रमण के लक्षण सामने नहीं आए हैं, उनकी जाँच के नतीजे भी नेगेटिव आए हैं अभी। लेकिन बात एहतियात की अगर करें तो कुछ अस्पतालों में संक्रमण से बचाव के उपाय भी शुरू हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि एक स्थानीय फैक्ट्री में कर्मचारियों के मास्क पहनने की जो व्यवस्था उसे अनिवार्य कर दिया गया है, और अमेरिका की भी इस चीज़ पे नज़र है। लेकिन बात करें अगर रूस की, तो रूस के यहाँ ये घटना हुई है तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं। प्लेग आपको पता है कि गंभीर बीमारी है जो कि यर्सिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होती है, और बैक्टीरिया मुख्य रूप से चूहों, गिलहरी और अन्य जानवरों और उनके शरीर में रहने वाले जो टिश्यूज होते हैं उनमें होती है। प्लेग इनके काटने और संक्रमित टिश्यू के संपर्क या न्यूमोनिक प्लेग के मामले से संक्रमित व्यक्ति की सांस से निकलने वाली बूंदों के जरिए हो सकती है, यानी कि एक तरह से यह वायरस की तरह ही खतरनाक बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया है जो कि हमारे फेफड़ों पर अटैक करेगा। अब आप समझ रहे होंगे न्यूमोनिक प्लेग यानी कि निमोनिया शब्द आते ही आपके दिमाग में सीधे जोर आना चाहिए कि आपकी जो सांस लेने की नली है ये उसके माध्यम से संक्रमण शुरू करते हैं। ठीक है, और ये रिसर्च सेंटर साइबेरिया, रूस के साइबेरिया इलाके में था जहाँ पे इस महिला की मृत्यु हो गई। अब जो आसपास के लोग हैं उनकी जानकारी के अनुसार बता दें कि असल में ये प्लेग एक गंभीर रूप और ठंडा लगने यानी कि आपको ठंड लगेगा, बुखार होगा, सर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, खांसी आएगी और सांस लेने में परेशानी होगी। मतलब इसके लक्षण भी साफ कह दिए गए हैं, जैसे कोरोना के थे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। समय पर पहचान और एंटीबायोटिक के माध्यम से इलाज संभव है, लेकिन खास बात तो ये है कि समय पर पता ही नहीं चलता है। ये बैक्टीरिया शरीर के किस हिस्से में हमला करता है, तो मैंने आपको बताया ना, ये ब्यूबोनिक प्लेग की अगर बात करूं तो ये सबसे पहले आपके पिस्सू के काटने के बाद बैक्टीरिया मरीज के लिम्फ नोड्स में अटैक करता है। लिम्फ नोड्स क्या होता है, जैसे आपके शरीर में, मैं बताऊं कि आपके शरीर में जो खून है वो पूरी की पूरी जो आपकी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज में दौड़ता है, लेकिन खून जो है आपके शरीर के कुछ छोटे हिस्सों में नहीं जा पाता है। उन छोटे हिस्सों में खून पहुंचाने के लिए खून अपना जो कुछ पार्ट है उसको फिल्टर कर देता है, मतलब नसों के बाहर निकाल देता है। और वो जो पार्ट है, जो लिक्विड बाहर निकलता है, वो क्या करें, वो जो है अगल बगल के टिश्यू के अंदर घुसता है, लेकिन वो घुसने के लिए कुछ पाइपों का प्रयोग करता है। उन पाइपों को लिम्फ कहते हैं या लिम्फ वेसल कहते हैं, और वो जो टिश्यू है, जो टिश्यू के अंदर लिक्विड है उसको लिम्फ बोलते हैं। बेसिकली वो लिक्विड जो है खून से रिसाव होके जो हमारे ऊतकों में
जो लिक्विड छूटता है खून से उसको लिम्फ बोलते हैं। और ये लिम्फ जो है शरीर के अलग अलग हिस्सों में मतलब अपना काम करता है, ऑक्सीजन बाकी सारी चीज़ों की जो डिमांड है वो पूरी करता है। ऑक्सीजन नहीं कहूँगी, ऑक्सीजन की डिमांड तो खून की जो जो सेल्स हैं यानी कि RBC से वही पूरी करती हैं, बाकी सारी चीज़ों की डिमांड पूरी करता है। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल उनको शरीर से इकट्ठा करता है। और नोड एक तरह का ढक्कन या एक तरह से कह दें कि गेट जो कि वेस्ट मटेरियल को वापस से खून में वापस भेजता है, यानी कि सरल भाषा में एक तरफ से एंट्री है और दूसरी तरफ से एग्जिट। तो लिम्फ नोड जो है वो एक तरह से एग्जिट गेट का काम करता है। तो सबसे पहले इसी नोड पे ही ये बैक्टीरिया अटैक करता है, यानी कि दरवाजे बंद, इम्यूनिटी ख़त्म और आप धीरे धीरे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता खो देंगे। ठीक है, इसके कारण आपके जांघों में, आपके गर्दन के किनारे, आपके जो भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपकी बॉडी फोल्ड होती है वहाँ पे गांठ जैसी बनने लगती हैं जिसके ब्यूबो बोलते हैं। और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि खांसने या छींकने के ज़रिए ये दूसरे लोगों को में फैल जाता है, ये फेफड़ों पर अपना संक्रमण करता है और इसमें बहुत तेज़ी से सांस रुकने लगती है जिससे जान जा सकती है। तो इसीलिए इसके बारे में बात की गई। अब मैं बात करना चाहूँगी, ये तो हो गई बैक्टीरिया की बात, तो सच्ची बात तो ये है कि उन 200 लोगों में अभी संक्रमण नहीं देखा गया है, लेकिन वो बैक्टीरिया है धीरे धीरे हमारे शरीर पे अटैक करता है। अभी उनकी बॉडी नेगेटिव आई है लेकिन पॉजिटिव आ सकती है, ऐसा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया है। तो हमें थोड़ा सतर्क रहना है, खाने पीने की चीज़ें, आसपास के पब्लिक एरियाज में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि मास्क वेयर करें, कोई बहुत ज़्यादा होगा तो जज ही करेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि अरे इनको बड़ा कोरोना फैल रहा है, ऐसे लोग कह देते हैं, लेकिन आप अपनी सेफ्टी रखिए। वैसे भी आपको पता है वायरल फीवर ये सब मतलब संक्रमण इससे तो है, तो इससे अच्छा है कि हम हर वक्त वियर करके रखें जब भी पब्लिक एरियाज़ में जाएं, स्पेशली हॉस्पिटल्स में या स्टेशन पे ऐसा क्राउडेड एरियाज़ में जाएं तो मास्क वियर करें, हाथ धुलने की आदत ज़्यादा से ज़्यादा डालें क्योंकि हर जगह हमारा हाथ पड़ता है। कभी रेलवे स्टेशन पे हमने चढ़ते समय रेलिंग को पकड़ा होगा, सीट पकड़ी होगी, खिड़की पकड़ी होगी, सब थूकते हैं खिड़की से। मैं आपको जनरल सिचुएशंस बता रही हूँ जहाँ जहाँ हमारे हाथ पहुँचते हैं। तो हाँ, बैग में एक छोटा सा सैनिटाइज़र रखने की मतलब मुझे लगता है कि ज़हमत कर लेनी चाहिए हम सभी को, सेहत है तो सब कुछ सही है ना। तो चलिए गाना सुनते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस बात को ध्यान से समझ जाओगे। तो एक गाना और फिर बात करते हैं म्यूटेशन की। म्यूटेशन यानी कि जीन में होने वाला छोटा मोटा परिवर्तन और हमारे लिए खतरनाक समस्या। जी हाँ,

कोई धुन सुनते सुनते अगर आपका मन बहल जाए तो बिल्कुल उसे बहलने मत दीजिए, क्योंकि आप कुछ सीखने जाने आए हैं। तो भाई जीन की बात मैंने की थी, और जीन हमारे शरीर में होते हैं जिसे गुणसूत्र कहते हैं, और हमारे बॉडी में हर कोशिका के अंदर हमारा शरीर जो है कोशिका से यानी कि सेल से बना है। अगेन स्वागत है आप सभी का, आप सुन रहे हैं विज्ञानशाला आर्जबीना के साथ, और मैं बात कर रही हूँ आज स्पेशली एक ऐसी चीज़ की जो आपको बहुत सारी जानकारी देगी और कुछ चीज़ों के लिए आपको जागरूक भी करेगी। अब किस चीज़ के लिए वो तो मैं अंतिम में बताऊंगी, पहले आप ये जानिए कि आपके शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट यानी कि एक छोटी सी इकाई यानी कि घर बनने के पहले आपने सबसे पहला काम किया होगा एक ईंट खरीदी होगी जिसको रखा होगा, फिर धीरे धीरे नींव बनी पूरा घर बन के तैयार होगा, तो वो सिंगल ईंट आपके घर की इकाई है, वैसे ही आपके शरीर की इकाई है सेल यानी कि कोशिका। अब आप सोच रहे होंगे एक कोशिका ने बॉस, देखो सबसे पहले आपका शरीर एक कोशिका था ना, आप अगर आंखें बंद करके इमेजिन करें तो आपका ये विशालकाय शरीर नहीं था, ये एक छोटी सी कोशिका थी। खुद को हम बहुत ज़्यादा बहुत तुरंत खान समझते हैं, हम ये हम वो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम एक छोटी सी कोशिका से बने हैं, ठीक है। विज्ञान हमें अहंकार करने का एक मौका नहीं देगा, क्योंकि विज्ञान हमसे चार कदम आगे चलता है। तो कोशिका से बना, और सोचिए उस कोशिका के अंदर ऐसा क्या था जिसने इतने बड़ा विशालकाय शरीर बना लिया, तो वो आंसर है डीएनए। डीएनए यानी कि आपको आपके शरीर में आधा डीएनए आपकी मम्मी ने दिया है और आधा डीएनए आपके पापा ने दिया है, और ये डीएनए हमारे कोशिका के अंदर अगर हम देखना चाहें तो क्रोमोसोम के रूप में दिखता है। अब क्रोमोसोम जैसे कि आपने धागा खरीदा, धागे की लच्छियाँ बना दी, वैसे ही डीएनए की छोटी छोटी लच्छे या कह सकते हैं कि गोले टाइप के हमारे शरीर में होते हैं कोशिका के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं क्रोमोसोम। और इन्हीं क्रोमोसोम इन्हीं डीएनए के ऊपर छोटे छोटे जैसे कहते हैं ना कोड, जैसे मोबाइल का आपके पासवर्ड है, वैसे आपके शरीर के हर करेक्टरिस्टिक का यानी कि आपके काले बालों का, आपकी भूरी आंखों का, आपके गोरे रंग का, आपके नाखून की शेप का, आपके नाखून के कलर का, आपके लीवर का, आपके किडनी का, आपके पेनक्रियास का, आपके बॉडी में आंख नाक कान सब का भाई कोड है, और वो कोड डिसाइड करता है आपका जीन। अब आप सोचेंगे जीन का मामला इतना सॉलिड है, जी हाँ, आपके शरीर में कुल 46 क्रोमोसोम है, कहें तो 23 जोड़ी यानी कि एक जीन जो है वो जोड़े में पाया जाता है एलील के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एलील। इतना ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं, आपको मैं बताने वाली हूँ म्यूटेशन। म्यूटेशन इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि वो हमारे नहीं पूरे के पूरे दुनिया में बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण भी बन जाता है, और कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें भी कर जाता है। कभी कभी म्यूटेशन छोटा मोटा होता है और वो हमें किसी तरह से परेशान नहीं करता है। अब म्यूटेशन क्या है, सरल भाषा में समझिए, म्यूटेशन एक छोटा सा बदलाव है, ठीक है, यानी कि सजीव या विकासशील वस्तु की मूल अनुवांशिक संरचना में परिवर्तन या उत्परिवर्तन को ही हम म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन अलग अलग तरह से हो सकता है, म्यूटेशन यानी कि केमिकल के द्वारा भी हो सकता है, और म्यूटेशन हमारे अंदर किसी तरह के मतलब फेर बदल के द्वारा भी हो सकता है। तो म्यूटेशन जो है हमारे शरीर में कई तरह से दिखता है। म्यूटेशन का कारण यूवी किरणें भी हो सकती हैं, म्यूटेशन का कारण आपके सिगरेट का धुआं भी हो सकता है, म्यूटेशन का कारण कोई केमिकल भी हो सकता है जो किसी चीज़ का आप सेवन कर रहे हैं लगातार। अभी हाल ही में न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि गोंडा शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक खांसी की दवा से नशा कर रहे हैं, तो वो केमिकल भी आपके शरीर में जाके म्यूटेशन करके बड़ी बीमारी को जन्म दे सकता है, ठीक है। वायरस भी है जो हमारे शरीर में आके म्यूटेशन कर सकता है। तो अब चलिए म्यूटेशन को थोड़ा और विस्तार में जानते हैं, म्यूटेशन के प्रकार को जानते हैं, और म्यूटेशन को डीकोड कर डालते हैं बैठे बैठे। हाँ हाँ बिल्कुल, समझिएगा कि म्यूटेशन जो है वो एक तरह से चेन है डीएनए के सीक्वेंस में। मान लीजिए कि आपने एक लंबी सी पाइप ली और उसको पीला रंग कर दिया, लेकिन किसी ने आके उसमें थोड़ा सा लाल कर दिया, वो छोटा सा लाल बदलाव जो है वो क्या है, म्यूटेशन है। ये तो मैंने सरल भाषा में समझाया, लेकिन डीएनए भी आपका लगभग 2.5 मीटर लंबा एक धागा है जो शरीर की एक छोटी सी कोशिका में होता है, और आपका शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं में से बना है, और लाखों करोड़ों कोशिकाओं में वो 2.25 मीटर का जो डीएनए है सब में मौजूद है। अब ये मत सोचिएगा किसी एक में, ना ना ना ना ना ना ना ना ना,
आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में डीएनए मौजूद है। इक्का दुक्का है जिनमें नहीं है उनके बारे में अभी जानने की जरूरत ही क्या है यार, ज्यादा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करनी, मतलब की बात जानते हैं। तो वो डीएनए में जो छोटा मोटा बदलाव है वही है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है वो डीएनए में एरर पैदा करता है जिसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं, और म्यूटेशन होने के कई कारण हो सकते हैं। अब उन कारणों की भी अगर चर्चा कर ली जाए तो बड़ी बात है, मतलब मन करता होगा ना जानने का ये म्यूटेशन का एक हो जाता है भाई, अपने को तो म्यूटेशन नहीं मांगता था, ये म्यूटेशन क्यों हुआ, आई डोंट लाइक म्यूटेशन, वाई वाई वाई। तो म्यूटेशन के कारण जान लेते हैं, व्हाट आर द कारण्स ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के अगर मुख्य कारणों की बात करूँ तो कुछ तो ऐसे स्पॉन्टेनियस होते हैं, ऐसे अचानक से हो गया भाई, बॉडी है काम कर रही है, डीएनए बन रहा है दिन भर लगातार। तो कुछ देखिए, खाना रोज मम्मी बनाती है, मम्मी स्वादिष्ट खाना बनाती है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कभी कभी तो मम्मी से खाना गड़बड़ा जाता है, कभी नमक तेज हो जाता है, या कभी थोड़ा चावल लग जाता है, या कभी रोटी मोटी नहीं थोड़ी पतली या नहीं थोड़ी मोटी। तो हैंड ही है यार, मशीन ही है। तो शरीर के अंदर भी कोशिका बनाने वाली जो मशीन है वो स्पॉन्टेनियसली कभी कभी डीएनए में दिक्कत ले आती है, उससे भी मतलब म्यूटेशन हो सकता है, यानी कि डीएनए में बदलाव आ सकता है। इसके अलावा कुछ आंतरिक कारण है भाई, कोई केमिकल बनना था लेकिन नहीं बना, हो गया म्यूटेशन, ठीक। इसके अलावा बाहरी वाले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो बाहर की चीज़ें हमारे बॉडी में म्यूटेशन क्रिएट कर रही हैं उनको रोकने का है, जैसे कि रेडिएशन। ये यूवी रेडिएशन हमारे शरीर में स्किन कैंसर करती हैं, और कैंसर होने की वजह है म्यूटेशन। इसके बाद में बात करना चाहूँगी, एक्सरेज भी हैं, ये भी हमारे बॉडी में कई प्रकार के म्यूटेशन क्रिएट कर सकती हैं, गामा किरणें भी हैं। इसके अलावा केमिकल की बात करूँ तो मस्टर्ड गैस हो गई, फॉर्मेल्डिहाइड हो गई, नाइट्रस एसिड हो गया, ये सारे केमिकल हैं जो हमारे शरीर में म्यूटेशन कॉज करते हैं। आगे बात करूं तो वायरस और बैक्टीरिया भी हमारे कोशिकाओं के जो गुणसूत्र हैं उसमें परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी हैं। अब बात करते हैं म्यूटेशन से होने वाली बीमारियों के बारे में, म्यूटेशन से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हो जाती हैं, और अगर हमें ना पता हो तो बच्चे इन बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। अक्सर डॉक्टर कहता है ना चौथे महीने में जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं कि आप एक टाइफा टेस्ट करा लीजिए, एक जेनेटिक डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ एक टेस्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, भ्रूण के पास जो वाटर सैक होता है उसमें से थोड़ा सा वाटर निकाल दिया जाता है, और उस पानी के अंदर होती है बच्चे की कोशिकाएं, उसे एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। अब आप सरल भाषा में पानी ही समझिए, उस एमनियोटिक फ्लूइड में होती हैं बच्चे की बहुत सारी कोशिकाएं, उन कोशिकाओं को निकाल के उनके गुणसूत्र की स्टडी की जाती है बाकायदा, जिससे हमें पता चल जाता है बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है। अगर होती है तो माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए उनका इलाज किया जाता है तत्परता से, और अगर नहीं हो सकता है तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की सलाह माता और पिता को दी जाती है, अन्यथा बच्चा उन बीमारी के साथ पैदा होगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी बड़ी बीमारी के साथ बच्चा पैदा हो और वो जिंदगी भर झेले आप परिवार होके, अब भाई कोई बच्चा आ जाएगा आंखों के सामने, तो आंखों के सामने तो आप उसको मतलब किसी भी तरह अपनी जान बान लगा के उस बच्चे की सेवा करेंगे, लेकिन जो चीज संभव नहीं है उसके पीछे हम क्यों परेशान हो। बेहतर है कि ऐसी परेशानी या ऐसे बच्चे को दुनिया में परेशान करने के लिए लाना, इट्स नॉट गुड। तो एक बच्चा जो अभी कोशिका के रूप में है उसे उसी समय मतलब टर्मिनेट कर दिया जाए तो सही है, और दवाइयों से भी सही हो जाता है। तो ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैं कुछ बीमारियों का जिक्र कर लेती हूँ जिनके बारे में आपको शायद ना पता हो। एक होती है बीमारी जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ये एक तरह से हमारे शरीर के एक छोटे से जीन में परिवर्तन आने की वजह से होती है, जिसमें जो लाल कोशिकाएं हैं, लाल कोशिका जो हमारी बॉडी में होती है जिसे RBC बोलते हैं, वो देखने में अगर माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो आपको दिखेगी जैसे बालूशाही होती है या पेड़े की तरह होती है, लेकिन अगर ये बीमारी हो जाए तो ये कोशिकाओं की शेप जो है वो बदल जाती है, जैसे कि वो हसिए के शेप में हो जाती हैं, इसीलिए इसको सिकल बोलते हैं, सिकल हसिया को कहा जाता है। सिकल की शेप की कोशिकाएं बन जाती हैं, और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पूरे शरीर में पर्याप्त तरीके से पूरी नहीं हो पाती। तो ये बीमारी भी होती है किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से। दूसरी बीमारी की बात कर लेते हैं, दूसरी का नाम है हंटिंगसन डिजीज़। ये एक मस्तिष्क की कोशिकाओं की बीमारी है जिसमें क्या होता है, CAG नाम का एक कोडॉन है जो कि रिपीट कर देता है, जिस वजह से हमारे जो दिमागी रूप से जो काम करने वाली
जो वो हमारी नर्व्स होती हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाती, मैसेज का आदान प्रदान नहीं कर पाती कहा जाए तो, एक कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, अब अगली बीमारी की बात कर लेते हैं। अगली बीमारी है कैंसर। कैंसर में BRAF नाम का म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमारे शरीर की कोशिकाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। ट्यूमर क्या है? हमारे शरीर की कोशिकाओं की अनियंत्रित ग्रोथ, डेवलपमेंट, उनकी संख्या बढ़ जाना। ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से होती है। अगला है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये एक तरह से एक जीन से होने वाली बीमारी है जो हमारे फेफड़ों और पाचन संबंधी बीमारियों को कह सकते हैं बढ़ावा देती है। बेसिकली बलगम बनने लगता है शरीर के अंदर और हर वक्त शरीर के फेफड़ों में पानी भरा रहता है। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करूँ तो इसमें मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। ये भी एक तरह का आनुवंशिक विकार है और चलने फिरने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बीमारियां थी जिनके बारे में बात की। तो सबसे ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम किसी भी तरह के बाहरी कारक को शरीर के अंदर ना आने दें जो हमारे शरीर में म्यूटेशन कॉज करे और हमें बीमार करे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप जागरूक रहिए, अपना ध्यान रखिए और विज्ञान शाला में हर मंगलवार को जुड़ते रहिए। कुछ ही देर में मिलते हैं आपके शो गुड़ना मैसे मसाला में। कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही सुनते रहिए।

0: बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
7: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
7: आज ही कॉल करें 9860 9761 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
6: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
7: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
8: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
8: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
9: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और

0: योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट ipbonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: अरे सुना?
3: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
10: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
11: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
10: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
11: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
10: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरननाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानश्री PG कॉलेज गोंडा।

बिल्कुल, इश्क कहूँ या कहूँ मोहब्बत, बस वो है सबसे खास, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है वो होता है बिंदास। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जिसके बारे में सुन के आपका दिल भी मन मोहक हो जाएगा। तो सुन के बताइए ये गाना कैसा है, और कहानी सुननी है तो फटाफट से अपना हाथ रेज करिए चैट रूम में।

चलिए आज चलते हैं इतिहास की ओर। शुभ संध्या, सभी का स्वागत है भाई इस प्यारी सी शाम में। और ये सफर सुरीला है, लेकिन इस सुरीले सफर में आज इतिहास के कुछ पन्ने उकेरे जाएंगे, क्योंकि आज एक प्रेम कहानी सुनाऊंगी, लेकिन इतिहास से लेके आई हूँ। सो आप लोग का भी मन कर रहा होगा जानने का कि कौन सी कहानी है, इतिहास से जुड़ी है तो क्या है। तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसी प्यार की कहानी के बारे में जिक्र करने वाली हूँ, जिसके बारे में इतिहास में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वैसे आपने अगर एंशंट हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आप, मुझे लगता है कि उस प्यार को, उस कहानी को शायद जानते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे शाहजहां मुमताज़ की कहानी तो नहीं मैं सुनाने वाली हूँ। नहीं नहीं नहीं नहीं भाई, मैं आज एक कहानी लेके आई हूँ जो भारत के इतिहास में एक छोटे से किरदार के रूप में रखी है। तो चलिए उस कहानी को जानने के पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ले चलती हूँ देश के इतिहास में। देश का इतिहास यानी कि वो इतिहास जिसे पढ़ने बैठो तो हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास किसी से कमज़ोर नहीं था। जितने प्रसिद्ध, जितने विकसित आज हम हैं, इससे कम हम पहले भी नहीं थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा होगा। मौर्य वंश में कौन आया, कैसे आया, कहां से आया, इसके बारे में आपको पता ही होगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूंगी मौर्य वंश पे भी। मौर्य वंश क्या था, कैसे था। तो सबसे पहले आप मौर्य वंश की बात करें तो इसके जो फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल था 223 BCE और 323 BCE से 297 BCE तक चला था। पीछे से जब हम टाइम लेते हैं तो वो उल्टा चलता है, जिससे कि वो जीरो पे आके ख़त्म हो और हमारा वाला समय शुरू हो जाए, तो इसीलिए उल्टा चलता है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इनके गुरु तो भाई जाने माने थे, विष्णु शरण, विष्णुगुप्त, कौटिल्य यानी कि चाणक्य इनके गुरु थे, जिन्होंने अपने बदले को पूरा करने के लिए इनको राजा बनाने का जो था ना जिम्मा ले लिया था। फिलहाल चाणक्य की बात करूँ तो इनकी बहुत सारी किताबें भी हुई हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। एक इंडिका नाम की किताब हुई है, एक अर्थशास्त्र नाम की किताब हुई है और एक मैक्थनीज नाम की किताब हुई है। अब आगे मैं बात करती हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो टाइम था उसको बहुत अच्छे से जिया। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे करके इनका विस्तार होता गया। इन्होंने अपने कहते ना कि कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, इनको कोई परास्त नहीं कर पाया। इन्होंने अपना देह त्याग किया था, इनको कोई मार नहीं पाया था, पता है आपको। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। फिर आ जाते हैं बिंदुसार। बिंदुसार के दो पुत्र हुए, सुषीम और अशोक। और अगर हमारे इतिहास की बात करें तो एक ऐसा राजा जिसने पूरे भारत पे एक समय में राज किया था, वो सम्राट अशोक थे। तो अशोक की बात अगर करें तो अशोक के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता होगा। अब आप कहेंगे कि मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ और भी बताना चाह रही हूँ। जी हाँ, मैं बात करना चाह रही हूँ कि ये जो सम्राट अशोक थे, इनका जो समय था वो ख़त्म हुआ। फिर इसके बाद जो है एक ऐसा समय शुरू हुआ जिसमें लोगों ने एक दूसरे को और विस्तार से जाना, यानी कि मौर्य वंश के ख़त्म होने के बाद एक और शासन शुरू हुआ जिसका नाम था, जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे किस शासन की बात करने वाली हूँ। जी हाँ, उस शासन का नाम था शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी ने साम्राज्य अपना चलाया और काफ़ी लंबा चौड़ा साम्राज्य चलने के बाद मैं बात करूंगी कि मौर्य वंश की समाप्ति हुई और फिर शुरू हुआ शुंग वंश। शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। फिर इनके बेटे ने, अग्निमित्र ने इनके वंश को आगे बढ़ाया।
अब आप सोच रहे होंगे यार ये इतिहास में आरजे मीना कहाँ गोल गोल गोल गोल घुमा रही है। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो इस चीज को समझ रहे पा रहे होंगे। तो मौर्य वंश के बाद आए थे शुंग वंश वाले, और शुंग वंश के संस्थापक थे आपके पुष्पमित्र, और पुष्पमित्र शुंग और इनके बेटे ने आगे इनके जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं इनके पूरे जो सम्राट को चलाया, और इनका नाम था अग्निमित्र। जी हाँ, अब अग्निमित्र का जो युद्ध हुआ एक राजा से हुआ जिसका नाम था यज्ञसेन। अब शुरू होने वाली है हमारी लव स्टोरी। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी कौन सी लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसके लिए मुझे इतना ज्यादा सोचना पड़ा। तो इनका जिससे युद्ध हुआ वो बेसिकली एक लड़की के पापा थे, और उस आदमी की बेटी से वो बेहद प्यार करते थे। ये लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, इसके बारे में कालिदास ने अपनी किताब में लिखा है। किताब का नाम तो मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले इस कहानी को आपको सुनाऊंगी। अब जिसने जिसने इतिहास पढ़ा होगा वो जरा जल्दी से उठ के मेरे सामने आ जाए, और जिसने अग्निमित्र के बारे में पढ़ा वो जल्दी से चैट रूम में मुझे बता दे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आरिफ, कैसे हैं आप? और बाकी सारे लोग कहाँ चले गए भाई? किसी को लव स्टोरी आज नहीं सुननी है क्या? लव स्टोरी सुनने के लिए तो यहाँ ताता लग जाता है, लेकिन आज की लव स्टोरी मैं सोच रही हूँ कि आप लोग की यस टाइप हो जाए फिर मैं सुनाना शुरू करूँ। लेकिन ये क्या, आप तो सोते हुए नजर आ रहे हैं। तो अग्निसेन और मालविका की अगर आपको लव स्टोरी सुननी है तो जल्दी से उठ के आ जाइए। अब अग्निसेन की बात करूँ तो अग्निसेन ब्राह्मण वंश के एक तरह से राजा थे, यानी कि ये पहला राजवंश था जो ब्राह्मण कुल से था। ठीक है, क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए, सब लोग आए, लेकिन अभी जो थे राजा ये ब्राह्मण कुल के थे। अब इनके बारे में मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अग्निमित्र और मालविका की लव स्टोरी सुननी है तो पहले आप लोग को यस टाइप करना पड़ेगा। और चलिए ये गाना सुनते हैं और सुन के देखते हैं कि ये कहानी आपको कैसे लगेगी।

अच्छा, एक गाना बड़ा वायरल हुआ है आजकल, सम्मी मेरी वार, मैं वारी मेरी सम्मी है। और ये गाना भी हमारे एक लव स्टोरी से निकला है। पहले ये गाना सुनिए, फिर इसके बारे में इसकी कहानी बताती हूँ। वैसे मैं कहानी सुना चुकी हूँ।

और सचिन राज चौहान हमारे साथ हैं और लिखते हैं, एक बार मेरे गुरु जी कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे थे। मैं क्लास 10th में था, तब पढ़ा था। जब आप बताती हैं, मैं थोड़ा थोड़ा याद आता है। उनके बारे में कुछ कहानी सुनना है। हाँ, अब सचिन ने लिख दिया है तो कहानी तो सुनानी ही पड़ेगी। कहानी बड़ी खास है। देखिए, कहानी इतिहास से जुड़ी है, इसीलिए मैंने कहा ना कि कहानी बड़ी खास है। तो इसे कहानी को नाटक का रूप दिया था कालिदास ने। उन्होंने एक पूरा नाटक लिखा था और उस नाटक का नाम बड़ा प्यारा सा था। किसी को याद है? कोई बताएगा? जी हाँ, उनका उस नाटक का नाम था, उनकी जो किताब थी उस किताब का नाम था मल्लिकाग्नि मित्रा, मालविकाग्नि मित्रा ऐसे करके नाम था। मुझे बहुत एग्जैक्ट नहीं याद है, मुझे कहानी याद है इसलिए मैं आप लोग को कहानी सुनाने जा रही हूँ। अब कहानी को प्ले के माध्यम से बताती हूँ। अब देखिए, महाराज अग्निमित्र ने जो कि विदिशा के राजकुमार थे, मैं बता दूं कि जैसे उनके पिता, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि पुष्पमित्र की जब मृत्यु हुई तो उनके बेटे यानी कि अग्निमित्र शुंग जो हैं वो राजा बन गए। और उस समय उन्होंने मतलब अपनी जो राजधानी थी उसे विदिशा बना दिया था। लेकिन मौर्य वंश के समय में देश की राजधानी जो थी वो विदिशा नहीं, पाटलिपुत्र थी। तो विदिशा के वहाँ मतलब वो अपने, देखिए राजा महाराजा लोग कहाँ रहते हैं, अपनी कैपिटल में रहते हैं, तो अपनी कैपिटल यानी कि वहीं पर रह रहे थे। और फिर इनका जो युद्ध हुआ यज्ञसेन के साथ हुआ और यज्ञसेन के राजा को हरा दिया और वो वहाँ पे मतलब अपना गए। और उस दौरान उन्होंने देखा कि वहाँ राजा के यहाँ एक लड़की जो थी वो बड़ी सुंदर सी दिख रही थी इनको। और इन्हें बड़ा डाउट हुआ कि यार ये रानी के बगल कौन लड़की है, ये कोई नौकरानी वोकरानी टाइप की लग रही है तो ऐसा कुछ है। तो मैं कहानी को आपको एक नाटक के माध्यम से बताऊंगी जिसमें राजा अग्निमित्र हैं, मालविका हैं जो कि रानी धारिणी, जहां पे ये जीत के आए हैं अपना युद्ध युद्ध, वहां की दासी बनी हुई हैं क्योंकि युद्ध के दौरान पासी के एक और राजा वो भी अपनी जान बचा के भागे थे और वहीं की ये राजकुमारी थी और ये यहाँ दासी बन के रह रही थी जो कि दासी के रूप में है। गौतम जो कि विदूषक है, यानी कि अग्निमित्र का जो है वो भाई दोस्त है, ठीक है, यानी कि फ्रेंड होता है ना, लव लव स्टोरीज को अक्सर दोस्त लोग ही पूरा कराते हैं। और यहाँ ईरावती है जो कि राजा की छोटी ईर्ष्यालु रानी है। गणदास जो है वो मालविका के नृत्य गुरु हैं। अब देखिए क्या होता है कि विदिशा महल का अंदरूनी भाग दिखाया जा रहा है, राजा अग्निमित्र और उनका विदूषक गौतम वहीं बैठे हुए हैं और रानी धारणी के महल के चित्र के पास एक लड़की खड़ी है और वो बड़ी सुंदर सी है। और अग्निमित्र कह रहे हैं कि रानी धारणी के चित्र के पास एक पीछे लड़की खड़ी थी, वो कौन है? गौतम ने कहा, महाराज कोई साधारण सी दासी नहीं है, उनका नाम मालविका है। रानी ने उसे अपने खास दासी बनाया हुआ है, मतलब नॉर्मल दासी नहीं है वो। उसे नृत्य सीखने का बड़ा शौक है और गणदास के पास भेजा है उसे। रानी उसे आपसे छुपा कर रखना चाहती है लग रहा है। अग्निमित्र को बड़ा डाउट हुआ, तो फिर मैं उसके सामने कैसे देखूं, कोई उपाय निकालो, कैसे मिलूं उससे? तो जो दोस्त है इनका गौतम जो है वो एक उपाय निकालता है, कहता है एक उपाय है महाराज, हम गुरु गणदास और उनके प्रतिद्वंदी गुरु हरदत्त के बीच एक नृत्य प्रतियोगिता रखवाते हैं। इस तरह मालविका को राजा के सामने नाचना ही पड़ेगा। आप लो मतलब मालविका जिससे डांस सीख रही है उसी गुरु के सामने एक प्रतिद्वंदी खड़ा कर दोगे तो वो अपना पीछे नहीं रहेगा भाई, वो भी अपने एक कंटेस्टेंट को निकाल के रख देगा और इसी समय ये मालविका को आमने सामने देख पाएंगे। अब दरबार का रंगमंच सज गया, रानी धारणी राजा और दरबारी बैठ गए। मालविका मंच पर आती हैं, म्यूजिक बजना शुरू होता है, गौतम की योजना सफल होती है, मालविका डांस करना शुरू कर देती हैं। राजा अग्निमित्र
मालविका को देखते रह जाते हैं। ओहो, चित्र तो इसके सौंदर्य की केवल अंश मात्र है, ये तो साक्षात अप्सरा है। क्या बात है, क्या बात है। अब मालविका नृत्य करते हुए राजा से नजरें मिलाती है, उसके मन में भी राजा के लिए प्रेम जाग उठता है। अब नैन मटक्का ऐसे होता रहता है। रानी धारणी को राजा की आंखों में मालविका के लिए थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखता है। वो कहते बस कीजिए, आप क्या उस दासी को देखते रहते हैं, बस कीजिए, ये प्रतियोगिता यहाँ समाप्त होती है। मालविका तुम अंदर जाओ। अब क्या हुआ, महल का प्रेम दवन यानी कि बगीचा है, अशोक के पेड़ के नीचे मालविका अकेली खड़ी है, उदास होकर, हे भगवान, मैं एक मामूली सी दासी होकर राजा से प्रेम कर बैठी हूँ, ये प्रेम मुझे कहीं भारी ना पड़े। ये कहते हुए वो सोच रही है, यार क्या होगा यार, मैं मतलब मुझे वो राजा तो पसंद आ गया है, लेकिन मैं प्यार उससे कर नहीं सकती, मैं यहाँ दासी हूँ, दिस इज नॉट गुड। पीछे से अग्निमित्र आ जाते हैं, वो इसकी बात सुन लेते हैं, कहते हैं तुम अकेली नहीं हो मालविका, इधर भी तड़प एकदम बेकरार है, मतलब मैं भी एकदम तुमसे प्यार करता हूँ यार, ऐसा कोई इजहार कर दे कि आपके सामने सामने वाले की फीलिंग भी आ जाए और झट से आप भी फीलिंग लाके परोस दें। कि कोई कहे मुझे इडली खानी और आपके हाथ में इडली हो, क्या मजेदार सीन होगा। मालविका शर्माने लगी और नजरें झुका के कहने लगी, अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा, और महाराज से थोड़ा दूर हो गई। अग्निमित्र भाई रोमांटिक मिजाज, उन्होंने फटाक से मालविका का हाथ थाम लिया, बोले नहीं, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। तभी वहां छोटी रानी आ गई ईरावती, क्रोध में आके, अच्छा तो यहाँ गुप्त प्रेम लीला चल रही है, होती नहीं औरतें जलनखोर। महाराज आपको अपनी रानियां कम अच्छी लगती हैं क्या, आपको अपनी रानियों का सम्मान नहीं है, जो आकर यहाँ रानी धारणी की दासी के साथ यहाँ प्रेम लीला चाह रहे हैं। अब अग्निमित्र बेचारा क्या करे, ईरावती मेरी बात तो सुनो। ईरावती गुस्से में जाती है और रानी धारणी को बता देती है सारी बात, और ये देखते ही जो रानी की जो क्या कहते हैं दासी यानी कि मालविका है, वो और डर जाती है, और उसी समय रानी धारणी आती है जिसकी वो ऑलरेडी दासी थी। उसने कहा कि तुम यहाँ मतलब अपनी खूबसूरती से हमारे घर के मर्दों को अपना बना रही हो, कितनी बेशरम हो तुम, ये हो वो हो, मतलब दुनिया भर की बातें, और क्या होगा इसके बाद आप तो सोच ही सकते हैं। तो चलिए एक गाना सुनिए और फिर हम चलते हैं रानी यानी कि दासी मालविका और रानी धारणी के बीच में क्या हुआ आगे, ये जानने के लिए ये गाना सुन के हम आगे बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी डरावनी हो चुकी है। और आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना मालविका के लिए।

0: साहब, मैंने आपसे कहा ना, जिसने मेरी जान बचाई वो एक मसीहा था। मैं उसको पहचानने में गलती नहीं कर सकती।
1: एक बात बता,
2: डिटेल्स लिख।
1: बूढ़ी हो या जवान, कोई भी औरत तेरे खिलाफ मुंह क्यों नहीं खोलती? तेरे बदन के किसी खास जगह पे दिल है क्या?
3: भागले अंदर कर।

चलिए चलते हैं कहानी के अगले हिस्से को जानने के लिए। कहानी अगली बड़ी दिलचस्प होने वाली है। जी हाँ, आपके दिल को एकदम मतलब खुश कर देने वाली। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम मालविका गनी मित्रम की कहानी सुन रहे हैं, तो कहानी का पूरा हिस्सा जानने का हक तो हमारा बनता है ना। तो चलिए चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं यार, बता देते हैं आगे क्या हुआ। आगे भाई बड़ी खास सी कहानी में, जैसे कि रानी धारणी को जैसे पता चला कि मालविका का हाथ पकड़े महाराज घूम रहे हैं, उनके बाग बहुले हो गए, मतलब उन्होंने तुरंत उसे काला पानी की सजा तो नहीं सुनाई, लेकिन हाँ उसे पाताल यानी कि जेल में भेज दिया और पहरेदारों को हुक्म दिया कि बिना मुहर के इनको छोड़ना नहीं, यानी कि मेरी अंगूठी जब तक तुम्हें नहीं मिलेगी छोड़ने के लिए, तब तक नहीं छोड़ना। फिर राजा अग्निमित्र, अरे भाई गौतम कुछ कर, काल कोठरी से कैसे निकालूं मैं। तो गौतम ने कहा, योजना तैयार है महाराज, आपका दोस्त किस काम आएगा, बस तमाशा देखिए। गौतम बाहर गया बगीचे में और जहरीले सांप काटने का एक्टिंग करने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ, मैं मरने वाला हूँ। रानी धारणी घबरा कर बाहर गई, वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य जी ने कहा कि जहर को उतारने के लिए सर्प यानी कि मुद्रिका आपके हाथ में जो है उसी की जरूरत पड़ेगी। और ये देख धारणी ने तुरंत अपनी अंगूठी उतार के मतलब गौतम को दे दी और अंगूठी से उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की और उसी समय उसका अंगूठी को जेल के पहरेदारों के पास भेज दिया और पहरेदारों ने मालविका को आजाद कर दिया। राजा मालविका से फिर चुपके से मिलते रहे, दोनों चुपके चुपके इश्क गोते लगाते रहे, कब प्यार परवान पे पहुंच गया पता ही नहीं चला। फिर धीरे धीरे एक युद्ध जो उनका पास के राजाओं से चल रहा था उस पर उनकी विजय हुई, क्योंकि वहां सेनापतियों को भेजा था और संदेशवाहक ने आके बताया, महाराज अग्नि मित्र की जय हो, विदर्भ के युद्ध में आपकी सेना जीत गई, हम वहां से छुड़ाई गई दो गायिकाओं को लेके आए हैं। दो गायिकाएं दरबार में कदम रखती हैं, मालविका को देखकर चौंक जाते हैं, अरे ये तो राजकुमारी मालविका है। संदेशवाहक देख के कहता है, रानी धारणी मालविका कोई दासी नहीं है? जी हाँ, ये राजा माधो सेन की बहन और राजकुमारी हैं। संदेशवाहक ने कहा, रानी साहिबा जब विदर्भ पर हमला किया था हमने तो राजकुमारी खो गई थी, भटकते हुए शायद ही आपके महल आकर दासी बनकर छुप गई थी, इसीलिए ये मिली नहीं। रानी को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि एक राजकुमारी को उन्होंने दासी बना के रखा और माफी मांगी और अग्निमित्र से भी माफी मांगी कि महाराज ये मालविका आपकी रानी बनने के लायक है, इनका विवाह आपसे होना चाहिए। तभी रानी धारणी ने दोनों को आज्ञा दी और राजा अग्निमित्र ने भी धन्यवाद कहा कि आज हमारी प्रेम कहानी पूरी हुई, राजा और मालविका का मिलन हो गया ऐसे और दोनों प्रेम के बंधन में बंध गए। वैसे आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है कि राजा और रानी का विवाह होना चाहिए था या नहीं, और अगर होना भी चाहिए था तो कुछ इस तरह से। वैसे ये कहानी अमर कहानियों में से एक है, क्योंकि ये राजा अग्निमित्र की कहानी है और इसे बाकायदा लिखित रूप में पाया गया है, कालिदास ने एक ड्रामा के रूप में से लिख के तैयार किया था। तो चलिए सुनते हैं एक राजा और रानी वाला गाना।

वैसे आप लोगों ने बताया नहीं कि इतिहास से आप लोगों ने क्या क्या चुरा के पढ़ा है, या फिर बस एग्जाम में नंबर लाने के लिए पढ़ाई करते थे? जल्दी से बताइए। फिलहाल ये कहानी सच्ची मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी हो कभी या ना पढ़ी हो, जो भी है दोनों ही ये चीज रोचक बनाते हैं कि ये कहानी खास है।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8072-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
6: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप, पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट ippbonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
4: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं, सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
7: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
8: मतलब?
7: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
9: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
10: शहर की धड़कन महसूस हो तो लगेगा कि आप बस कुछ खास ही सुन रहे हैं, यानी कि आरजे बीना वाला शो गोंडा मैसेज मसाला। आरजे बीना वाला, और आज लव स्टोरी की दुनिया में आपने एक ऐसी कहानी सुनी जिसके बारे में शायद कभी सुना था, लेकिन यार जब एक साथ कई सारे बढ़िया बढ़िया सा मतलब गाने सुनने को मिल जाते हैं, लाइफ एकदम झिंगा लाला सी हो जाती है। नहीं, और आज मैं कुछ एल्बम सॉन्ग्स आपको सुनाने वाली हूँ, लेकिन हाँ, समी मेरीवाल की अगर बात करूँ, ये जो गाना चला है इसमें एक माँ अपनी बेटी को कहती है कि मैं वारी हूँ तुम्हारे, मेरी बेटी, और तुमने पहली बार प्यार किया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और महिवाल नाम के एक लड़के से उनको प्यार हो जाता है समी को, वैसे ये लव स्टोरी मैं बता चुकी हूँ। तो माँ अपनी बेटी को डेडिकेट करती है लाइन्स इसमें, तो ये है मेनली गाना। तो फिलहाल मैं आपको सुनाती हूँ ये प्यारे प्यारे गाने, अगर आपको अच्छे लगें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये टॉप 10 लव सॉन्ग्स आज की शाम के लिए एकदम सुपर हैं। वैसे लव स्टोरीज़ की बात करूँ तो हर किसी की अपनी अपनी लव स्टोरी होती है, लेकिन यार हर लव स्टोरी हर अंदाज में कह पाना मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे अपनी लव स्टोरी किसी के सामने बयां करना, ओ माय गॉड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो चलिए थोड़ा थोड़ा प्यार सुनते हैं स्टीबिन का, और सुन के हम भी अपने प्यार को और मुकम्मल टाइप का करते हैं। एंड यस, आज चैट रूम में मुझे थोड़ी हलचल कम दिख रही है, क्यों भैया, आज सब लोग कहाँ कहाँ बिजी हैं। हाँ, थोड़ा सा मतलब इंगेजमेंट्स हो जाती हैं, लेकिन कल के बारे में बता दूँ कि कल अंताक्षरी वाली इवनिंग है, तो किसी तरह का कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना होगा, क्योंकि कल आपके साथ धमाल कर रहे हैं। यस, चलिए मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।

जब प्यार की कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं तो उन इंतज़ार के पलों को गिनते गिनते छालों के निशान पड़ी जाते हैं। क्या आपने भी किसी का इंतज़ार किया है मोहब्बत में, किसी चौराहे पर, किसी मैसेज का या किसी गुलाब का? अगर हाँ तो चैट रूम में गुलाब दिखा देने पड़ेंगे।

भाई ये गाना है टूटा तारा टूटा तारा, लेकिन टूटे तारे के साथ मैं आपको बता दूं ये लेट में आने वाले लोगों को मिलेगी सजा। आशु जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अनुष्का। और आज गाने आपके फरमाइशी मैं प्ले करूंगी, तो देखिए कैसे गाने प्ले होते हैं। आज गाने भी आप लोग के मैं अपने हिसाब से प्ले करूंगी। फरमाइश होगी दिल मेरा बजाऊंगी मैं दिल तेरा, फिर आपको पता चलेगा कि क्यों होता है ऐसा, इश्क में क्यों हर चीज बदल जाती है। आप सोचते रह जाएंगे और जिंदगी यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी एक गाने की तरह। फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, आपको एक बढ़िया सा गाना सुनाती हूँ और इस फास्ट फास्ट सॉन्ग के साथ आप भी चलिए पार्टी मनाइए और अपने अच्छे अच्छे गाने फरमाइश करिए। मैं चाहती हूँ कि आज के गाने ऐसे हों कि सुन के एकदम मतलब दिलवा झूम झूम झूम जाए। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आपके साथ।

0: दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
1: Oh my God, this is original.

कोई घर दिलाए या ना दिलाए, लेकिन आपकी फरमाइश पूरी करने वाली आरजुदी ना यहाँ मौजूद है। और बहुत बुरा हूँ, किसी अपनों से सुना हूँ। अरे नहीं नहीं, किस अपने ने आपसे कहा कि आप बुरे हैं? फिलहाल आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप यहाँ हमारे साथ हैं। और हमारे साथ ये गाना तो नहीं था, बहुत बुरा हूँ किसी अपनों से सुना। ये गाने की लिरिक्स तो नहीं, मैंने ये गाना वैसे नहीं सुना।

0: ऐसी शायरी बन जाती है अर्जुबीना की तरफ से। ये फरमाइश प्ले हो चुकी है, ये है आशु जी की फरमाइश। अपनी फरमाइश लगातार कर रही रहिए और गाने के साथ। अभी मैं मार्केट आई हूँ। ओहो, मार्केट गई थी तो क्या करें हम, आपके मार्केट जाने से मेरी कहानी नहीं रुकी। आपको कहानी सुनते हुए जाना चाहिए था और कहानी मार्केट वाले को भी सुनानी चाहिए थी। फिलहाल चलिए अपनी पसंद का गाना सुनिए और बताइए कैसा है।
1: वहाँ क्या कर रही हो चांदनी? तुम्हारा खाना लग गया है, आओ

भाई ऐसे ना कहो, नहीं जीना, एक गाने की लिरिक्स ऐसी खतरनाक हो जाएंगी तो भाई कोई सावन के महीने में भाई कैसे मतलब दिल लगाएगा। तो धर्मेश जी की फरमाइश चलिए सुनते हैं, देखते हैं जनाब को कौन सा किसके लिए जल्दी बताइए किससे मिलने जाने वाले हैं। और फिलहाल गुजिया का तो मौसम नहीं है, लेकिन चलिए गोंडा में सब अवेलेबल है तो गुजिया वजिया लेके जाइए, लेकिन हाँ संग हमको भी खिलाते जाइएगा क्योंकि मीठा हम भी खाना पसंद करते हैं बॉस। तो फिलहाल सुनते हैं धर्मेश की फरमाइश का गाना, बड़ा प्यारा सा, और उसके बाद सुरेंद्र गौर आज चौकी से सुनेंगे अपना गाना। आप लाइव हैं, सुन रहे हैं अपना शो गीत आपके नाम से आरजे बीना के संग। मिलना है हमें।

तो लिसनर्स, अगले गाने को सुनने की बारी है और देखते हैं कौन सुनने वाला है अपनी पसंद का गाना। और जी हाँ, अभी हमने सुना है धर्मेश की फरमाइश का गाना, अब बारी है गाना सुनने की सुरेंद्र जी की, बदल गई ये दुनिया। वाह वाह, क्या बात है, सच्ची दुनिया बदल ही जाती है समय के साथ, बस खुद मत बदलिए तभी तो हम खुशी से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि कोई ना बदले। जैसे मौसम की तरह भी लोग बदलते हैं, एनीवे बदलने वाले लोगों को

आपने सुना ये प्यारा सा गाना सुरेंद्र जी की फरमाइश पे। अब अगले गाने की बारी है, सोनिया तिवारी का गाना है। देखते हैं कौन सा गाना है। बड़ा प्यारे प्यारे गानों की फरमाइश आ रही है। वैसे मैं चाहूंगी आप लोग रेट भी करिए। चिटियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे, ऑफ कोर्स चिटियां कलाइयां तो भाई लड़कियों की होती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन चिट्टी का मतलब गोरी होता है। वैसे काली भी कलाइयां होंगी तो बढ़िया ही लगेगा वैसे कोई बात नहीं, थोड़ा सा रंग को लेके ऑब्सेशन है।

0: हटो हटो हटो हटो हटो।
1: अरे देखो मेरे पति को क्या।
0: आप फिकर मत करिए, मैं हूँ ना।
1: जरा देखो तो सही।
2: अरे क्या हो रहा है?

वाला सीन बहुतों के साथ होता है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। यार ये वाला बहुत सही होता है। फिलहाल औरों की फरमाइश तो मुझे दिख नहीं रही, लेकिन हाँ एक प्यारी सी फरमाइश हमारे एक श्रोता की आई है, चलिए हम उसे सुन लेते हैं। बड़ी प्यारी सी फरमाइश है, वो है हमारी पूजा जी की। पूजा जी सुनना चाहती हैं गाना कसूर से, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। और इसी के साथ आगे की फरमाइश सुनते रहिए अपने आरजेस के साथ।

0: वकील साहब, अगर ये केस इसी तरह चलता रहा ना तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा।
1: हुकुम, एक बार आप विक्रम शाह से मिलकर बात कर ले, वकील साहब का भी यही कहना है।
0: आखिर ये विक्रम भाई साहब चाहते क्या हैं? बात करो उनसे।

जी हाँ, बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ। जी हाँ, मैं हूँ मनु, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल आप सभी के शो फरमाइशी में। और अब चलते हैं भाई जेके शाह जी की फरमाइश। और बहुत ही प्यारी सी फरमाइश जेके शाह जी की है, तुमने मुझे देखा हो के मेहरबान।

जी हाँ, अगली फरमाइश है भाई हमारे बहुत ही प्यारे से श्रोता, बहुत ही मीठा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, और फरमाइश है श्री विजय पाल यादव जी की, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो। बहुत ही प्यारा सा गीत है विजय पाल यादव जी की फरमाइश।

है ना बुरा कहना है ना बुरा देखना है और न किसी की बुराई की तरफ जाना है। बहुत ही प्यारा सा गीत ये श्री विजय पाल यादव जी की फरमाइश। और अब चलते हैं भाई अपनी बहुत ही प्यारी श्रोता निशा जी हैं, वो मेरे सनम मेरे हमदम चाहता रहूं जन्म जन्म। बहुत ही प्यारी फरमाइश निशा जी की।

अब चलते हैं भाई अगली फरमाइश भाइयों के भाई निब्बल भाई की। बहुत ही प्यारी सी फरमाइश रफ़ी के गले से निकला हुआ ये कायनाती गीत। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की फिल्म का नाम चौकीदार।

जी हाँ बिल्कुल, खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, बहुत ही प्यारी सी फरमाइश ये हमने निब्बल भाई की पूरी की। अब चलते हैं अपने रफीक भाई उर्फ जुग्गू जी की तरफ, और गीत है तौबा कैसे हैं नादान घुंघरू पायल के। बहुत ही प्यारा सा गीत ये, लता मंगेशकर की प्यारी सी आवाज़। आइए आपको ले चलते हैं रफीक भाई जी की फरमाइश पर।

जी हाँ, घुंघरू पायल के क्या नकल जाए, लेकिन जी हाँ आप चलते हैं, आपको ले चलते हैं भाई। बहुत ही प्यारा सा गीत हमने सुना निब्बल भाई और रफीक भाई जी की फरमाइश पर। अब चलते हैं दर्द कुमार जी की तरफ। भाई हमारे दर्द कुमार जी, और एक फिल्म आप सभी ने देखी होगी, हाथी मेरे साथी, बहुत ही प्यारी फिल्म। और उस गीत के लगभग सभी गीत गाए थे किशोर कुमार जी ने, लेकिन एक गीत ऐसा आया जहाँ पर यह हुआ कि नहीं, इस गीत को किशोर कुमार जी नहीं गाएंगे, इस गीत को गाएंगे कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब। और यकीन मानिए कि वो गीत हाथी मेरे साथी का सबसे प्यारा गीत रहा। जी हाँ, नफ़रत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, इस झूठ की नगरी से तोड़ के ना ताजा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार। क्या बात है, क्या दिशा है, क्या सोच है। आइए चलते हैं दर्द कुमार जी की इस प्यारी सी फरमाइश, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में, फिल्म हाथी मेरे साथी का वो इकलौता गीत जो गाया था कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी जी ने।

जी हाँ, एक बार पुनः से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमन्दन और नमन। जेके शाह जी लिखते हैं कि भाई, तेरी मुस्कान से मेरी दुनिया रोशन हो जाती है, तेरी एक झलक से हर खुशी मिल जाती है।

तो बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया, क्या बात है भाई। और हमारे बहुत ही आदरणीय श्री अरविंद पाठक जी नारीगण असली से हमारे समक्ष उपस्थित हैं, आपको प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और मुझे याद है कि एक बार पाठक जी ने हमको फ़ोन किया था फरमाइशी गीतों पर, और उन्होंने एक गीत हमसे भिजवाया था। वो गीत मुझे अभी भी याद है, वो मेरे जहन की वादियों में गूंज रहा है। और वो गीत है, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। फिलहाल चलते हैं राधा कश्यप जी की फरमाइश पर, आपको ये प्यारा सा गीत सुनाते हैं, और इसके बाद हम वो गीत सुनेंगे जो पाठक जी ने हमसे सबसे पहली बार सुना था, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले। अगर हमारी याददाश्त ठीक ठाक हो तो जरा पाठक सर जी हमको बताइए कि हम सही कह रहे हैं या हमको कुछ गलतफहमी हो रही है। फिलहाल राधा कश्यप जी की फरमाइश पर ये गीत।

तो गए थे अपनों का सहारा न हुआ, ये बहुत ही प्यारा सा गीत हमने सुना। और अब बढ़ते हैं भाई उस लम्हे की तरफ, उस पल की तरफ जब श्री अरविंद पाठक जी ने हमसे पहली फरमाइश की थी, और वो मुझे याद है, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। ये पहली फरमाइश जब मैं रेडियो पर आया था, और आज पुनः उनको देखकर वो पल याद आ गए। हमारे साथ जेके शाह जी लिखते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। जब बात पत्थर और दिल की होती है साहब, तो मैं तो ये कहता हूं कि जब तन्हाइयों की रास्त में घर बना लिया, टूटा सा अपना कोई मुकद्दर बना लिया,

जब से सुना है कि यहाँ पत्थरों को पूजते हैं लोग, हमने इस दिल को पत्थर बना लिया। तो जी हाँ, ये दुनिया अगर पत्थर की को पूजती है तो चलिए ठीक है, हम अपने आप को थोड़ा सा पत्थर बनाते हैं। और अब चलते हैं भाई हमारे पाठक जी को, जो बहुत ही प्यारा गीत पसंद है, आज वो महफिल में आए हैं और ये गीत हम करते हैं श्री अरविंद पाठक जी के नाम।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत ये श्री अरविंद पाठक जी ने हमको सुनाया था। और अनिल शास्त्री जी, चरण स्पर्श दादा प्रणाम करते हैं आपको, क्या शेर है। और इसके पश्चात जेके शाह जी लिखते हैं, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। नहीं साहब, अब मैं तो आपकी इस बात पे कहूँगा कि मैं उसकी आंख में एक पल समा के देख सकूं, मैं उसकी आंख में एक पल समा के देख सकूं, ऐ काश मैं खुद को सपना बना के देख सकूं, मेरे खुदा कल मुझे इतना हौसला देना, बिछड़ते वक्त उसे मुस्कुरा के देख सकूं। जी हाँ, वास्तव में इंसान मोहब्बत कर लेता है, उससे मोहब्बत हो जाती है, लेकिन साहब मोहब्बत की यादें हमेशा रहती हैं। हमारे साथ अनिल शास्त्री जी हैं, और अनिल शास्त्री जी की बहुत ही प्यारी सी फरमाइश है, क्या बात है भाई, बहुत ही पर्दे पर है राजेंद्र कुमार, और राजेंद्र कुमार के गले पर एकदम आवाज़ फिट होती है कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी की। और मुझे लगता है कि बहुत ही प्यारा सा ये गीत जो आपने भेजा है हमको, जी हाँ, श्री अनिल शास्त्री जी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

0: हाले दिल उनसे मेरा मुझको ही कहने दीजिए, हाले दिल उनसे मेरा मुझको ही कहने दीजिए, आप जाने क्या कहेंगे, आप रहने दीजिए। लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आँखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर्ड डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 92-60-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये गोंडा ही नहीं, अब बन चुकी है हमारे और आपके दिलों की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। आज जिस शायर को आपके बीच लेकर आए हैं, जिस कलमकार को आपके बीच लेकर आए हैं, उनकी गजलें उनके शेर तो न जाने कितने गजलकारों ने उनकी गजलों को गाया, और कुछ शेर तो उनके ऐसे हैं जो फिल्मों में भी इस्तेमाल किए गए। उन्होंने कहा कि उसी को तोड़ रहा है जिसे बनाना है, उसी को तोड़ रहा है जिसे बनाना है, उसे पता ही नहीं कैसे घर चलाना है। उसी को तोड़ रहा है जिसे बनाना है, उसे पता ही नहीं कैसे घर चलाना है। मैं उसकी कमियों पर उंगली उठा नहीं सकता, मैं उसकी कमियों पर उंगली उठा नहीं सकता, मुझे तो आखिरी दम तक उसे निभाना है। रिश्तों का एक कड़वा सच है, मुझे लगता है कि अगर आप रिश्ता निभाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को बनाए रखती हैं, और अगर आप रिश्ता समाप्त करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपका POV क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप किस नज़रिए से देखते हैं रिश्तों को, शायद ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जब निभाना नहीं होता ना इंसान को रिश्तों को, तो कमियां नज़र आती हैं, और जब निभाना होता है तो खूबियां ही खूबियां नज़र आती हैं। मैं उसकी कमियों पर उंगली उठा नहीं सकता, मुझे तो आखिरी दम तक उसे निभाना है। कोई भी शाख कभी मिल्कियत नहीं होती। हम लोग जिस घर में हैं साहब, वो घर पहले किसी और का था। वसीम बरेली साहब ने कहा था कि कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा हो, आज इस घर पे जो तख्ती है वो मेरे नाम की है। तो इस दुनिया में हमेशा के लिए किसी का घर नहीं रहता। उन्होंने कहा कि कोई भी शाख कभी मिल्कियत नहीं होती, जहाँ पे बैठे परिंदा वहीं ठिकाना है। तुम अपने पास रखो, तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। जी हाँ, उन्होंने कहा भी था कि मेरे बस में हो तो मैं जाऊँ न दुनिया छोड़कर, जब तलक रख दूँ न सब टूटे हुए दिल जोड़कर। हमारे साथ अरविंद जी हैं, शुभ संध्या आज जी मनुसर, आपको भी आप प्रणाम करते हैं। अरविंद जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और एक तेरा ही तो ख्याल है मेरे पास, वरना कौन अकेले में मुस्कुराता है। आहा, क्या पंक्तियाँ कही आपने। और जब अभी हम फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम कर रहे थे तो कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब का एक बहुत ही प्यारा सा नगमा चल रहा था, और हम उस नगमे को मुकम्मल नहीं कर पाए। अब कायनाती गले के मालिक का कोई नगमा अगर पूरा ना हो पाए तो शायद ये बात अच्छी नहीं होगी। चलिए उसी नगमे के साथ जहां हमने छोड़ा था फरमाइशी गीतों को, वहीं से आज का सफ़र शुरू करते हैं। दिल एक मंदिर का ये बहुत ही प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए
बहारे गजल की

जी हाँ, एक बार आप सभी का खैर मकदम आपके ही कार्यक्रम बहारे गजल। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, रफी जी ने ये दो गजलें हमने आपको सुनाई, याद न जाए बीते दिनों की। और कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, मतलब लगता है उनकी गजलें दिल को छूती हुई निकल जाती हैं। बात कर रहे हैं वसीम बरेलवी साहब की। उन्होंने कहा कि दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं। दिया हूं मतलब हमारा काम रोशनी बिखेरने का है। दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं। अंधेरों से कहो रोके, उजाला कर रहा हूं मैं। किसी किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ न बिगड़ेगा। अब देखिए, बात कॉन्फिडेंस की है, आत्मविश्वास की है। किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ न बिगड़ेगा, कि अब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूं मैं। और कभी कभी होता है जिंदगी में कि इंसान को कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चाहिए होता है, और एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि जिसके लिए दुनिया में भेजे गए थे शायद वो अधूरा रह गया, वो काम नहीं कर पाए। तो वसीम बरेली साहब कहते हैं कि बहुत शर्मिंदा हूं मालिक, 84 लाख योनियां हैं जिसमें मनुष्य की योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़े भाग मानुष पावा, बहुत तकदीर वाले होते हैं जिनको मिलता है इंसान का शरीर। तो उन्होंने कहा कि बहुत शर्मिंदा हूं मालिक, दिया था तूने एक मौका, मगर दुनिया में क्या करना था और क्या कर रहा हूं मैं। यह एक मौका मिला था इस दुनिया में आकर कुछ अच्छा करने का, कुछ बेहतर करने का, मोहब्बत लुटाने का, दुआएं कमाने का, लेकिन इस दुनिया की रंगीनियों में इतना उलझ गया कि शायद मुझे ये याद ही नहीं रहा कि क्या करने आए थे। और अक्सर होता है हमारे साथ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बहुत शर्मिंदा हूं मालिक। और ये इंसान को अंतिम समय में ध्यान आता है कि यार ये नहीं कर पाए, ईश्वर ने यहां पर आने का एक मौका दिया था, एक मकसद था, और उस मकसद को नहीं पूरा कर पाए। बहुत शर्मिंदा हूं मालिक, दिया था तूने एक मौका, मगर दुनिया में क्या करना था और क्या कर रहा हूं मैं। जी हाँ, काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और जो कुछ नहीं करते वो गजब करते हैं। जी हमारे साथ जेके शाह जी हैं। वेलकम सर जी, बहुत बहुत तो आदाब आपको भी, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और भाई प्रणाम जी, हाँ मैं तो सम्मान देता हूँ और प्यार भी करता हूँ आपको अरविंद जी, निश्चिंत रहिए। और न जाने कौन सी दौलत है तुम्हारे लहजे में, कि बात करते हो तो दिल संभल जाता है, क्या बात है। आहा, वसीम बरेली की बहुत खूबसूरत पंक्ति आपने जेके शाह जी लिखी कि तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूँ मैं, कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। और मैं आपको बताऊं कि मुझे उनकी एक पंक्ति आपने जब ये कहा तो मुझे याद आई कि

मतलब वो दो पंक्तियों में बहुत बड़ी बात कह देने का हुनर रखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती, किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। और वास्तव में हम देखें तो सब कुछ शायद हासिल कर पाना हमारे बस की बात नहीं होती जी। और सविता शास्त्री जी हैं, श्रीमती सविता शास्त्री, चरण स्पर्श करते हैं, शुभ संध्या आपको भी, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी होंगी। और अब आइए भाई, मेल आवाज़ हमने सुनाई आपको, और आज आपको आशा भोसले साहब की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल सुनाते हैं। बहुत दिनों के बाद हो सकता है ये गज़ल आप सुनने जा रहे हों, लेकिन आप गज़ल सुनेंगे तो लगेगा कि आपके दिल को छूती हुई ये गज़ल आ रही है। देखिए आशा भोसले जी की आवाज़ में प्यारी हुई गाई हुई ये प्यारी सी गज़ल आपको कैसे लगती है, इसकी प्रतीक्षा हम करेंगे चैट बॉक्स में कि आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें मिलती है। फिलहाल आशा भोसले जी की आवाज़ में ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये खूबसूरत सा नगमा आप सभी के लिए था। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। और शायद वास्तव में ये आसान नहीं होता। और क्या बात लिख दी आपने, अरे वाह भाई जेके शाह जी की, अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। इसके बाद की भी कुछ पंक्तियां हैं, देखिए मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है। यानी उसका ख्याल तो बहुत बाद में है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। अरे लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। कह कहा आंख का बर्ताव बदल देता है। मतलब जब आप हंसने वाले होते हैं तो शायद आपको रोने वाले का गम समझ में नहीं आता। कह कहा आंख का बर्ताव बदल देता है, हंसने वाले तुझे आंसू नजर आए कैसे, फूल से रंग जुदा होना कोई खेल नहीं। अब देखिए कुदरत ने जो फूल बनाया उसका रंग जैसा है वैसा शायद रंग हम निर्माण नहीं कर सकते। फूल से रंग जुदा होना कोई खेल नहीं, अपनी मिट्टी को कहीं छोड़ के जाएं कैसे, कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा। ये पंक्ति मुझको बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली वास्तव में हम जैसे होते हैं ना, हमारा दृष्टिकोण भी सामने वाले के लिए वैसा ही होता है। अगर मैं अपनी सिस्टर को बिठा कर शाम को ले चलता हूँ उससे मार्केट में कि आओ तुमको पानी पूरी खिला लेने ले चलते हैं, तो कोई दूसरा जा रहा होगा तो मैं यही सोचूंगा कि हो सकता है वो उनकी बहन हो, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के साथ हूँ। लेकिन अगर हम किसी हम सफर के साथ हैं, अपनी किसी चाहने वाले के साथ हैं, तो हमको लगेगा वो भी उसी के साथ होगा। कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे। जो पानी की एक छोटी सी बूंद है उस बूंद से आगे बढ़कर वो देख ही नहीं सकती, नहीं देख सकती, वो उसकी विवशता है, उसकी मजबूरी है। कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे, और जिसने दानिस्ता किया हो नजरअंदाज वसीम, जिसने दानिस्ता किया हो नजरअंदाज वसीम, उसको कुछ याद दिलाएं तो दिलाएं कैसे। क्या बात है वसीम बरेली साहब की ये गजल, आपने बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये गज़ल हमको याद दिला दी। और भाई हम बहुत आभारी हैं इस आपके, आभारी हैं कि ये गज़ल हमारे जहन के किसी कोने में थी और आपने पंक्ति से याद दिला दी। और अगली पंक्ति आपकी फिर आ गई है इस गज़ल के बाद, आपको वो भी सुनाते हैं। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। इसके आगे की पंक्ति है, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया जाने कैसे जलता हुआ रह गया। जी हाँ।

जी हाँ बहना, फिल्म की ये प्यारी सी गज़ल जो गाई लता मंगेशकर जी ने, मीना कुमारी की ये बहुत ही शानदार फिल्म थी। आप हो सकता है में से बहुत लोगों ने देखी हो। इस गज़ल को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, म्यूज़िक मदन मोहन का था और क्या बात है, आर्टिस्ट तलत महमूद। गुजरे हैं इस तरह से दुनिया में दिन हमारे, सबका अपना अपना किस्सा है साहब, और इस दुनिया में गम सभी का हिस्सा है। जे के साथ थैंक यू सर। और धर्मेंद्र मोहन जी हैं, मनु जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जिसे समझा अपना वही समझ न सका, दिल में क्या था मेरे वो पढ़ न सका, हमने तो हर कदम पर उसका साथ दिया, वो एक बार भी हमारे साथ चल ना सका। क्या बात है भाई, और क्या बात लिख दी आपने जेके शाह जी। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, क्या बात है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। अच्छा, इसी पर मुझे उनकी एक पंक्ति याद आई जब उन्होंने मोहब्बत की एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूं, वसीम बरेली साहब की बहुत खूबसूरत पंक्ति है, मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूं कि मेरे बाद कोई पढ़ न पाए। मतलब वसीम बरेली साहब बहुत ही कम शब्दों में, एक कभी कभी तो उनका मतला ही मुकम्मल हो जाता है एक पंक्ति पर, तो ले जाता है क्या कह दिया उन्होंने। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। और उनकी मजबूरी देखिए, जब वो कहते हैं कि जब मुझे समझी नहीं दुनिया तो फिर हार कर मैं खुद को समझाने लगा। और उन्होंने अपने श्रोताओं से ये भी कहा कि हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हम अपने चेहरे से उतने नजर नहीं आते। उन्होंने लिखा कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, प्यासे ही रह जाते हैं दुनिया के सवालात, किसके लिए जिंदा हूं बता भी नहीं सकता। माफ कीजिएगा लेकिन प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब मेरे सबसे पसंदीदा शायर हैं इस समय के, और लगभग लगभग ऊपर वाले का कर्म है कि उनकी सारी गज़लें लगभग लगभग मुझे याद है। मतलब वो दिल के इतने करीब, जो चीज़ें दिल के करीब होती हैं वो याद करनी नहीं पड़ती, वो याद रह जाती हैं। और वो तो ये भी कहते हैं कि उनसे किसी ने कहा कि आप यहाँ यहाँ वहाँ, तो उन्होंने कहा कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। अरे हमारा क्या है साहब, तनहा तनहा दुख झेलेंगे, तनहा तनहा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। जी हाँ, तो हम तो आपको गजलें गीत नगमे सुनाते रहते हैं, लेकिन कल कल बारी होती है आपकी। जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो कल बुधवार है, आसमान वाले ने चाहा तो 9:30 पर आपसे यही मुलाकात होगी आपके ही प्यारे से कार्यक्रम बहारे गज़ल में। अपने खजाने को लेकर रहिएगा तैयार। भाई जे के शाह जी, आपकी आवाज़ भी सुनना चाहूँगा मैं, आपसे बातचीत खाली अभी मैसेज पर हुई है, तो हम चाहेंगे कि कुछ प्यारी सी गज़ल कुछ नगमे आपसे भी सुने जाएं। और
आसमान वाले ने चाहा तो मिलते हैं कल, तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये गोंडा ही नहीं बन चुकी है हमारे आपके दिलों की धड़कन। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जी हाँ, और अब खजाना रखना है आपको तैयार, कल है आपका इम्तिहान। कल हम, एक डायलॉग है किसी फिल्म का, आज तक तुम बोलते थे और हम सुनते थे, आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। अमिताभ बच्चन का किसी फिल्म का डायलॉग है शायद, आज का अर्जुन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। फिलहाल अब आपसे लेते हैं अनुमति और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी बात एक रात की। सर्द मौसम था, हड्डियों को कपकपा देने वाली ठंड। शुक्र था ऑफिस का काम कल ही निपट गया था। दिल्ली से उसका मसूरी आना सार्थक हो गया था। बॉस निश्चित ही उससे खुश हो जाएंगे। ओम खुद को काफी हल्का महसूस कर रहा था। माता पिता का वो इकलौता बेटा था, उसके अलावा दो छोटी बहनें थीं। पिता नौकरी से रिटायर्ड थे, बेटा होने के नाते घर की जिम्मेदारी उसे ही निभानी थी। वो बचपन से ही महत्वाकांक्षी था। मल्टीनेशनल कंपनी में उसे जॉब पढ़ाई खत्म करते ही मिल गई थी। आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक तो वो था ही, बोलने में भी उसका जवाब नहीं था। लोग जल्दी ही उससे प्रभावित हो जाते थे। कई बार कई लड़कियों ने भी उससे दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। ओम ने सोचा था मसूरी में उसे 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही दिन में उसका काम निपट गया। क्यों ना कल मसूरी घूमा जाए। ओम मजे से गर्म कंबल में सो गया। अगले दिन वो मसूरी के मॉल रोड पर खड़ा था, लेकिन पता चला आज वहां टैक्सी व बसों की हड़ताल है। उफ, इस हड़ताल को भी आज ही होना था। ओम अभी सोच में पड़ा ही था कि एक टैक्सी वाला उसके पास आकर कानों में फुसफुसाया, साहब कहाँ जाना है? अरे भाई मसूरी घूमना था, लेकिन इस हड़ताल को भी आज ही होना था। ओम बोला, कोई दिक्कत नहीं साहब, अपनी टैक्सी है ना, इस हड़ताल के चक्कर में अपनी वोट लग जाती है। सर जी हम आपको घुमाने ले चलते हैं, लेकिन आपको एक मैडम के साथ टैक्सी शेयर करनी होगी, वो भी पूरा मसूरी घूमना चाहती हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ड्राइवर बोला, कोई चारा भी तो नहीं, चलो कहाँ है टैक्सी? ओम बोला। ड्राइवर ने दूर खड़ी टैक्सी के पास खड़ी लड़की की ओर इशारा किया। ओम ड्राइवर के साथ चल पड़ा। हेलो मैं ओम दिल्ली से। हेलो मैं रिंकी। मैडम आज मसूरी में हम दो अनजानों को टैक्सी शेयर करना है, आप कंफर्टेबल तो रहेंगी ना? हाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल तो है, पर इट्स ओके। इतने छोटे से परिचय के साथ गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने बताया, सर मसूरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर टिहरी जाने वाली रोड पर शांत और खूबसूरत जगह थनौल्टी है,

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बात एक रात की। अब तक आपने सुना ओम और रिंकी अपने अपने कामों से मसूरी गए हुए थे। उनके पास एक दिन घूमने के लिए था, लेकिन उस दिन टैक्सी और बसों की हड़ताल हो गई। एक टैक्सी वाले ने उनको घुमाने का काम ले तो लिया, पर मजबूरी में उन दोनों को टैक्सी शेयर करनी पड़ी। अब आगे, आज सुबह से वहां बर्फबारी हो रही है। आप लोग वहां जाकर बर्फ का मजा लेना चाहेंगे? ओम ने एक प्रश्नवाचक निगाह रिंकी पर डाली तो उसकी भी निगाह उसी की तरफ थी। दोनों की मौन स्वीकृति से ही ड्राइवर को धनौल्टी चलने को कह दिया गया। गूगल से ही थोड़ी बहुत मसूरी और धनौल्टी के बारे में वो लोग जानते थे। आज प्रत्यक्ष रूप से देखने का पहली बार मौका मिला था। मन बहुत ही कौतूहल से भरा था। खूबसूरत कटावदार पहाड़ी रास्ते पर उनकी टैक्सी दौड़ रही थी। एक एक पहाड़ की चढ़ाई वाला रास्ता बहुत ही रोमांचक लग रहा था। बगल में बैठी रिंकी को लेकर ओम के मन में कई सवाल उठ रहे थे। मन हो रहा था कि पूछे कि किस सिलसिले में आई है, अकेली क्यों है, लेकिन किसी अनजान लड़की से एकदम से ये सब पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रिंकी की गहरी बड़ी बड़ी आंखें उसे और भी खूबसूरत बना रही थीं। ना चाहते हुए भी ओम की नजरें बार बार उसकी तरफ उठ जातीं। वो और रिंकी बीच बीच में थोड़ा बातें करते हुए मसूरी के अनुपम सौंदर्य को निहार रहे थे। उनकी गाड़ी कब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पहुंच गई पता ही नहीं चल रहा था। कभी कभी जब गाड़ी को हल्का सा ब्रेक लगता तो वो दोनों की नजरें खिड़की से नीचे जातीं और गहरी खाई देखकर दोनों की सांसें थम जातीं। लगता जरा सी चूक हुई तो बस काम तमाम हो जाएगा। जिंदगी में आदमी भले कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, पर नीचे देखकर गिरने का जो डर होता है उसका पहली बार एहसास हो रहा था। अरे भाई ड्राइवर साहब, जरा धीरे संभल कर, रिंकी मौन तोड़ते हुए बोली। मैडम आप परेशान मत होइए, गाड़ी पर पूरा कंट्रोल है मेरा। अच्छा सर जी, यहाँ थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकता हूँ। यहाँ से चारों तरफ का काफी सुंदर दृश्य दिखता है। बचपन में पढ़ते थे कि मसूरी पहाड़ों की रानी कहलाती है। आज वास्तविकता में देखने का उन दोनों को मौका मिला था। गाड़ी से बाहर निकलते ही हाड़ कपा देने वाली ठंड का एहसास हुआ। चारों तरफ से धुएं जैसे उड़ते हुए कोहरे को देखने से लग रहा था मानो वो बादलों के बीच खड़े हों और बादल उनके साथ आंख मिचौली खेल रहे हों। दूरबीन से चारों तरफ नजर दौड़ा, पूछने लगे कहाँ थे हम और कहाँ पहुंच गए। अभी तक शांत सी रहने वाली रिंकी धीरे से बोली, इस ठंड में एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा रहता। चलिए पास ही एक चाय का स्टॉल दिख रहा है, वहीं चाय पी जाए, ओम रिंकी से बोला।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बात एक रात की। अब तक आपने सुना मसूरी में टैक्सी और बसों की हड़ताल होने की वजह से ओम और रिंकी को एक ही टैक्सी शेयर करनी पड़ी मसूरी घूमने के लिए। उन लोग ने धनौल्टी जाने का प्रोग्राम बनाया और खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए वो अपने गंतव्य पर पहुंच गए। अब आगे हाथ में गरम दस्ताने पहनने के बावजूद चाय के प्याले की थोड़ी सी गर्माहट भी काफी सुकून दे रही थी। मसूरी के अप्रतिम सौंदर्य को अपने अपने कैमरों में कैद करते हुए जैसे ही उनकी गाड़ी धनौल्टी के नजदीक पहुंचने लगी वैसे ही उनकी बर्फबारी देखने की आकुलता बढ़ने लगी। चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने लगे थे जो बर्फ से ढके हुए थे। पहाड़ों पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। पहाड़ एकदम सफेद लग रहे थे। पहाड़ों की ढलान पर काफी फिसलन होने लगी थी। बर्फ गिरने की वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा मानो सारे पहाड़ों को प्रकृति ने सफेद रंग से रंग दिया हो। देवदार के वृक्षों के ऊपर बर्फ जमी पड़ी थी जो मोतियों की तरह अप्रतिम आभा बिखेर रही थी। गाड़ी से नीचे उतरकर ओम और रिंकी भी गिरती हुई बर्फ का भरपूर आनंद ले रहे थे। आसपास अन्य पर्यटकों को भी बर्फ में खेलते कूदते देखकर बड़ा मजा आ रहा था। सर, आज यहाँ से वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा, आप लोगों को यहीं किसी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ेगा, टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें सलाह दी। चलो ये भी अच्छा है, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। ऐसा सोचकर ओम और रिंकी गेस्ट हाउस बुक करने चल दिए। सर, गेस्ट हाउस में इस वक्त एक ही कमरा खाली है, अचानक बर्फबारी हो जाने से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, आप दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा, ड्राइवर ने कहा। क्या रूम शेयर? दोनों की निगाहें प्रश्न भरी होकर एक दूसरे पर टिक गईं। कोई और रास्ता ना होने से फिर वही मौन स्वीकृति के साथ अपना सामान गेस्ट हाउस के उस रूम में रखने के लिए कह दिया। गेस्ट हाउस का वो कमरा खासा बड़ा था, डबल बेड लगा हुआ था। इसे ओम के संस्कार कह लो या अंदर का डर, उसी ने रिंकी से कहा, ऐसा करते हैं बेड अलग अलग करके बीच में टेबल लगा देते हैं। रिंकी ने भी अपनी सहमति दे दी। वो दोनों अपने अपने बेड पर बैठे थे। दिन भर की थकान के बाद नींद तो आ ही रही थी, फिर भी रिंकी के अभी तक के साथ से ओम की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई थी। अब रहा नहीं जा रहा था, बोल पड़ा, तुम यहां मसूरी क्या करने आई हो? रिंकी भी शायद अब तक उससे सहज हो गई थी, बोली, मैं दिल्ली में रहती हूं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बात एक रात की। अब तक आपने सुना ओम और रिंकी मसूरी गए थे और उस दिन बसों और टैक्सी की स्ट्राइक होने की वजह से उन्हें मसूरी घूमने के लिए एक ही टैक्सी शेयर करनी पड़ी। वो धनौल्टी पहुंचे, वहां बर्फबारी शुरू हो गई, इसलिए उस दिन लौटना नामुमकिन था। उन्हें एक गेस्ट हाउस बुक करना पड़ा, लेकिन अचानक हुई बर्फबारी की वजह से यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और सब गेस्ट हाउस बुक थे। उन्हें मजबूरी में एक ही रूम शेयर करना पड़ा। अब आगे। अच्छा, दिल्ली में कहाँ? ओम बोला, सरोजनी नगर। रिंकी बोली, अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं आईएनए में रहता हूँ। ओम बोला, मैंने हाल ही में पढ़ाई कंप्लीट की है, दो छोटी बहनें हैं, पापा रहे नहीं, मम्मी के कंधों पर ही हम बहनों का भार है। सोचती थी जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी मम्मी का भार कम करने की कोशिश करूंगी, लेकिन लगता है अभी वो वक्त नहीं आया। दिल्ली में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, उन्होंने सेकेंड इंटरव्यू के लिए मुझे मसूरी भेजा है। वैसे तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे ठीक नहीं लग रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रिंकी बोली, इसमें घबराने और सोचने की क्या बात है, जॉब पसंद नहीं आ रही है तो मत करो, तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो जॉब दूसरी जगह ही मिल जाएगी। वैसे मेरी कंपनी में अभी न्यू वैकेंसी निकली है, तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोशिश करूं। ओम बोला, सच? मैं अपना सीवी तुम्हें मेल कर दूंगी। रिंकी बोली, शायद वक्त ने हमें मिलाया इसीलिए हो कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ओम के मुंह से अचानक निकल गया। रिंकी ने एक नजर ओम की तरफ फेरी, फिर मुस्कुराकर निगाहें झुका ली। ओम का मन हुआ कि ठंड से कपकपाते हुए रिंकी के हाथों को अपने हाथों में ले ले, लेकिन रिंकी कुछ गलत ना समझ ले ये सोचकर रुक गया, फिर कुछ सोचता हुआ कमरे से बाहर चला गया। सर्द भरी रात, बाहर गेस्ट हाउस की छत पर गिरते बर्फ से टपकते पानी की आवाज अभी भी आ रही थी। रिंकी ठंड से सिहर रही थी कि तभी कॉफी का मग बढ़ाते हुए ओम ने कहा, ये लीजिए थोड़ी गर्म और कड़क कॉफी। दोनों को सच में उस वक्त एक गर्मा गर्म कॉफी की बहुत जरूरत थी। अपने अपने कॉफी के मग लेकर दोनों अपने अपने अलग हुए बिस्तरों पर बैठ गए और एक दूसरे से ढेरों बातें करने लगे। इतनी नींद आने के बावजूद भी दोनों का ही सोने का मन नहीं कर रहा था, एक दूसरे से बातें करना उन्हें बहुत भा रहा था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बात एक रात की। अब तक आपने सुना रिंकी और ओम मसूरी से धनौल्टी घूमने गए। दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे, लेकिन टैक्सी और बसेस की स्ट्राइक की वजह से उन्हें एक ही टैक्सी शेयर करनी पड़ी। धनौल्टी में बर्फबारी होने की वजह से रात वहां गुजारना मजबूरी हो गया और अचानक हुई बर्फबारी के कारण यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से उन्हें गेस्ट हाउस में भी एक ही कमरा शेयर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब आगे काफी देर बातचीत करते रहने के बाद दोनों को ही बहुत थकान महसूस हो रही थी। रिंकी बोली, मैं थोड़ा हाथ मुंह धोकर चेंज कर लेती हूँ, बेटर फील होगा, बहुत थकान लग रही है। ओम बोला, हाँ रिंकी। रिंकी चेंज करने चली गई। ओम बैठकर टीवी देखता रहा। टीवी में बहुत पुरानी कोई हिंदी फिल्म आ रही थी। जब रिंकी चेंज करके वापस आई तो ओम बोला, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। वो उठकर चला गया तो रिंकी बैठकर वो फिल्म देखने लगी और उससे भी वो फिल्म बहुत अच्छी लगी। पुराने हिंदी गाने, सीधी सादी कहानी, दोनों देर रात तक मूवी देखते देखते बातें करते रहे। शायद एक ही कमरे में सोने से उन्हें संकोच हो रहा था और इसी वजह से वो जाकर रात काटने की कोशिश कर रहे थे। पर मूवी देखते देखते रिंकी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब खिड़की से सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली। उसने बगल के बिस्तर पर देखा, वहां ओम नहीं था। पहले तो उसने सोचा कि कहीं आसपास गया होगा। वो उठी, हाथ मुंह धोया, कॉफी मंगाकर भी पी ली, पर फिर भी ओम का कहीं अता पता नहीं था। उसे कुछ चिंता सी होने लगी। उसने ड्राइवर को फोन करके पूछा तो वो बोला, नहीं मैडम, मुझे नहीं पता ओम सर कहाँ हैं। मैं तो यहाँ गाड़ी पर ही सोया था और अभी भी गाड़ी के ही पास हूँ। रिंकी कमरे से निकली और आसपास ओम को देखने लगी। तभी उसकी नजर रिसेप्शन पर रखे सोफे पर गई। सोफे के पास एक हीटर चल रहा था और ओम उसी के सामने सोफे पर बैठा सो रहा था। रिंकी उसके पास गई, उसे जगाया और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उस पर ओम का जो जवाब था वो रिंकी के दिल की गहराइयों में उतर गया। ओम बोला, एक अजनबी लड़के के साथ एक ही कमरे में रात भर सोना शायद तुम्हें जिंदगी भर परेशान करता रहता, इसीलिए तुम्हारी आंख लगने के बाद मैं यहीं पर आकर सो गया। रिंकी के पास बोलने के लिए शब्द खत्म हो गए थे और ओम के लिए इज्जत से उसकी आंखें भर आई थी। वो बोली, जाकर थोड़ी देर बिस्तर पर लेटकर सो लो, अभी फिर टैक्सी में बहुत ट्रैवल करना है। ओम ने कुछ घंटे की नींद ली और रिंकी आसपास के नजारे देखती रही और फिर वो दोनों वापस दिल्ली लौट आए। दिल्ली पहुंचने पर ओम ने वायदे के मुताबिक रिंकी का नाम अपनी कंपनी में रिकमेंड किया और उसको वहां नौकरी भी मिल गई। समय के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और फिर एक दिन ओम ने रिंकी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रिंकी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिंकी बोली, मैं तो कब से तुम्हारे पूछने का इंतजार कर रही थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी बात एक रात की। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग, चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात, हो जाइए थामिए एक दूसरे का हाथ। शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर भारतीय सिनेमा का आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था, जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे आपको।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर, चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों, गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं, वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मानसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत, जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज़ बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेंद्र ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया, सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है, पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी इन सुरों की भीनी सी खुशबू। जाने का वक्त तो है पर दिल यहीं कुछ छूट गया है।
1: जैसे भीग कर थम जाती है सावन की यह हसी बरसात, वैसे ही अब मोड़ पर आ पहुंची है सुरों की ये प्यारी सी रात। दिलों में समेट कर ले जा रहे हैं इन गीतों की गर्माहट, अलविदा करते हैं आज थाम कर यादों की हसीन सौगात। फिर लौट कर आएगी ये रिमझिम, फिर सजेगी ये महफिल, पुराने गानों के सहारे फिर आसान होगी हर राह और मंजिल। भूले बिसरे गीत के इस सफर को आज हम यहीं रोकते हैं, अगली बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा। संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
8: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।